नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 19वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 10 सितंबर 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

0: यह है विविध भारती। हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 अधिक यात्री भार वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
2: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक

0: बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। टीम सिकल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1,66,000 से अधिक रिफंड यानी वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है। इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का वापसी भुगतान मिला है। ये शिकायतें 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की 15 महीने की अवधि के दौरान दर्ज की गई थी। दिल्ली नगर निगम MCD ने खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान तथा भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। यह अभियान निगम के सभी 12 जोन में चलाया जा रहा है। MCD ने कल 34 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की, इसके अलावा 17 संपत्तियां सील की गई, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 4 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने पिछले 10 दिनों में देश भर में विभिन्न स्थानों पर 6 बड़े अभियान चलाए हैं। निदेशालय ने 2 तेंदुए की खाल, 180 जीवित भारतीय तारा कछुए, 12 जीवित टोके गेको, लगभग 24 किलोग्राम पेंगोलिन के शल्क और लगभग 500 ग्राम बाघ की हड्डियां बरामद की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन मामलों में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। अमेरिका ओपन में अमेरिका की बेन शेल्टन और 11वीं वरीयता के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो के बीच पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मुकाबला होगा। महिला सिंगल सेमीफाइनल में कल मौजूदा चैंपियन एरेना सबालेंका का मुकाबला तीसरी सीड जेसिफा पेगुला से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन स्वामी विवेकानंद का कथन है, ज्ञान स्वयं के भीतर है, इंसान केवल उसका आविष्कार करता है। ये था आज का चिंतन। वंदनवार में लीजिए, सुनिए भक्ति रचनाएं।

0: खड़ा है सरहद पर तूफान, तुम्हारी सरहद पर तूफान, सावधान अनजान पहरुओ सरहद पर तूफान, खड़ा है सरहद पर तूफान, तुम्हारी सरहद पर तूफान, तुम्हारी सरहद पर तूफान।
1: इसके साथ ही आज का वंदनवार संपन्न होता है।

ये है विविध भारती। झरोका मिली जी, सुनिए आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद 6:35 से आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 307। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। इस प्रोग्राम का 10वां भाग आज आप सुनेंगे कलाकार गायिका डॉक्टर शकुंतला भर ने। समय सुबह व शाम 6:45 से। सात बजे से लेकर आएंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 से हम है राही प्यार के। त्रिवेणी का समय होगा 8 बजे से और दोपहर 2 बजे से। चित्रलोक 8:30 से और रात्रि 8:15 से आप सुनेंगे। आज के फनकार आज केंद्रित होगा निर्माता निर्देशक महबूब खान पर। सुबह व रात्रि 9:30 से आप ये प्रोग्राम सुनेंगे। दस बजे पिटारा में आज के मेहमान कार्टूनिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत आज आप सुनेंगे। ग्यारह बजे से रंग तरंग, 12:05 से यादों की महफिल। एक बजे से लेकर आएंगे प्रोग्राम सुरीला सफर। 2:30 से सदाबहार नगमे।

दिन में 3 बजे से सखी सहेली सुनिएगा। चर्चा होगी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर। बाकी के विषय होंगे घर की सफाई, नोकझोंक या साझेदारी। कहानी पद्मश्री में जोधई बाई बेगा की कहानी आप सुनेंगे। मुझे कुछ कहना है में बस 5 मिनट बनाम घंटों की बातें। उपयोगी टिप्स में जब बनानी हो रेसिपी। चार बजे से हेलो फरमाइश, 5 बजे से छाया गीत। शाम 5:30 से आप सुनेंगे तराने नए पुराने। 6:35 से संध्या रंजन। शाम 7 बजे से लेकर आएंगे फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम जयमाला। 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए। महाराष्ट्र पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर विवेक विजय तांबे से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग आज आप सुनेंगे इस प्रोग्राम में। आठ बजे से सुनिए हवा महल में झलकी, मुरादाबादी, लेखक और निर्देशक गुरमीत रामल मीत।

9 बजे से लेकर आएंगे प्रोग्राम आपके लिए। 10 बजे वक्त होगा छाया गीत का और 10:30 से प्रोग्राम ढलती जाए रात।

कर्ण फूल के कटकर गिरने से मंदोदरी सोच में पड़ गई थी। वो श्री राम के व्यापक स्वरूप और पराक्रम की कल्पना भली भांति कर सकती थी। शिव जिनके मान, ब्रह्मा बुद्धि, चंद्रमा मन और विष्णु चित्त हैं, उन्हीं जगदीश्वर ने मनुष्य रूप धारण किया है। वो पति को ये सब कुछ समझाने की भरसक चेष्टा करती है, किंतु रावण उसकी बात हंसकर ये कहते हुए टाल देता है, सच ही कहते हैं कि नारी के हृदय में छल, भय, चंचलता, झूठ, अविवेक, अपवित्रता तथा निर्दयता का निवास होता है। मंदोदरी द्वारा वर्णित भगवान के विश्वरूप के तत्व तो स्वयं उसका आधिपत्य स्वीकार करते हैं, अतः उनसे भय कैसा? हो न हो, अपने कथन से वो उसकी प्रभुता की ही महिमा बखान रही है। रानी की गूढ़ बातें रावण के लिए विनोद का हेतु बन गईं। आमोद प्रमोद के क्षण बीत जाते हैं, सवेरा होता है। जिस प्रकार बादलों द्वारा बरसाया गया जीवनदायी जल पाकर भी बेंत फल फूल नहीं सकता, उसी प्रकार मंदोदरी समझ लेती है कि उसका पति काल के वश में हो गया है, उसकी मति मारी गई है। ऐसे में तो ब्रह्मा जैसा गुरु भी उन्हें ज्ञान नहीं दे सकता। इधर श्रीराम की सभा में वृद्ध जांबवान ये परामर्श देते हैं कि अंगद को दूत के रूप में रावण की सभा में भेजा जाए।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना श्रृंखला की इस कड़ी में। डॉक्टर शकुंतला भरणे हमारे साथ है। शकुंतला जी,
2: हाँ जी,
1: किराना घराने की राग प्रस्तुति का जो एक तरीका है जिसे भावपूर्ण प्रस्तुति कहते हैं, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी?
2: कल ही हमने इसके बारे में थोड़ा सा
1: आलाप की चर्चा की।
2: हाँ, जी जी, जब हम आलाप करते हैं
1: जी,
2: राग का जो प्राण है वो आलाप है, और इसमें स्वर में भी भाव रहता है
1: जी।
2: ऐसा नहीं है कि सिर्फ शब्द में भाव रहता है, स्वर का भी एक स्वभाव रहता है और हर एक राग के स्वर का एक अलग स्वभाव रहता है।
1: हाँ।
2: राग भाव को सर्वोच्च स्थान इधर शास्त्रीय संगीत में है, और किराना घराने में केवल राग गाना ही इसका उद्देश्य नहीं है, तो उसका भाव, उसका रस और उसका वातावरण, ये सब को श्रोता तक पहुंचाना यहाँ पे मुख्य लक्ष्य होता है। स्वर के माध्यम से हम हमारी भावाभिव्यक्ति
1: जी
2: दिखाते हैं, शब्दों से अधिक स्वरों के माध्यम से ये की जाती है। शब्द तो जरूरी है इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं।
1: हाँ।
2: लेकिन स्वर जो है, स्वर में जो प्राण है, स्वर में जो भाव है, वो भाव प्रत्येक स्वर में संवेदनशीलता और माधुर्य यहाँ पे झलकता रहता है। विलंबित लय का सहारा हम लेते हैं इसीलिए,
1: अच्छा,
2: क्योंकि एक एक विस्तार होने से प्रत्येक स्वर को हम ठहराव करते हैं। वो ठहराव मिलने से क्या होता है, राग का भाव एकदम स्वाभाविक रूप से उभर कर आता है।
1: अच्छा।
2: और एक गाना जो है उसकी गहराई समझ में आती है क्या है।
1: तो किस राग की बंदिश से आप इसे स्पष्ट करना चाहेंगी?
2: हम तो गोरख कल्याण सुनाएंगे आपको।
1: क्या बात है।
2: लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा और कुछ बोलना है इसके बारे में।
1: जी जी जी, बिल्कुल।
2: स्वरों के बीच कोमल मींड तथा श्रुतियों का सूक्ष्म प्रयोग इस भावपूर्ण अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावशाली बनाता है। राग का विस्तार धीरे धीरे और संतुलित ऐसे गा के किया जाता है जिससे श्रोता राग के भाव में सहज रूप से डूब सके। किराना घराने की गायकी श्रोता के मन को सीधे स्पर्श करती है। इसकी प्रस्तुति केवल सुनाई नहीं देती बल्कि महसूस होती है। तानों से अधिक स्वर सौंदर्य पर बल, जहां अनेक घरानों में जटिल जटिल तानों का अधिक महत्व

0: तो होता है।
1: जी
0: वही किराना घराने में जो स्वर है, उसकी शुद्धता है, मधुरता है और भाव अभिव्यक्ति है, उसे प्राथमिकता दी जाती है।
1: अच्छा
0: एकदम छोटे छोटे आलाप, एकदम सिंपल आलाप, लेकिन उससे इतना स्वर का गुंजन होता है, इतना उसको हम गा गा के उसकी गोलाई इतनी अच्छी करती है कि एक गान सुनने को मन करता है।
1: क्या बात।
0: चलो
1: तो हमारे श्रोताओं को इंतजार है राग गोरख कल्याण की बंदिश का।

0: वाह वाह, बहुत ही सुंदर।
1: अभी तो गोरख कल्याण आपने सुना,
0: जी जी
1: लेकिन हमेशा बोलती हूँ मुझे ऐसा कंप्लीट नहीं लगता है, क्योंकि हमें भी कुछ रह गया है क्या, ऐसा लगता है
0: हाँ हाँ हाँ
1: कलाकार के नाते। अगर आप सुनते हैं माणिक वर्मा का स्वर,
0: जी
1: भावनिक स्पर्श अथवा भावपूर्ण गाना, परिपूर्ण गायिका इसे हम कहते हैं,
0: अच्छा
1: ये माणिक वर्मा है। एकदम घरंदाज, मुलायम स्वर लगाने वाली, अत्यंत सौंदर्यपूर्ण गायकी दिखाने वाली गायिका। उन्होंने गाया हुआ एक सुंदर राग है श्याम कल्याण,
0: जी
1: और ये राग सुनकर ही आपको पता चलेगा कि आलाप चीज क्या होती है, राग को कैसा आगे लेके जाना है।

0: श्याम कल्याण को आपने सुन लिया।
1: जी बिल्कुल, लॉरेल से सुनते हुए एक गीत जो मन में गूंज रहा था, वो बहुत ही लोकप्रिय गीत है मुगले आजम फिल्म से, मोहे पनघट पे नंदलाल है।
0: अरे
1: जी
0: वाह, लेकिन डायरेक्ट इसमें श्याम कल्याण नहीं मिलेगा हमको, श्याम
1: हाँ
0: कल्याण की कुछ छटा
1: हाँ हाँ
0: हमें ये गाने में मिलती है। वैसे तो फिल्मी गीत ऐसे ही रहते हैं, वो
1: जी बिल्कुल
0: प्योरिटी नहीं
1: हाँ
0: रहती है, फिर भी राग की छटा रहती
1: जी
0: है।
1: जी तो सुनते हैं ये गीत।
0: हाँ

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी,

मुकेश की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे बादल फिल्म से, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज। वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी हैं, सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भूले बिसरे गीत।

0: उस्ताद आमिर खान की आवाज में ये पेशकश अभी आप सुन रहे थे बेजू बावरा फिल्म से। शकील बदालनी ने इसे लिखा, नौशाद का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भूले बिसरे गीत।

0: गीता दत्त को अभी आप सुन रहे थे इस गीत में, बाजी फिल्म से। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा, एस डी बर्मन की तर्ज।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। रोटी कपड़ा और मकान फिल्म से संतोष आनंद ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे आईना फिल्म से, जहां निसार अख्तर ने इसे लिखा, नौशाद का संगीत था।

शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे रफू चक्कर फिल्म से। गुलशन बावरानी से लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हम है राही प्यार के।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे हाथ की सफाई फिल्म से। गुलशन बावरा ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे आपकी कसम फिल्म से। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, संगीत दिया आरडी बर्मन ने।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गड्डी ले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे प्रोग्राम हम है राही प्यार के विविध भारती से।

आशा भोसले और मनहर उदास की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे कागज की नाव फिल्म से। इस गीत के साथ ही आज का ये प्रोग्राम हम है राही प्यार के संपन्न होता है।

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए। राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु नियमों का पालन न करने को लेकर ईरान का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजा। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में अमरीका के दोनों खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफू आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं से लगभग 52 लाख की आबादी वाले लगभग 2100 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सबसे व्यस्त सभी 7 रेलवे कॉरिडोर को 4 लाइन का बनाने का फैसला किया है। इनमें दिल्ली हावड़ा, मुंबई हावड़ा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा चेन्नई और मुंबई चेन्नई शामिल है। इनमें से करीब 2000 किलोमीटर रेल मार्ग को पहले ही 4 लाइन का बनाया जा चुका है।
2: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
1: मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि ये सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य प्रगति पर है और सूरत से वापी तक प्रारंभिक 100 किलोमीटर का खंड जल्द ही खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से विरासत और वन्यजीव पर्यटन को विशेष बढ़ावा मिलेगा और साथ ही लॉजिस्टिक लागत कम करने में मदद मिलेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी

0: का संकल्प
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुँच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास पे बड़ी भूमिका निभा सकें। श्री गोयल ने बताया कि भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं।
4: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
5: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
3: लखपति दीदी पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और देश की आर्थिक प्रगति में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। ब्रिक्स देशों के बीच संवाद और सहयोग से सदस्य देशों, साझेदार देशों और पूरी दुनिया के लिए अधिक समृद्ध भविष्य का रास्ता तैयार होगा। श्री गोयल ने बताया कि भारत ने 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को मौजूदा $4 trillion से बढ़ाकर $30 trillion करने का लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। रक्षा मंत्री ने डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया को श्रीलंका और भारत दोनों में महिलाओं के लिए एक आदर्श और महिला सशक्तिकरण तथा नारी शक्ति का प्रतीक बताया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब IAEA बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 35 सदस्य बोर्ड ने कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव के पक्ष में 23 वोट पड़े, 5 विरोध में और 8 सदस्य मतदान से दूर रहे। ये प्रस्ताव अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पेश किया था। रूस, चीन और नाइजर ने इसके खिलाफ वोट किया। ये कदम अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से जारी सैन्य टकराव और बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय शिष्टमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम

0: प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कनेक्टेड इंडिया एम्पावर्ड फाइनेंस बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर 8वां भारतीय वायुसेना विमान काठमांडू पहुंचा। एक रिपोर्ट।
2: 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। इनमें कीचड़ बचाव सूट, गैस डिटेक्टर, श्वास यंत्र, पोर्टेबल जनरेटर, प्रकाश टावर और जल निकासी पंप शामिल हैं। पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए भारत ने डीएनए किट, अर्भिक्रमक और डीएनए प्रोफाइलिंग उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के मंत्री महावीर पुन को राहत सामग्री सौंपी। इस बीच भारत के विशेष सुरंग बचाव दल ने नेपाल की सेना के साथ चिलिमे और लोंगटोंग में दो उच्च जोखिम वाले स्थलों पर संयुक्त अभियान शुरू किया। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2 से 3 दिन के भीतर पूरा होने की आशा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना है। केरलम में अलपुजा और एर्नाकुलम जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल तक राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। अमरीकी ओपन पुरुष एकल सेमीफाइनल में बेन शिल्टन की टक्कर फ्रांसिस टियाफो से होगी। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शिल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। ये दिवस दुनिया भर में आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद प्रियंका। भारत में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी खबरों को कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। ब्रिक्स इंडिया सम्मेलन शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार सीमा पार डिजिटल सेवा आसान करेंगे ब्रिक्स देश। ब्रिक्स देशों की डिजिटल सेवाओं के कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 48%, दुनिया में 5वां स्थान। राजस्थान पत्रिका का कहना है, ब्रिक्स पर भारत का बड़ा दाव, सीमा पार व्यापार और स्थानीय मुद्रा में भुगतान पर जोर। पत्र ने लिखा है, चीन से सीधी उड़ान, ईरान से चाबहार और रूस से सुखोई फाइटर पर होंगे समझौते। नवभारत टाइम्स के आर्थिक पन्ने की खबर है, कच्चा तेल $100 के पार, पश्चिम एशिया में तनाव, तेल की कीमतों में तेजी से 3 महीने के निचले स्तर पर बाजार। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के शुभारंभ पर वंदे मातरम के पूरे गायन पर कांग्रेस की आपत्ति के जवाब में दैनिक जागरण ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान प्रकाशित किया है। वंदे मातरम कितना और कैसे गाना है, कांग्रेस यह सहयोगियों को ना सिखाए। जनसत्ता की खबर है, ओडिशा में बालासोर के जंगल में मिले 5 वनमानुष। मलेशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो और सुमात्रा के वर्षा वनों में पाए जाने वाले इन वनमानुष के ओडिशा पहुंचने की जांच शुरू। लौटते मॉनसून से होगी राजस्थान समेत कई राज्यों में अच्छी बारिश। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 11 से 15 सितंबर तक चलेगा नया दौर।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमियों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए। राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा।

दोस्तों नमस्कार। जीवन एक निरंतर यात्रा है, इसमें हमें किसी एक उपलब्धि पर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि हर बात से सीखते हुए, आगे बढ़ते हुए और खुद को बेहतर बनाते हुए जीवन का सफर तय करना है। जो व्यक्ति रुक जाता है उसकी प्रगति भी रुक जाती है, जबकि जो निरंतर प्रयास करता रहता है वो नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। जीवन में निरंतरता ही सफलता, आत्मविश्वास और विकास की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। कोई भी बड़ा लक्ष्य एक दिन में पूरा नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों को लगातार दोहराने से हासिल होता है। निरंतर और नियमित मेहनत से कठिन लक्ष्य भी आसान हो जाते हैं।

उसको लगातार प्रयास करने से हमारा अपनी क्षमता पर विश्वास बढ़ता है, समय का सही उपयोग होता है, नियमित काम करने से टाल मटोल की आदत भी कम हो जाती है, हम चुनौतियों का सामना करना सीख जाते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहने की शक्ति हमें मिलती रहती है, हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है और इसमें निखार भी आता है। निरंतर सीखने और सुधार करने से हम मानसिक, सामाजिक और व्यवसायिक रूप से भी आगे बढ़ पाते हैं।

0: निरंतरता वो शक्ति है जो
1: निरंतरता
0: साधारण प्रयासों को
1: जो
0: असाधारण
1: असाधारण
0: परिणामों
1: परिणामों
0: में
1: को
0: बदल देती है।
1: असाधारण परिणामों में
0: यदि हम
1: बदल देती
0: प्रतिदिन
1: है,
0: ईमानदारी और
1: प्रतिदिन
0: धैर्य के साथ
1: ईमानदारी
0: अपने
1: और
0: लक्ष्य की
1: धैर्य के
0: दिशा में
1: साथ
0: आगे बढ़ते रहें,
1: अपने लक्ष्य
0: तो
1: की दिशा में
0: सफलता
1: आगे बढ़ते रहें,
0: निश्चित रूप से हमें मिलती है।
1: सफलता
0: प्रकृति
1: निश्चित
0: भी
1: रूप
0: हमें
1: से
0: आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।
1: प्रकृति भी हमें आगे
0: नदियाँ
1: बढ़ने की
0: कभी
1: प्रेरणा
0: बहना
1: देती
0: नहीं
1: है,
0: छोड़ती,
1: नदियाँ
0: सूर्य
1: कभी बहना नहीं
0: हर
1: छोड़ती,
0: रोज उदित होता
1: सूर्य
0: है और
1: हर
0: ऋतु

ऋतुएं निरंतर बदलती रहती हैं। कभी सोचा है यदि कोई नदी बहना छोड़ दे तो उसका पानी ठहरकर दूषित हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यदि मनुष्य प्रयास करना छोड़ दे तो उसके ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास का विकास रुक जाएगा। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, असफलताएं और निराशाएं हमेशा ही नया कुछ सिखा कर जाती हैं, भविष्य में बेहतर बनने का अवसर भी देती हैं। इसीलिए इसे अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत मानना चाहिए। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, वही वास्तव में प्रगति कर पाता है।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।

शेखर रावजानी, सलीम मर्चेंट और नीति मोहन की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से। अन्विता दत्त ने इसे लिखा, विशाल शेखर का म्यूजिक।

जसलीन कौर रॉयल की आवाजों में, माफ कीजिए, जसलीन कौर रॉयल की आवाज में खूबसूरतपन से गीत अभी आप सुन रहे थे। अमिताभ वर्मा ने इसे लिखा। चित्रलोक प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, ये था फिल्म का नाम। रोमी और तनिष्क बागची की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। नीरज राजावत ने इसे लिखा।
1: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी का जो जो फिल्में बनी हैं, सभी लिटरेचर बेस्ड है। सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
1: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितम्बर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे प्रोग्राम चित्रलोक विविध भारती से। श्रोताओं को बता दें कि आज है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस।

0: इसे हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोगों के बीच बिना किसी डर के खुलकर अपनी बात रखने और एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित करना, समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना।
1: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: किलदिल फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और नीरा जोशी देशपांडे की आवाजों में, शाद अली ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

थ्री इडियट्स इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे सूरज जगन शर्मन जोशी की आवाजों में स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा शांतनु मैत्रेय का संगीत। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: और कविता सेठ की आवाजों में इरशाद कामिल ने इसे लिखा प्रीतम का म्यूजिक।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: Rica, ooh, Sarah, Rica, Sarah, Rica, you got it.

गुलराज सिंह की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था उंगली। मनोज यादव ने इसे लिखा, गुलराज सिंह का म्यूजिक। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

ये जवानी है दीवानी, ये था फिल्म का नाम। श्रीराम और शिल्पा राव की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। प्रीतम ने संगीत दिया, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा। इस गीत के साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रलोक यहीं समाप्त होता है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार। आज उस फिल्मकार की कहानी जिसकी फिल्में इस शेर के साथ शुरू होती हैं।
1: मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
0: बहुत बरस पहले की बात है, गुजरात में बड़ौदा के पास एक गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहता था। उस लड़के को फिल्मों का ऐसा शौक था कि बड़ौदा से निकलने वाली किसी ट्रेन में सवार हो जाता और आसपास के गांव या कस्बे में पहुंच जाता, लाइन से एक दो फिल्में देखता और लौटती ट्रेन से चुपचाप वापस आ जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले ये सोचते कि ये लड़का यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जाने किन किन के साथ खेलता रहता है। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में बैठा मुंबई की तरफ जाने के लिए, इरादा ये था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। पिताजी को पता चल गया, पिताजी ने जमकर कुटुम्बस की और वापस ले आए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज रोचक दास्तान महबूब खान की।

महबूब खान का जन्म 9 सितंबर 1906 को बड़ौदा के पास सरार गांव में हुआ था। बहुत सामान्य सा परिवार था, छोटा मोटा काम था, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, जिंदगी खुशनुमा थी। जैसा कि हमने आपको बताया, महबूब खान की बचपन की जिंदगी में ट्रेनें चला करती थीं और उन ट्रेनों पर सवार होकर वो आसपास जाते, फिल्में देखते और वापस लौट आते। जहन में बस ये चलता रहता कि किसी तरह से वो खुद को पर्दे पर देख पाए, शौक अभिनय करने का था। तो भाई ये सिलसिला जारी रहा। पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए कायदे से पढ़ाई लिखाई हो न सकी और फिर हुआ यूं कि आसपास के शहरों में फिल्में देखना होता रहा। समय बीतता गया। हुआ यूं कि महबूब खान की दोस्ती एक रेलवे गार्ड से हो गई थी और उस रेलवे गार्ड ने उनको पूरी तरह से यकीन दिला लिया कि उनके भीतर फिल्मी पर्दे पर अभिनेता बनने के गुण हैं और उन्हें भाग जाना चाहिए मुंबई। हुआ यही, 16 बरस की उम्र में महबूब खान मुंबई भाग आए और सिनेमा में अपना नसीब आजमाने लगे। कांस्टेबल पिता को पता चल गया, वो सीधे मुंबई आए, अपने बेटे को ढूंढा, उसका कान पकड़ा और उसको वापस बड़ौदा ले गए। वहां जबरदस्ती महबूब खान की शादी कर दी गई, ये सोचकर कि वो बस यहाँ बंध जाएंगे और सिनेमा के अपने जुनून को जहन से निकालकर फेंक देंगे। बहुत जल्दी महबूब खान एक बेटे के पिता भी बन गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आनी थी सो नहीं आई और आखिरकार महबूब खान ट्रेन में सवार होकर आ पहुंचे मुंबई।

हो नहीं रहा था। दिन पर दिन बीत रहे थे। महबूब खान रातें प्लेटफॉर्म पर सोते हुए गुजारते। तरह तरह की परेशानियां होती। वो हौसला नहीं हारते। हर सुबह ज्योति स्टूडियोज के सामने खड़े हो जाते। एक दिन गार्ड सचमुच इम्प्रेस हो गया और उसने महबूब खान की मुलाकात करवाई आर्दशीर ईरानी से, जो उन दिनों भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ से महबूब खान की गाड़ी चल पड़ी क्योंकि आर्दशीर ईरानी ने उन्हें बतौर एक्स्ट्रा काम दिया। सन 1927 में ये फिल्म थी अली बाबा और 40 चोर। इसके बाद वो क्राउड का हिस्सा बनते रहे, फिर जूनियर आर्टिस्ट बने, फिर सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहे और फिर ऐसा मौका आया जब भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो के तौर पर आर्दशीर ईरानी ने महबूब खान को बस चुन ही लिया था। लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने वाले और तब के विशेषज्ञ ये मानते थे कि ऐसे लड़के पर दांव नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बोलती हुई फिल्में बनाना अपने आप में एक बड़ा दांव है। महबूब खान को इस रोल से हटा दिया गया। वहीं उन्हें समझ में आ गया कि अभिनय में वो कुछ ज्यादा तीर नहीं मार पाएंगे, उन्हें जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। यहाँ से एक नया जुनून शुरू हुआ, अपनी एक स्क्रिप्ट लिखने और उसका निर्देशन करने का। उन्होंने आखिरकार अपनी एक स्क्रिप्ट पूरी की और अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर फिर से काटने लगे। प्रोड्यूसर्स उनकी कहानी सुनते, उन पर हंसते और उन्हें दरवाजा दिखा देते। आखिरकार सन 1935 में एक प्रोड्यूसर को उनकी कहानी पसंद आई और तब आई महबूब खान की निर्देशित पहली फिल्म अल हिलाल। ये फिल्म सीसिल बी डिमेलो की जानी मानी फिल्म साइन ऑफ द क्रॉस से प्रेरित थी। फिल्म चल पड़ी और महबूब खान की गाड़ी भी चल पड़ी। लगभग यही दौर था जब चिमनलाल देसाई के सागर मूवी टोन में महबूब खान बतौर विलन काम करते थे और अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। इसी दौरान सागर मूवी टोन ने उन्हें निर्देशन का मौका दिया। सन 1936 में महबूब खान ने डेक्कन क्वीन फिल्म बनाई। सन 1939 में आई एक ही रास्ता। सन 1940 में अली बाबा। सागर मूवी टोन के लिए उन्होंने सन 1940 में बनाई अपनी फिल्म औरत।

मुंबई में महबूब खान उस जमाने के वीटी स्टेशन के पास ज्योति स्टूडियोज के बाहर खड़े रहते और इस फिराक में रहते कि किसी तरह से स्टूडियो में घुसने का मौका मिल जाए, बाकी का काम वो निपट लेंगे और किसी तरह से अभिनेता तो बन ही जाएंगे। लेकिन ये

इसके बाद महबूब खान सागर मूवी टोन और नेशनल स्टूडियोज की फिल्मों का निर्देशन करते रहे। सन 1940 में आई फिल्म औरत महबूब खान के करियर की एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। सन 1942 में महबूब खान ने बनाई फिल्म रोटी और उसके बाद फिल्म नजमा का निर्देशन किया। ये फिल्म साल 1943 में आई थी। इसके बाद उन्होंने तकदीर और हुमायूं जैसी फिल्में बनाई। सन 1946 महबूब खान के निर्देशन में आई फिल्म अनमोल घड़ी।

अनमोल घड़ी के कलाकार थे नूरजहां, सुरैया और सुरेंद्र। इस फिल्म के गाने तनवीर नकवी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था। 11 नवंबर 1946 को रिलीज की गई

1949 महबूब खान के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई अंदाज। कलाकार थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुन ईरानी थे। 26 अगस्त 1949 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक प्रेम त्रिकोण थी। इसके गाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था।

सन 1952 महबूब खान लेकर आए अपनी बेमिसाल फिल्म आन। इसके कलाकार थे दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा। संगीत नौशाद का था। ये फिल्म 4 जुलाई 1952 को रिलीज की गई थी।

सन 1954 महबूब खान की फिल्म आई अमर। 1 अक्टूबर 1954 को रिलीज इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी। संगीत नौशाद का था।

ऐसा कलाकार जिसने अपनी यात्रा बतौर स्पॉट बॉय शुरू की हो और जिसके जहन में हो अनमोल ऊंचाइयों को छूने के सपने। उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज। महबूब स्टूडियोज का आगाज सन 1952 में हुआ। मुंबई के बांद्रा में स्थित इस स्टूडियोज में आज भी फिल्मों की शूटिंग की जाती है।

भारत के इतिहास में 1957 का अक्टूबर महीना बड़ा मायने रखता है। इसी साल 3 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती अस्तित्व में आई थी और विविध भारती पर प्रसारण शुरू होने के कुल 23 दिन बाद रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 1957। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक कालजयी फिल्म। कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। दिलचस्प बात ये कि ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। इस फिल्म की पटकथा और संवाद एस अली रजा, वजाहत मिर्जा और महबूब खान ने मिलकर लिखे थे। संगीत नौशाद का था, गीत शकील बदायूनी के। मदर इंडिया भारत की एक बेमिसाल फेमिनिस्ट फिल्म। महबूब खान एक स्त्रीवादी फिल्मकार माने जाते हैं, एक ऐसे फिल्मकार जो महिलाओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, चाहे उनकी फिल्म आन हो, अमर हो, मदर इंडिया हो या औरत। सशक्त नायिकाओं की भूमिकाओं वाली ये फिल्में सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएंगी। मदर इंडिया को तो एकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। ये अलग बात है कि ये फिल्म पुरस्कार जीत नहीं पाई, लेकिन विश्व स्तर पर जितना हंगामा मदर इंडिया ने उस जमाने में किया शायद ही किसी फिल्म ने किया होगा। कुछ गानों की झलक।

मदर इंडिया जैसी बड़ी लकीर खींचने के बाद महबूब खान ने ज्यादा फिल्में नहीं बनाई। सन 1962 में आई उनकी निर्देशित फिल्म सन ऑफ इंडिया।

एक फिल्मकार जिसे अभी और आसमान छूने थे, जिसे कामयाबी की और बुलंदियां छूनी थी, जिसके सहन में सपनों की फसल लहलहा रही थी, लेकिन वक्त ने उसकी रफ्तार को रोक लिया। 28 मई 1964 को सिर्फ 56 बरस की उम्र में महबूब खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया महबूब खान का सिनेमा और सिनेमा की महबूब खान की विरासत महबूब स्टूडियोज। आज भी महबूब खान को अपने समय से आगे का फिल्मकार माना जाता है। महबूब खान के सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था, जो डाक टिकट के संग्रहकर्ताओं के लिए एक अनमोल विरासत है। महान फिल्मकार महबूब खान को हमारा विनम्र नमन।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्मकार महबूब खान पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: श्रोताओ नमस्कार। आज के मेहमान कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कार्टूनिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार,

0: मंदाकिनी जोशी, आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों, कार्टून और कार्टूनिस्ट कला के ऐसे पहलू हैं जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। बेजान रंगों और साधारण रेखाओं में जान फूंक कर जो दुनिया को हंसते हंसते बहुत कुछ सिखा जाए, वही असली कार्टून है और उसे बनाने वाला कार्टूनिस्ट। तो विविध भारती के स्टूडियो में आज हमने एक ऐसे ही शख्स को, ऐसी ही शख्सियत को, ऐसे ही मेहमान को आमंत्रित किया है जो कार्टूनिस्ट हैं और अपनी इस कला से हमें सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं और हंसाते भी हैं। तो आप हैं जाने माने कार्टूनिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: वाह मंदाकिनी जी, आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
0: जी नमस्कार।
1: और विविध भारती के असंख्य श्रोता जिन्हें हम बचपन से देखते सुनते प्रेम करते आ रहे हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम
0: जी।
1: और आपका बहुत अभिनंदन है।
0: विविध भारती में आके आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे विविध भारती में आकर अपने एक पुराने चिर स्वप्न को पूरे होने जैसा लग रहा है। मैंने शुरू से विविध भारती को सुना, इसके साथ ही सांसें ली और मेरे क्रिएशन के बहुत सारे जो लम्हे हैं वो विविध भारती के साथ ही बीते हैं।
0: जी जी।
1: शुरू से इसके सारे कार्यक्रम वंदन वार से लेकर हवा महल और
0: अच्छा,
1: छाया गीत, ये सभी देखते सुनते और ये साथ साथ हमारी पढ़ाई भी चलती थी और जब कार्टूनिंग की तब भी विविध भारती हमारा साथ ही रहा। तो आज यहाँ आकर और जब आप सब लोगों से मिल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वप्न लोक में विचरण कर रहे हैं।
0: तो आपके लिए आपके सपने पूरे होने जैसा है ये।
1: जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल।
0: तो देवेंद्र जी, मैं अभी आपकी किताब देख रही थी, धूप छांव। आप तो लेखक भी हैं और आपने इसमें उन नाटकों को लिया है जो हमारे विविध भारती के हवा महल कार्यक्रम से भी आए हैं।
1: जी हाँ जी।
0: तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कार्टून के बारे में तो आपकी बातचीत हमें करना ही है, तो लेखन की शुरुआत कब हुई?
1: लेखन की शुरुआत और ये कार्टून्स की, ये कहना मुश्किल है कि कैसे, क्योंकि लगभग ये दोनों ही साथ ही चले। और शुरुआत में मैं कविताएं और लेख भी लिखा करता था अपनी समझ के हिसाब से, छोटे छोटे लेख कि लू लगने से अपने आप को कैसे बचाएं, या रक्षाबंधन के त्योहार का महत्व, या अखबारों जो आते हैं बाल स्तंभों में आई होली आई, उस तरह के ये रचनाएं, ऐसी कविताएं लेख लिखते थे और साथ ही कार्टून्स भी बनाते थे। तो लिखने की शुरुआत का सिलसिला ऐसे जमा कि ये आकाशवाणी इंदौर से बच्चों की सभा प्रसारित होती थी हर संडे, तो उस वहाँ जाने का एक लिंक बना और मैं वहाँ पर जाने लगा नियमित। और वहाँ मैंने देखा किस तरह से बच्चे अपनी कविताएं पढ़ते हैं, अपनी बात कहते हैं धीरे धीरे धीरे। और वहाँ जो संयोजिका थी रंजी सतीश जी, उन्होंने विशेष मुझे स्नेह किया और उन्होंने कहा कि बेटा तुम कार्टून्स भी बनाते हो तो तुम रेडियो कार्टून बनाओ।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो वो अपन प्रसारित करेंगे।
0: हाँ।
1: तो रेडियो कार्टून जो है उनकी उनके मार्गदर्शन में और कुछ अपनी सूझबूझ से हम लोगों ने डेवलप किया। तो एक बहुत जल्दी जल्दी जो पात्र बोलते थे बड़ी अपनी चुलबुली भाषा में, तो उस तरह से हमने नटखट्टू नाम का एक रेडियो कार्टून बनाया था और उसकी दो तीन कड़ियां प्रसारित हुई थी। तो इस तरह आकाशवाणी का माहौल जो है उसमें घुलने मिलने का अवसर मिला और ये सब साथ साथ ही चलता रहा सिलसिला। उसके बाद में फिर जब आगे चल के फिर ये महिला सभा में या युवाणी में, तो रीजनल प्रसारण के लिए फिर नाटिकाएं मैंने लिखी और बस ये रुचि बढ़ती गई, सिलसिला चलता गया।
0: तो हम कह सकते हैं कि बहुत पहले से ही रेखाओं और आकृतियों में आपकी दिलचस्पी थी
1: जी,
0: लेखन और कार्टून के रूप में बाहर निकली।
1: बस बस यही समझ लीजिए। अब जैसे कार्टून्स में जो ऊपर कैप्शन लिखे होते हैं वो भी अपनी तरह का एक छोटा लेख ही होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत तो, कुछ गागर में सागर का काम करता है।
1: जी आपने बिल्कुल सही कहा।
0: जी, तो कार्टूनिस्ट बनने के लिए हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किन किन बातों का होना जरूरी होता है, मतलब कौन से गुण होने चाहिए कार्टून बनाते वक्त एक कार्टूनिस्ट में?
1: सबसे पहले तो उसको जिसे हम सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं, हास्य की समझ, वो जरूरी है कि हमारे आचरण में वो चीज आ जाए कि हम जब बात करें तो थोड़ा हंसें बोलें, या कोई अगर हंस भी रहा है या उसने हम पे कटाक्ष भी किया तो हम रोने ना लग जाएं या तुनक मिजाजी ना बताएं, बल्कि उस चीज को एक कहते हैं हेल्दी वे में लेना चाहिए। और उससे ही धीरे धीरे एक वो इंसान का एक लहजा विकसित होता है, स्टाइल बनती है कि किस तरह से हम किसी को चोट पहुंचाए बिना हम कार्टून बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हास्य की समझ, उसके बाद में ऑब्जर्वेशन, अपने आसपास की चीजों को देखना, अपने रीति रिवाजों को

0: देखना, घटनाओं पर नजर रखना। तो ऑब्जर्वेशन और फिर पढ़ना बहुत सारा कि पहले हमारे साहित्यकार क्या लिख गए हैं, क्योंकि हम जब कार्टून बनाते हैं उसमें खबरें तो ठीक है, हमें खबर मिल गई, ताज़ा खबर उस पर बनाना है, लेकिन जो एक सलीका होता है, जो सीमा होती है, उसके लिए हम साहित्य, जो हमारे पहले के लोग काम कर गए हैं अपने कथ्य से, अपनी
1: जी
0: भाषा से,
1: जी
0: उस सबका हमको एक समझ मिलती है और समावेश करते हैं कार्टून
1: बहुत
0: में।
1: बहुत गहरी बात कह दी आपने
0: जी
1: देवेंद्र जी, कि सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जरूरी है और आसपास की घटनाओं पर।
0: बिल्कुल ठीक है।
1: तो सबसे पहला कार्टून आपने कौन सा बनाया था और वो दिमाग में कैसे आया?
0: सबसे पहला कार्टून मैंने बनाया, उसका मतलब किस्सा ये है कि पहले मैं दीवारों पे, दरवाजों पे, सब तरफ कार्टून्स बनाया करता था,
1: अच्छा,
0: क्योंकि छोटे थे
1: तो घर की
0: तो
1: दीवारें आपने
0: घर
1: खराब
0: की
1: कर दी
0: दीवारें
1: होंगी।
0: बहुत खराब करते थे। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो घर के बड़े थे, माता पिता, वो लोग उसको बहुत ही खेल भावना से लेते थे, कभी नाराज नहीं हुए।
1: अच्छा।
0: उन्हें लगा कि चलो एक कला जो है वो जन्म ले रही है और विकसित हो रही है दीवारों पर ही सही। तो ये सिलसिला चलता था और उन लोगों ने आगे बढ़ाया, लेकिन हमारे एक ट्यूटर थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम कब तक ये दीवारें खराब करोगे, तो कुछ कागज पे बना के और अखबारों तक पहुंचो, तो ये छपने का सिलसिला होगा। तो उन्होंने ऐसी राह बताई, तो फिर हम 14 वर्ष के थे तो पहुंच गए अखबार में। तो वहां संपादक जी ने भी सब देखा, कार्टून्स देखे, कविताएं देखी, तो बोले कि हम तुम्हारे बेटा कार्टून भी छापेंगे और आज से तुम बच्चों के स्तंभ के संपादक भी हुए।
1: अरे क्या बात
0: तो
1: है।
0: मैंने पूछा कि संपादक क्या होता
1: हाँ
0: है,
1: हाँ हाँ बिल्कुल,
0: तो
1: 14 साल का
0: उन्होंने,
1: बच्चा है,
0: हाँ
1: उसका सवाल
0: वही,
1: यही होगा।
0: तो उन्होंने यही कहा कि जो रचनाएं आती हैं बॉक्स में इकट्ठी होती हैं, कविताएं, कहानियां, चुटकुले, उनको तुम्हें देखना है और उन्हें बहुत ज्यादा, अगर वो लंबे चौड़े हों तो उन्हें थोड़ा छोटा करना है, उनकी अशुद्धियां दूर करना है, और सामयिकता के हिसाब से कि जैसे दिवाली आ रही है तो ऐसा नहीं हो कि तुम होली की रचना रिलीज कर दो, तो वो करना
1: जी
0: है
1: जी
0: और कार्टून्स भी हम तुम्हारे छापेंगे। इस तरह सिलसिला शुरू हुआ और पहला कार्टून जो था, चूंकि इन दिनों करवा चौथ आ रही थी, तो मैंने सोचा क्या बनाऊं, तो मैंने बनाया कि एक व्यक्ति है वो घर में बैठा अखबार पढ़ रहा है, उस व्यक्ति के सिर पे बाल नहीं है
1: अच्छा
0: और उनकी जो पत्नी देवी है वो खिड़की के बाहर खड़ी देख रही हैं, हाथ में पूजा की थाली है और वो चंद्रमा ढूंढ रही है, चांद
1: जी
0: की तरह। तो छोटा बच्चा एक आया और वो आके कहता है कि माँ माँ आप बाहर चांद कहाँ ढूंढ रही हो, वो तो हमारे घर में मौजूद है। उसका इशारा पिता के सिर की तरफ
1: जी
0: था।
1: जी
0: ये इस तरह से कार्टून पहला बना था।
1: जी बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपका पहला कार्टून इस रूप में आया।
0: जी
1: जब बात पहले कार्टून की चली है तो इस कार्टून का पहला गीत भी आपकी पसंद का सुन लेते हैं हम,
0: जी पहला
1: बताइए।
0: गीत तकदीर फिल्म का, वो मुझे बहुत पसंद है। आइए बाहर को हम बांट लें, जिंदगी के प्यार को हम बांट लें।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत है, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: तो देवेंद्र जी, आपने बताया कि 14 साल की उम्र में आप एक अखबार में संपादक के रूप में भी लग गए, बाल संपादक के रूप में, और आपने काम करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे इस कला को आपने विकसित किया होगा। जब आप एक बाल संपादक बन गए, बहुत सारी चीजों के संपर्क में आए, खुद भी आपने कार्टून बनाना लगातार बनाए रखा, तो इस कला शैली को विकसित होने में आपकी नजर में आपको कितना समय लगा?
1: विकसित होने में इसे समय की अवधि में इसलिए नहीं मान सकते कि ये विकास होना एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है हमेशा।
0: जी
1: हम नई चीज़ों को अपने में समाहित करते हैं कला में, और वो फिर हर दिन एक नई ताजगी, नयापन उसमें महसूस होता है। और वैसे शुरू के कुछ शायद 1-1.5 साल ऐसे लगे होंगे जब काम करते करते लगा कि ये मेरी शैली हो सकती है, मैं इस तरह ही कार्टून बनाऊं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इसमें सब बात आ जाती है। प्रमुखता से किन पात्रों को उभारना है, बैकग्राउंड में क्या रखना है। और फिर मैं एक मेरी एक हमेशा कोशिश रहती है कि कार्टून का जो कोना कोना है उसमें से हास्य झल के, जाने कि एक गमला रखा है या कहीं ऊपर एक झाड़ फानूस भी है या कोने में एक पिल्ला बैठा हुआ है, तो ये सब
0: जी, ये सभी
1: तो
0: चीजें पात्र बहुत कुछ कहते हैं
1: जी हाँ,
0: जब हम
1: बिल्कुल
0: इन
1: बिल्कुल,
0: कार्टून्स पर नजर डालते हैं। तो
1: ये
0: मतलब वो
1: बिल्कुल
0: जो
1: सही है।
0: पिल्ला बैठा हुआ है वो भी कुछ कह रहा ही होता
1: हाँ,
0: है।
1: कहता है कई बार उसे, जो संवाद मान लो हम किसी बड़े से नहीं कहलवा सकते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: है ना, और उसको इनडायरेक्ट वे में कहलवाना है, तो कहीं पिल्ला बोल देता है, कहीं ऊपर से उड़ती हुई चिड़िया आती है वो बोल देती है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: जी
0: तो आप जब एक खाली कैनवास या कागज आपके सामने होता है, तो हर दिन की अगर हम बात करें तो पहला विचार क्या आता है आपको?
1: कागज और कैनवास जब खाली होता है, पहले तो विचार आता है, उसके बाद कागज आता है। और वैसे भी खाली कागज और कैनवास सहन नहीं होता, वो ऐसा लगता है कि अपने को बुला रहा है और कह रहा है कि आओ मुझ पर, आप कुछ ना कुछ बनाओ और रंग से आप भर दो मुझे, ताकि मैं पाठकों के अंदर में जो है रंग उसकी सृष्टि करूं, बिखेरूं रंग को
0: बहुत सुंदर। जी
1: मैं।
0: जी जी तो हर
1: तो
0: दिन आप एक कार्टून बना लेते हैं या हर दिन ये रचना होती है?
1: जी हाँ, हर दिन, क्योंकि ये समय के साथ चलना होता है। जैसे अगर आप अखबार में हैं, दैनिक अखबार में हैं, तो रोज आपको बनाना है, और अगर आप पत्रिका में हैं, पाक्षिक पत्रिका में, तो इंसान थोड़ा सा सुस्त सा हो जाता है कि आराम से आज नहीं तो अपन फिर बना दें, 15 दिन नहीं तो निकलनी है।
0: बिल्कुल
1: तो मेरा कुछ मिजाज इस तरह से डेवलप हुआ कि, और स्पीड भी ऐसी बनी कि खूब सारे कार्टून एक दिन में। तो प्रदेश का सबसे बड़ा जो अखबार है उसमें जब मेरी एंट्री हुई, तो वहां पर यही था कि जब शुरू शुरू में मैं गया तो एक पहला कार्टून बना कर दिया, संपादक जी खुश हुए कि हाँ इसको ले लेंगे, थोड़ी देर में हम दूसरा बना के फिर ले गए, वो बोले ठीक है इसे फलां पेज पे ले लेंगे, फिर पहुंच गए तो उन्होंने हंस के कहा, श्रीमान जिस गति से आप बना रहे हैं उस गति से हम नहीं छाप
0: अरे
1: पाएंगे
0: अच्छा,
1: तो आप थोड़ा आहिस्ता। तो मैंने कहा
0: मतलब आप इतनी तेजी से, इतनी रफ्तार के साथ एक दिन में एक कार्टून
1: जी
0: बना
1: हाँ जी
0: लेते
1: हाँ,
0: हैं।
1: मेरा 17 कार्टून्स एक दिन में, इसका मतलब है हाईएस्ट जो
0: सेवनटीन
1: रिकॉर्ड, हाँ
0: 17 कार्टून
1: रिकॉर्ड
0: आप एक दिन में
1: है,
0: बना
1: एक दिन
0: लेते
1: में
0: हैं।
1: बनाने का रिकॉर्ड है, मतलब कि वो भी बस तब हुआ था कि उस अखबार विशेष का जब दीपावली अंक आ रहा था, उन लोगों ने कहा कि हमें अब जल्दी से अंक निकालना है क्योंकि हम लेट हो रहे हैं, तो कल से शुरुआत, मैंने कहा आज से भी कर सकते हैं। तो उस दिन के जो अगले पन्ने का कार्टून, फिर एक जो साप्ताहिक मैडम मोहिनी आती थी, बड़ा पॉपुलर कार्टून कॉलम।

0: वो तो उसका स्ट्रिप उसकी तैयार की, फिर उसके बाद में अंतिम पत्र के साथ का कार्टून, फिर उसके बाद में राशि के 12 कार्टून, 12 सिंह राशि का हमने बना दिया। चपरासी आया, झट लेके अंदर पहुंचा, वो मशीन पे जा रहा है, तब तक हमने कन्या राशि का बना दिया। इस तरह से ये सब
1: अरे वाह,
0: कार्टून्स
1: बहुत सुंदर। तो आपके विषय क्या रहते हैं इन कार्टून्स के, हर बार क्या विषय चुनते हैं आप?
0: विषय वही जो हमारे आसपास बिखरे होते हैं रोजाना के, जैसे खबरें अखबार की या जो बाहर की जो हम घटनाएं
1: सामाजिक विषय
0: देखते हैं।
1: हैं,
0: हाँ, सामाजिक
1: राजनीतिक
0: विषय
1: विषय
0: होते हैं,
1: हैं।
0: राजनीतिक भी होते हैं, वही सब सारे विषय होते हैं। और बस वो पाठक को गुदगुदा दें, बस कोशिश यही रहती है कि बहुत ज्यादा दुरूह और जटिल ना हो, और इतने भी सिंप्लिसिटी उनमें ऐसे भी ना हो कि सड़क छाप नजर आए,
1: जी,
0: वो चीजें
1: वो
0: हैं।
1: मतलब चुटकुला भी न लगे कि कहीं
0: हाँ,
1: आप
0: वो
1: किसी
0: भी
1: जोक को सुना रहे हैं ना, ऐसा भी न
0: बिल्कुल
1: लगना कि
0: बिल्कुल
1: जोक्स
0: ना,
1: नहीं है। क्योंकि एक बारीक अंतर है जोक्स और कार्टून के मध्य,
0: कार्टून्स में
1: कि
0: बिल्कुल सही
1: कार्टून
0: है,
1: कला क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। तो कई बार
0: बिल्कुल
1: ऐसा भी होता होगा देवेंद्र जी, आपने कहा कि आप एक दिन में 17 कार्टून्स बना लेते हैं या लगातार बहुत तेजी के साथ बनाते हैं, कभी ऐसा आया कि दिमाग खराब है या गुस्सा है या परेशान है और कोई विचार सूझ ही नहीं रहा है, ऐसी स्थिति कभी आई आपके सामने?
0: ऐसी आ सकती थी, लेकिन पता नहीं ईश्वर ने मुझे शाप देकर भेजा है। यानी कि घर में आप समझ लीजिए कि बुरी से बुरी दुर्घटना ऐसी कोई हुई हो, जबकि हमारे यहाँ पर नानी हमारी नहीं रही उस दौर में भी, और कोई हो तो 13 दिन छुट्टी लेके बैठ जाए, लेकिन हम दूसरे दिन गए, और फिर चूंकि अभी हंसी वाला मामला है तो पता नहीं कहाँ से कौन सी बत्ती जलती है, और आप वही चीज बनाकर आते हैं, और लोगों को मालूम भी नहीं रहता कि इनके परिवार में क्या हुआ है। जाके अपना काम करते हैं हंसी खुशी, क्योंकि वो काम है ईश्वर ने सौंपा है तो करना है, वो बात है। और
1: बहुत बड़ी
0: उसको
1: बात, यानी आप पूरी तरह से समर्पित हैं अपनी कला के
0: जी
1: प्रति।
0: हाँ बिल्कुल
1: तो इस कार्टून की अगर हम बात करें, आज मानव जीवन में क्या उपयोगिता है जब डिजिटल युग आ गया है, इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, दुनिया भर के समाचार, दुनिया भर की खबरें और अनाप शनाप भरा हुआ है जहां,
0: हाँ
1: ऐसे
0: बिल्कुल
1: में एक छोटा सा कार्टून जो एक अखबार के कोने में, पत्रिका के कोने में कहीं होता है बैठा हुआ, उसकी क्या उपयोगिता लगती है आपको?
0: कार्टून की उपयोगिता मंदाकिनी जी शुरू से बहुत रही है, और आज के समय में तो उपयोगिता इसकी काफी, क्योंकि आज हर इंसान जिसे हम देखें वो अपने तनाव में, समस्याओं में घिरा हुआ है, उसको टेंशन है। ऐसे में अगर वो किसी कार्टून के टच में आता है तो उसके चेहरे पर जो एक हल्की सी मुस्कान आती है वो रिलैक्स हो जाता है, तो ये उस कार्टून की सफलता और उपयोगिता है। क्योंकि अगर वो हंस देता है तो उससे मतलब राहत तो मिलती है उसको, और अपने टेंशन से लड़ने के लिए, समस्याओं से लड़ने के लिए उसको एक नई शक्ति मिलती है, ताजगी मिलती है, वो
1: जी,
0: कार्टून की ही देन होती है।
1: यानी
0: और
1: आज भी इसकी उपयोगिता वही
0: उपयोगिता
1: है जो
0: इसकी
1: पहले
0: बिल्कुल
1: हुआ
0: बिल्कुल
1: करती
0: बनी
1: थी।
0: हुई, क्योंकि हम देखते हैं ना कि अगर हम हंस दिए तो माहौल कितना हल्का फुल्का हो जाता है ना, और नहीं हंसेंगे तो बोझिल हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज ये कि हंसने की जो देन है, हास्य का जो उपहार है, ईश्वर ने मनुष्य को ही दिया है। हमने कभी वॉल्ट डिज्नी के कार्टून के अलावा किसी कुत्ते को हंसते हुए नहीं देखा, या किसी चूहे
1: जी
0: को हंसते नहीं देखा है।
1: जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब हास्य की बात चली है तो क्या कार्टून में हास्य अधिक होना चाहिए या व्यंग्य?
0: हाँ, ये प्रश्न भी आपका बहुत अच्छा है, और अक्सर लोग इस अनुपात को नहीं कायम रख पाते हैं, लेकिन मैंने इसको एक अनुपात मैंने अपना तय कर रहा है कि उसमें व्यंग्य भी होना चाहिए और उसमें हास्य भी होना चाहिए, ताकि सभी को कुछ ना कुछ मसाला मिलता रहे। और फिर अपन कहते हैं ना कि कोई कड़वी बात भी हो तो उसको मीठी चाशनी में अगर लपेट कर प्रस्तुत करते हैं तो उसका असर अधिक होता है और उसका आनंद भी रहता है। तो कार्टून्स में भी यही किया जाता है, जैसे कि कोई समस्या है, मान लीजिए उसको अगर व्यंग के माध्यम से हम कहें तो वो कड़वा भी हो सकता है, वो क्रूर भी हो सकता है, और उस शुष्क भी होता है वो,
1: जी
0: लेकिन अगर उसमें हास्य हमने डाला है तो फिर वो सरस हो जाएगा, और बात रहेगी वही लेकिन उसका कहने का एक तरीका बदल जाएगा, तो लोग
1: बिल्कुल
0: हंसते हंसते उस चीज को ग्रहण करेंगे,
1: जी,
0: और सिस्टम सुधारने के लिए हमने जो सोचा है वो बात जहां जानी है वो पहुंच भी
1: चली भी
0: जाएगी,
1: जाती
0: बस
1: है।
0: पहुंच
1: बिल्कुल
0: जाता।
1: सही कहा आपने। और बड़ा गुदगुदाते हैं ये कार्टून्स। तो
0: हाँ वो
1: एक
0: तो
1: दो
0: है,
1: अपने कार्टून्स के बारे में बताइए आप, कि जहां आपको लगा हो कि मैंने इसमें हास्य और व्यंग्य का बहुत ही संतुलित प्रयोग किया है।
0: जी हाँ, जैसे हम सुनते हैं ना कि ये जो अक्सर देखा भी गया है कि किसी को कुर्सी मिल गई, मान लीजिए नेता को मिल गई, तो उस कुर्सी से उसको मोह हो जाता है, उसे सत्ता का मोह भी हम कहते हैं, प्रतीक में है कुर्सी। तो उस कुर्सी को मुश्किल से ही जब हासिल होती है तो

0: छोड़ता भी इंसान मुश्किल से। इस पर
1: जी
0: मैंने एक कार्टून बनाया था कि एक नेता महोदय हैं, वो अपनी कुर्सी पर कस कर बैठे हुए हैं, उसके हैंडल वगैरह पकड़े हुए। इतने उनका नौकर आया कुर्सी झाड़ने के लिए कपड़ा लेकर,
1: कुर्सी
0: तो वो
1: झाड़ने
0: कह
1: के
0: रहा
1: लिए
0: है
1: कपड़ा
0: कि
1: लेकर
0: मालिक
1: आया,
0: आप थोड़ा सा हट जाएं तो मैं कुर्सी को झाड़ दूं।
1: जी कुर्सी को झाड़
0: तो नेताजी ने क्या किया, ये 3 फ्रेम्स में कार्टून, दूसरे फ्रेम में वो ऊपर उठ गए, कुर्सी के हत्थे उनने कस के पकड़ लिए हैंडल और पूरे ऊपर उठ गए हैं और कह रहे हैं कि लो भाई तुम कुर्सी झाड़ लो पर इसको छोड़ूंगा तुम्हें बिल्कुल नहीं। तो ये एक वृत्ति की तरह हमने संकेत भी दिया और हंसी हंसी में वो बात भी हो गई।
1: कह दी। तो
0: जी
1: चलिए अभी एक गीत आपकी पसंद का हम सुन लेते हैं।
0: हाँ, सागर फिल्म का गीत है जिसे SB बालासुब्रमण्यम ने गाया है, सच मेरे यार है बस
1: बस
0: वही
1: यही प्यार
0: प्यार है।
1: है,
0: हाँ
1: बहुत सुंदर और
0: जी
1: गहरा गीत है,
0: जी
1: एक दार्शनिक गीत है। कमल हासन साहब पर्दे पर दिखाई देते
0: हाँ
1: हैं,
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: बिल्कुल
1: सुंदर।
0: सच

0: तो देवेंद्र जी, आपके कार्टून्स के बारे में हम बात कर रहे हैं और बहुत ही शानदार कार्टून्स हैं जिन्हें हम जब जब पढ़ते रहे हैं तो लगता है कि गुदगुदाहट होती ही है। कार्टून्स बनाते समय एक कार्टूनिस्ट को कैसा माहौल चाहिए होता है, मतलब वो किस तरह का माहौल पसंद करता है?
1: जैसे हर रचनाकार की पहली शर्त होती है रचना करने के लिए कि एकांत हो, शांति हो, वही कार्टून के वक्त भी बनाते वक्त भी मुझे यही लगता है कि वहाँ शोरगुल ना हो थोड़ा, ताकि कंसंट्रेशन हो सके। और उसके लिए बस मैंने सोचा हमेशा शांति तो महसूस नहीं होती, तो वहीं फिर आपकी विविध भारती काम आती है।
0: अच्छा, कैसे?
1: रेडियो एक छोटा छोटा सा ट्रांजिस्टर है मेरे पास में, वो बजता रहता है और उसमें जो संगीत की लहरियां निकलती हैं बस उसी परिधि में हमारा ध्यान होता है और बस आराम से कार्टून बन जाता है। और यही विधि जब मैं पढ़ाई करता था तब भी यही सब चलता था कि धीमे धीमे रेडियो बज रहा है और आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पाठ याद कर रहे हैं। तो कार्टून के लिए भी एक तो संगीत हल्का हल्का मध्यम संगीत हो और मंदाकिनी जी की आवाज हो
0: शुक्रिया।
1: और साथ में अगर चाय का गर्म प्याला मिल जाए
0: अरे
1: तो
0: वाह,
1: ये बहुत अच्छी बात है।
0: आपने बहुत ही क्लासिक तरीके से बात समझाई
1: और
0: है। वाकई ये
1: जी
0: एक माहौल एक कलाकार को चाहिए होता
1: जी
0: है, चाहे
1: जी
0: वो लेखक
1: बिल्कुल,
0: है, चाहे कार्टूनिस्ट है,
1: हाँ
0: या वो
1: बस
0: सिंगर है, कोई भी कलाकार हो
1: बहुत थोड़ी
0: सकता
1: सी
0: है।
1: रिक्वायरमेंट होती है, एक छोटी सी जगह में बैठ के अपना काम बस हो जाता है कंप्लीट, बस ये है।
0: तो क्या कार्टूनिस्ट के जरिए जब आप लोगों को हंसाते हैं तो आपको खुद भी क्या खुश मिजाज होना पड़ता है कार्टूनिस्ट को पहले?
1: बिल्कुल होना पड़ता है, उर्वर भूमि जो होगी उसी में तो फिर अच्छा पौधा खिलेगा, फूल खिलेगा। तो हंसना हंसाना तो बहुत जरूरी है, और बल्कि मुझे लगता है कि जब आइडिया हमने जब चित्रित कर लिया या आइडिया के टच में आए तो पहले हमारा खुश होना बहुत जरूरी है। अगर हमें लगता है कि हाँ हम खुल के हंस दिए, हमें रोम रोम पुलकित हो रहा है, तब लगता है कि ये अब वेल टेस्टेड हो गया और ये जाकर ये पाठकों को जरूर ये गुदगुदाएगा और बात जो हमारी कहना है वहां तक पहुंचेगी।
0: सबसे बड़ी
1: तो
0: बात ये
1: हाँ ये
0: है,
1: बहुत जरूरी है,
0: मतलब
1: खुश
0: दिमाग की
1: होना
0: खिड़कियां खुली होनी
1: खुली
0: चाहिए।
1: होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, उसमें ये नाप तोल के मुस्कान वाला काम नहीं
0: हाँ, सबसे बड़ी बात ये है
1: चलता
0: कि जब आप किसी विधा पे काम करते हैं तो
1: है।
0: पहले खुद को उस विधा से जोड़ने के लिए वैसा बनना
1: हाँ
0: पड़ता है।
1: वैसा बनना पड़ता है, बिल्कुल जरूरी है।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई। जो श्रोता इस समय आपको सुन रहे हैं उनमें बहुत लोग ऐसा हो सकते हैं कि वो कार्टूनिस्ट हो, तो
1: हाँ
0: वो भी इस बात को ध्यान रखेंगे कि एक कार्टूनिस्ट को खुद भी वैसा मिजाज रखना पड़ता है पहले। तो अपने कार्टून में जान फूंकने के लिए देवेंद्र जी आप किन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं?
1: सबसे पहला तत्व तो है आइडिया, उसके बाद में कागज पर उसे उतारते हैं, वो पेंसिल की मदद से, पेंसिल पेन ब्रश ये सब चीजें होती हैं। और उसके बाद में जब कार्टून मुकम्मल हो जाता है फिर उसे कंप्यूटर में ले जाकर वो ट्रीटमेंट देते हैं और फिर वो आगे बढ़ता है। इस तरह से कार्टून ऐसे तैयार होता है, बस ये बेसिक तो यही है। बाकी जो कला जो है अगर देखा जाए तो कला हाथ में होती है, किसी टूल्स में नहीं होती है, मतलब हर वक्त नहीं होते हैं जरूरी, लेकिन जब आप अखबार के लिए काम कर रहे हैं, मैगजीन्स के लिए कर रहे हैं,
0: प्रोफेशनली जब आप
1: हाँ जब
0: काम
1: कर
0: कर
1: रहे
0: रहे
1: हैं
0: हैं।
1: उस वक्त में जो मैंने आपको बताया शुरुआत में कि पेंसिल से शुरू हो गई यात्रा, ये कंप्यूटर पर खत्म होती है, ये चीज़ है।
0: तो आप तो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरह के विषयों पर कार्टून बनाते हैं,
1: जी
0: क्या कार्टूनों की कोई सीमा रेखा होती है जिसके अंदर ही एक कार्टूनिस्ट को काम करना होता है?
1: बिल्कुल होती है, और सीमा
0: थोड़ा हमें
1: रेखा
0: बताइए किस तरह की ये लाइन होती है,
1: ये,
0: क्राइटेरिया जिसे हम कहते हैं
1: हाँ
0: एक।
1: ये सीमा रेखा दरअसल वही होती है जो एक सभ्य मनुष्य को भी पालन करना चाहिए, वही कार्टून्स में भी है कि आप एक तो नैतिकता का ध्यान रखें, मानवता का रखें, और जो हम कहते हैं कि सब बराबर हैं, सारे जीव जंतु सारे इंसान बराबर हैं, उन्हीं चीजों को लेकर मेंटेन करते हुए, और किसी पर हम मान लीजिए कि कटाक्ष भी करें तो हल्का फुल्का करें हंसी के साथ, लेकिन ऐसा ना हो कि वो मामला तूल पकड़ ले।

0: नाम सुना होगा,
1: जी
0: है ना,
1: जी
0: सुप्रसिद्ध
1: जी बिल्कुल।
0: गीतकार और सांसद।
1: अरे
0: तो बाल कवि जी ने मेरा एक कार्टून देखा था जब मैंने बनाया था मध्य प्रदेश की सरकार को लेकर तत्कालीन, तो उस कार्टून को देखकर उन्होंने वो कार्टून अप्रिशिएट भी बहुत हुआ था। और बाल कवि जी का मुझे पत्र मिला,
1: जी
0: प्रिय देवेंद्र तुम बहुत दुष्ट हो,
1: अच्छा
0: तुम्हें पता नहीं तुम्हारा यह कार्टून लोगों ने फ्रेम करवा कर रख रखा है
1: हाँ
0: और किसी भी कलाकार के खाते में यह बहुत बड़ा जन प्रतिदान है।
1: अरे
0: मेरी तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद।
1: क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत सुंदर। मतलब बाल कवि बैरागी साहब आपको ये बात कह रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल,
1: देखिए उनके कहने में भी कितना अपनत्व है और गहराई है।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है।
1: बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि एक कार्टून जैसी छोटी सी विधा है, बहुत गहरी विधा है, उसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साहित्यकार कलाकार भी
0: देखते
1: पढ़ते
0: हैं
1: देखते
0: आप,
1: सुनते हैं और
0: बिल्कुल
1: सराहते हैं।
0: सही बात है।
1: चलिए आपकी पसंद का एक गीत सुनते हैं।
0: बस यहाँ बालकवि बैरागी जी का लिखा हुआ रेशमा और शेरा फिल्म का गीत कैसा रहेगा,
1: बिल्कुल अच्छा रहेगा,
0: तू चंदा मैं
1: मैं चांदनी।
0: चांदनी।
1: आइए सुनते हैं बालकवि बैरागी का लिखा ये बहुत ही खूबसूरत गीत।
0: जी बिल्कुल।

0: बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना अभी बैरागी साहब का लिखा हुआ। तो आप चूंकि इतने कार्टून्स बना चुके हैं, उस पर भी मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि आपकी पसंद का कोई कार्टून जिसके बारे में आप बताना चाहें जो आपको बेहद पसंद हो।
1: मेरी पसंद के तो बहुत सारे कार्टून्स हैं। अभी मैनेजमेंट पर बनाया एक कार्टून याद आ रहा है मुझे
0: बताइए
1: कि एक दादाजी हैं, ये तीन फ्रेम्स में बनाया हुआ था ये,
0: जी।
1: कि एक दादाजी हैं वो लेटे हुए और अपने पोते से बोल रहे हैं, कम उम्र का पोता है, कि बेटा मेरे पैर दबा दो, बहुत दर्द कर रहे हैं मेरे पैर।
0: हाँ
1: तो कहता दादाजी मैं अभी आता हूँ। और फिर वो जब लौटा तो उसके हाथ में आरी थी काटने वाली,
0: हाँ
1: आरी लेके आया वो। तो दादाजी सहम के बैठ गए पैर सिकोड़ के।
0: हाँ
1: आरी क्यों? बोले दादाजी हमारे मैनेजमेंट गुरु कहते हैं किसी भी काम को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो, उसके
0: हाँ
1: बाद उस काम को पूरा करो।
0: वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
1: और एक कार्टून और भी ध्यान आ रहा है कि जैसे कार्टून कई बार ये घटनाओं पर होते हैं, खबरों पे होते हैं, ट्रेंड्स पे होते हैं, मनोविज्ञान पे भी कार्टून बनाने मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि किसी किशोरी का मनोविज्ञान, ये मैंने ऑब्जर्व किया था, तो उस पर कार्टून मैंने बनाया जो महिलाओं के स्तंभ में छपा था,
0: जी
1: कि एक टीनेजर कन्या है, वो अपने घर में बिस्तर पर औंधी लेटी हुई कुछ कविताएं वगैरह लिख रही है,
0: जी
1: पास में गुलाब के फूल भी हैं, डायरी है ऐसा, और वो अपने सपनों में खोई हुई है, और कुछ पंक्तियां भी हैं जो हम बाद में देखेंगे क्या वो कह रही है। और पंक्ति ये है कि सपनों में बस गई है एक मादक गंध, सपनों में बस गई है एक मादक गंध,
0: गंध।
1: मानो दूध उफन गया हो कहीं। और उस कार्टून में पीछे बताया गया है कि गैस पे वास्तव में दूध चढ़ा हुआ है और वो उफन के और बह रहा है और पूरे फर्श पे फैला है। और
0: ओहो
1: इसमें मजा और कि दरवाजा खुला और उनकी माता जी सब्जी वगैरह लेके आ रही हैं और उन्होंने दूध देखा तो अंगारा हो गई वो।
0: जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कितनी गहरी बात आपने कही कि एक किशोरी मन की क्या जो है सोच होती है,
1: हाँ जी
0: मनोविज्ञान क्या होता है
1: हाँ
0: किशोरपन का, वो आपने इसमें बताया, बहुत सुंदर। तो
1: नहीं
0: एक
1: वो
0: साधारण स्केच से लेकर अंतिम प्रकाशित कार्टून तक की आपकी जो प्रक्रिया है वो क्या रहती है?
1: उस प्रक्रिया में सबसे पहले आता है विचार। उस विचार में ध्यान ये रखते हैं क्योंकि कई बार विचार ऐसा भी आता है, मान लीजिए उसको पहले मैं ये कहा करता था साथियों में कि मुझे शेर जैसा विचार आता है और उसको मैं पीट पीट कर बकरी जैसा बनाकर पेश करता हूँ। तो ये जो बकरी जैसा बनाना जो है ये दरअसल एक सामंजस्य वाली चीज है,
0: जी
1: और ताकि जिससे सब लोग खुश रहें और उतना तीखापन महसूस ना करें कि बात बिगड़ जाए। तो उस तरह से कार्टून बनता है। तो पहले विचार आया और विचार के बाद में, जैसे हाँ आर के लक्ष्मण साहब ने भी कहा था
0: जी
1: कि पहला विचार जो आता है उसमें मत आप उलझ जाओ, वो आपको लुभाता है और ललचाता है, इसलिए उससे आप और आगे चलो, सेकेंड थाट, फाइनल थाट, ऐसे करके। तो उसमें उसका रिफाइनमेंट होता है, आगे वो चीजें चलती हैं। तो ये प्रक्रिया मेरी भी है कि पहला विचार आया, उसको अलग रखा, फिर और उस पर सोच रहे हैं, अलग अलग कोण से सोच रहे हैं, अलग अलग उसमें सिचुएशंस भी बनती हैं, और फिर जब वो रिफाइन होकर वो आता है तो अच्छा लगता है, देख के मन खुद कहता है कि नहीं ये चीज बढ़िया है और ये आगे
0: जी
1: बढ़ना चाहिए ये।
0: जी बहुत
1: ऐसे
0: सुंदर, बिल्कुल यही काम करने का भी तरीका है कि आप अगर विचार पे अटक कर रह गए तो फिर
1: पहले
0: वहीं
1: विचार,
0: खड़े रह जाते
1: हाँ
0: हैं।
1: बस बस बस
0: तो आज के डिजिटल युग की हम बात कर रहे हैं और इंस्टाग्राम जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो कार्टूनिस्ट के काम करने का क्या तरीका बदला है?
1: तरीका तो नहीं बदला है, ये है कि
0: विचार बदला होगा, सोचने की
1: विचार भी
0: होगी।
1: बदला है और उनमें विचारों में भी आज जो हम कहते हैं ना एक गरिमा उतनी नहीं, आजकल जो हो रहा है वो गरिमा उतनी नहीं, उसको मेंटेन करके चलना चाहिए, क्योंकि भाषा की भी खूबसूरती एक होती है कार्टून के अंदर वो है। और पात्रों की जो विविधता, जो जैसे हम चुनते हैं कि हर बार रोज एक ही एक तरह का आप बना रहे हैं, सूटेड बूटेड ये वो, उसके बजाय आप लोक जीवन में उतरें, बाहर देखें सड़क पे कितने तरह के पात्र दिखाई देते हैं, तो कभी बात उनसे भी कहलवाएं, ये होता है अलग अलग पात्र अलग अलग बात कह रहा है, तो उसका मजा आता
0: तो लोक जीवन से जुड़ा कोई कार्टून आपको
1: है।
0: याद हो, आपका बनाया हुआ?
1: लोक जीवन से जुड़ा मेरा कार्टून एक ध्यान आ रहा है मुझे, वो भी थोड़ा इस तरह का है कि जैसे जब वीमेंस लिब का जो चला था शुरुआती जोर था, तो उसमें मैंने बताया कि एक खेत में किसान बैठा हुआ है, फुर्सत के लम्हों में हल चला के बैठा है, और पास में उसकी जो पत्नी है वो पोटली में रोटी वगैरह लेके आई है और प्याज और है ना मिर्ची ये सब अचार, तो वो खाना खा रहा है और वो पंखा चल रही है उसको बैठे हुए, है ना कितना सुंदर दृश्य। तो इसमें तो एक तो आपने पूरा बैकग्राउंड दिखाया, झोपड़ी दिखाई, खेत दिखाया।

0: हल्दी खाया, उसका स्त्री और पुरुष का पहनावा, तो इसमें लोक जीवन की, लोक पहनावे
1: जी
0: की झलक
1: जी
0: मिली।
1: जी
0: अब उसके बाद वो सड़क से दो आधुनिकाएं जा रही हैं कार से, तो उनने कार रोकी और ये दृश्य देख के वो कह रही हैं कि ये कितनी अभागी औरत है ये, मतलब नारी स्वातंत्र्य के विचार से एकदम अनजान है, चलो इसे हम चल के और उसकी दासता से मुक्त कराएं पुरुष की दासता से। तो ये ऐसी चीजें
1: बहुत बड़ा व्यंग्य, बिल्कुल सही कहा आपने कि दो स्त्रियों की मनोदशा आपने बताई,
0: हाँ
1: कि
0: बस
1: जो
0: बस बस
1: ग्रामीण परिवेश की स्त्री जो सुख अनुभव कर रही है,
0: अनुभव कर रही है
1: आधुनिक परिवेश की स्त्री उस सुख को नहीं जान पा रही है और
0: जी
1: उसको दास्ता बता रही है।
0: हाँ, तो ये जो विसंगति है बस इसको
1: हाँ
0: ये उसमें दिखाने की कोशिश
1: बहुत
0: हुई है।
1: सुंदर, बहुत सुंदर देवेंद्र जी, बहुत सुंदर। तो अगर मैं देवेंद्र जी से ये पूछूं कि इतने कार्टून्स आपने बना लिए, लगभग कितने कार्टून्स बना लिए होंगे?
0: ये 60,000 से ऊपर हो चुके हैं, ये
1: 60,000 से ऊपर
0: से
1: कार्टून आप
0: ऊपर
1: बना चुके
0: हैं।
1: हैं अब
0: जी
1: तक,
0: जी जी जी
1: और
0: इनका
1: ये विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छप रहे हैं या इन पर
0: ये
1: आपने किताब भी लिख ली है?
0: किताब में तो ये नहीं आ सकते, अभी मेरे तो करीब 6-7 व्यंग्य संकलन ही निकले हैं, बाकी ये है कि इनके ऊपर, हाँ आपको ये बता दूं, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो भी यूएसए का वो मिला है।
1: अरे वाह,
0: हाँ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिश्ड कार्टून्स उसके ऊपर
1: अच्छा, तो साठ
0: तो
1: हजार कार्टून आपने आज तक बना लिए हैं,
0: जी
1: इतने विचार, यानी 60,000 विचार तो आपको आ ही गए, और
0: आ
1: ना
0: ही
1: जाने
0: गए
1: अभी कितने विचार और आने हैं।
0: बिल्कुल
1: कमाल
0: सही
1: है,
0: बात है।
1: बहुत सुंदर, अद्भुत है ये बात, मतलब
0: हाँ
1: 60,000
0: कि
1: कार्टून
0: हाँ
1: कोई छोटी मोटी बात नहीं
0: जी
1: है
0: हाँ
1: ना। 1,000, 2,000, 5,000, 6,000 के आंकड़े तो हम
0: हाँ
1: सुनते ही हैं 10,000 तक के, लेकिन 60,000 कार्टून बनाए रखना और उनको मेंटेन करना बिना किसी विवाद के,
0: हाँ जी
1: ये कार्टूनिस्ट की बहुत बड़ी सफलता है। चलिए आपसे और बातचीत करने वाले हैं,
0: जी
1: एक गीत सुन लेते हैं, गीत बताइए।
0: ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, फिल्म का नाम है बातों बातों में।
1: बहुत सुंदर गीत है ये,
0: हाँ,
1: आपकी
0: अमित
1: आवाज
0: कुमार
1: में
0: और आशा भोसले जी की आवाज
1: जी,
0: है
1: तो चलिए सुनते हैं
0: जी।
1: आपकी पसंद का ये गीत।

0: लगा
1: लगा
0: लगा के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई,
1: चांद की बिना तेरे सुने ही बात हो गई।
0: ओहो ओहो ओहो ओहो।

0: देवेंद्र जी, जैसा कि मैं ये जानना चाह रही थी, पहले हम बचपन में चंपक और लोटपोट जैसी पत्रिकाएं पढ़ा करते थे और
1: जी।
0: उसमें एक सीरीज चला करती थी कार्टून की, तो क्या ऐसी कोई सीरीज चलाने का आपने भी काम किया है कि एक लंबी सीरीज चल रही है किसी कार्टून पर, किसी विषय पर?
1: जी हाँ, मैडम मोहिनी नाम से एक सीरीज मैंने बनाई थी। वो 600 के लगभग उसकी आवृत्तियां छपी हैं, तो वो बहुत पॉपुलर था। वो परिवारों में, महिलाओं में, सभी लोग उसे पढ़ते थे।
0: अच्छा,
1: तो उसमें मैडम मोहिनी एक बताई गई है, एक तरुणी। तो वो डबल डेकर स्ट्रिप होती है, जो एक स्ट्रिप ऊपर, एक उसके नीचे स्ट्रिप, उस तरह से। तो उसके कुछ मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैडम मोहिनी बैठी हुई हैं और वो अखबार पढ़ रही हैं। इतने में उनका भतीजा आता है कि मौसी मौसी, मुझे जूते पहनना है, जल के जूते पहना दो। तो वो बोलती है कि नहीं, जूते क्या पहनना, अब 4 दिन की तो ये बारिश है और ये वो, इस तरह बरसाती जूते तुम बोल रहे हो, तो रहने दो। फिर वो कहता है कि अच्छा, तो मुझे एक नया बस्ता ही दिला दो स्कूल जाने के लिए। तो बोले, अरे 4 दिन का तो तुम्हारा सेशन है, उसमें क्या नया बस्ता लोगे? तो बोले, आप ये क्या अखबार में क्या पढ़ रही हो? बोले, अरे झपट मत, मैं तेरे लिए मौसाजी ढूंढ रही हूँ। तो अखबार लेके भाग जाता और कहता है कि 4 दिन का तो जीवन है, इसमें जीवन साथी क्या ढूंढना।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल।
1: ऐसी, इस
0: ये एक
1: तरह से
0: सीरीज लंबी
1: ये
0: चली है
1: सीरीज
0: फिर।
1: लंबी चली थी। हर हफ्ते
0: लोगों ने
1: उसे
0: काफी पसंद किया,
1: बहुत
0: खास
1: बहुत
0: तौर से
1: पसंद किया।
0: महिलाओं ने।
1: जी।
0: तो क्या महिलाओं के खत आपके पास आए, महिलाओं के फोन आपके पास आए, कोई महिला आपसे मिलने आई कि देवेंद्र जी आपने इतनी खूबसूरत ये सीरीज चलाई है और इसे पढ़ के हम तो गुदगुदा जाते हैं?
1: हाँ, उन्होंने कहा बिल्कुल। और उसमें अखबार में जो प्रतिक्रियाओं का एक कॉलम था, उसमें बहुत प्रतिक्रियाएं आती थी। उसमें वो लिखते थे कि आज देवेंद्र जी ने राह बताई, ये किया वो किया, ऐसे अपनी अपनी टिप्पणियां सब
0: बिल्कुल
1: करते थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और हमें तो लगता है कि जब हम अखबार पढ़ते हैं या आज भी पढ़ते हैं या पढ़ते थे, तो वो कार्टून जरूर तलाशते थे सबसे पहले कि अखबार में क्या आया है। ये एक निगाह रहती थी कि आज कौन सा कार्टून आया है किसी का भी, तो ये
1: हाँ
0: निगाह हमेशा रही। तो आपके परिवार में जो और अन्य लोग हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, क्या उनका भी कभी विरोध हुआ कि क्या दिन भर आप कार्टून बनाते रहते हैं और हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं? आप दिन में इतने अपने रिकॉर्ड तोड़ कार्टून बना लिए हैं, तो ऐसा कभी घर पर कोई कार्टून बनाया आपने पति पत्नी विवाद पर या बच्चों के विवाद पर?
1: उन लोगों से मतलब मतभेद का ऐसा अवसर आया नहीं, क्योंकि मैंने ये कि अखबार में जैसे जॉब रहता है, तो उतनी देर के लिए आप बाहर गए, वहां कार्टून आप बना के चले आए, और फिर उस चीज को घर में, मतलब फिर मैं बताता भी नहीं। कोई पूछे भी कि आप देवेंद्र हैं, तो मैं कई बार सोचना पड़ जाता है कि क्या मैं हूं क्या। और फिर जैसे कि अपन लोग बात कर रहे थे कि सबका साथ और सबको लेके चलना, ये जो चीज होती है। तो बच्चों के साथ आप गए, मान लीजिए स्कूल लेकर जा रहे हैं, उन्हें घुमा रहे हैं, तो उसमें से भी आपके लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा होता है। पत्नी देवी को लेकर आप स्कूटर पे गए सब्जी खरीदने, तो कुछ तो वो भावताव होना, ये सब चीजें, तो वहां भी आप देखते हैं कुछ मिलता है मैटर। जैसे मैंने कार्टून बनाया था कि जैसे दल बदल वगैरह ज्यादा होता है ना, तो उसमें मैंने बनाया था कि एक सब्जी वाली बैठी हुई है, और तो जो ग्राहक है वो उससे कह रहा है कि भाई, आपके जो आलू हैं या विधायक हैं, वो देखो लुढ़क कर उधर टमाटरों में मिल रहे हैं।
0: जी
1: तो
0: जी
1: ऐसी चीजें बस ये रोजमर्रा की जो होती हैं,
0: जीवन
1: उनसे
0: में
1: बस।
0: बिल्कुल, यानी कि एक
1: हाँ
0: कार्टूनिस्ट को बहुत ही पैनी दृष्टि रखनी पड़ती है और हर समय जागरूक रहना होता है कि कब कहां से क्या मैटर मिल सकता है और कहां कैसा कार्टून बनाया जा सकता है। तो कार्टून की दुनिया में जो आना चाहते हैं, कार्टूनिंग की दुनिया में कदम रखने वाले जो नए कलाकार हैं, युवा कलाकार हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे?
1: उन्हें बस मेरा यही संदेश है कि इस विधा को आप भले ही प्रोफेशनली ना अपनाएं, लेकिन शौकिया अगर आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट है, तो उसको आप लेकर चलें। और क्योंकि ये विधा सबसे पहले आपको खुश रखेगी, फिर आपके सराउंडिंग को खुश रखेगी। इसलिए आप खुश रहने का एक बहुत अच्छा है नुस्खा है, कैप्सूल है, तो इसको लेके आप साथ में चलें। और इस विधा को साइड में भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत हमेशा है, क्योंकि हंसी की जरूरत हमेशा है, अच्छे संदेशों की जरूरत हमेशा रहेगी।
0: बिल्कुल सही कहा देवेंद्र जी। आपके आदर्श कौन है? आपने इतना लंबा समय इस दुनिया में बिताया है, कार्टून की दुनिया में, आपके अपने आदर्श कौन रहे? किन से प्रभावित होकर आप आगे बढ़ते रहे?
1: मेरे आदर्श, एक तो
0: आदर्श
1: जैसे
0: एक तो
1: जीवन में सबसे पहले पिताजी से मैंने प्रेरणा ली, मेरे पिताजी जो हैं,
0: जी
1: और उन्हें मैंने कार्टूनों में बनाया भी है
0: अच्छा
1: क्योंकि घर में जब बच्चा देखता है तो सबसे पहले पिता ही नजर आते हैं।
0: जी जी
1: तो जो कार्टून मैंने आपको अभी सुनाया था करवा चौथ वाला, उसमें हालांकि पिताजी के सिर पे बाल हैं तो उन्हें मैंने बनाया था वहां
0: जी
1: पर,
0: जी
1: और उन्हें पिताजी को लेकर कार्टून बनाने के अलावा उनसे बहुत सी चीजें मैंने सीखी। एक तो जो हास्य रस, उनमें काफी हर चीज में वो हंसते हैं, सामाजिक बहुत हैं, रिश्ते निभाते हैं। एक तो पिताजी से प्रेरित हुए, फिर उसके बाद जब आगे चलते हैं तो वही आर के लक्ष्मण जी जो सबके प्रेरणा स्रोत हाँ चाहते होते हैं, लक्ष्मण जी हुए, सुधीर दर और मारियो मिरांडा साहब ये, और बाहर के कार्टूनिस्टों में उडेर जो और डेविड लो और अपने वॉल्ट डिज्नी वो तो हैं ही, ये सब चलते हैं। तो इन लोगों से कुछ ना कुछ देखकर और लगा, इनकी विशेषताओं को देख के लगा कि वो उनमें से कुछ हम सीखें।
0: तो क्या लगता है आपको कि जो ये हमारे विदेशी कार्टूनिस्ट हैं उनमें और हमारे देश के कार्टूनिस्ट की विधा में, सोच में, विचार में कोई अंतर महसूस किया आपने?
1: हाँ, अंतर तो होता है क्योंकि विदेशी लोग जो है उनके कार्टून्स भी विषय उनके उस तरह के होते हैं और वहाँ के लोग अप्रिशिएट बहुत करते हैं क्योंकि वो हास्य प्रिय होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर उनमें काफी डेवलप्ड होता है उसकी तुलना में। अच्छा, हमारे यहाँ विविधता ज्यादा है जितना हम लोग देखते हैं लोक जीवन में और सभी दूर,
0: वहाँ विविधता नहीं
1: हाँ
0: है
1: उतनी नहीं
0: लेकिन
1: है,
0: लोगों में जागरूकता बहुत है,
1: जागरूकता बहुत है।
0: आम आदमी से जुड़े हैं वो कार्टून,
1: हाँ हाँ
0: हमारे दैनिक जीवन में ये कार्टून नहीं होते हैं।
1: नहीं होते हैं तो जैसे हम बता देंगे हमारी फिल्मों में और वहां की फिल्मों में जो फर्क होता है, हमारी फिल्मों में गाने भी डाले जाते हैं, ये सब चीजें। तो उसी तरह से कार्टून के लिए मैंने जो अपनी एक शैली विकसित की तो उसमें सभी की थोड़ी कविता भी होती है, थोड़ा नाट्य भी होता है और भाषा का भी आनंद और बाकी स्केच तो है ही, ताकि एक अच्छा भरा पूरा उसमें एक मटेरियल सबको मिले।
0: तो देवेंद्र जी, चलते चलाते हम बस आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि भविष्य में आप अपने कार्टून के माध्यम से क्या नया संदेश देना चाहते हैं? कुछ ऐसे कार्टून्स जो अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं जिस पर आप काम कर रहे हो?
1: हाँ, नया विचार यही है कि जो आजकल रिश्ते जो टूट रहे हैं और यानी हम देख रहे हैं कि पहले तो केवल शादियों का मौसम आता था, है ना, उसका भी सीजन होता था कि हाँ भाई अब देव जाग गए या सो गए,
0: बिल्कुल
1: और अब देख रहे हैं कि हम तलाकों का मौसम चल रहा है और वो 12 मासी है। तो उन चीजों को लेकर कि ये रिश्ते ना टूटे, इंसान समझदारी से इन्हें सहेजे, और जो हम देख रहे हैं कि माता पिता अकेले होते जा रहे हैं, ये सब चीजें एक बड़ी एक सामाजिक समस्याओं के तौर पर छूती हैं मन को। तो इन्हें लेकर काम करने की मेरी इच्छा है कि कार्टूनों के माध्यम से एक सीरीज में ऐसे तैयार करूं और वो प्रदर्शित हो और शायद इससे कुछ असर हो, मेरा भी एक आहुति मेरी भी रहे इसमें
0: जी
1: सुधार में,
0: जी बहुत
1: ये
0: सुंदर,
1: बात है।
0: बहुत ही शानदार और एक समसामयिक विचार और गहरे विचार हमारी भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए कि
1: जी
0: माता पिता हमारे लिए क्या मायने रखते हैं
1: हाँ
0: और हम जो है बड़ी फैमिली में रहने वाले लोग आज कैसे अलग अलग हो गए हैं और जिंदगी में अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो रिश्तों की बात आपने कही कि रिश्तों को बनाए रखना, सहेजना बहुत जरूरी है, इस पर आप काम करना चाहते हैं। स्वागत है और आपको हम भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: जी, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी,
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान। आज इस कार्यक्रम में आपने सुनी कार्टूनिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम संपन्न होता है। नमस्कार।
3: आज के मेहमान।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आइए इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं सोना महापात्रा की आवाज में हुसैन हैदरी का लिखा ये अगार फिल्मी गीत।

सोना महापात्रा की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये गैर फिल्मी गीत। और आइए अब सुनते हैं हरिओम शरण का गाया ये भक्तिपथ।

हरिओम शरण की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये भक्ति पद। और आइए अब सुनते हैं बेगम आबिदा परवीन को।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: मुकेश की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं जिगर मुरादाबादी का कलाम। संगीतकार मुरली मनोहर स्वरूप हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में फिल्म वीर दुर्गादास से लिया है। गीतकार पंडित भरत व्यास हैं और धुन बनाई है SN त्रिपाठी ने।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: शुभ मुदगल और साथियों की आवाजों में अभी आपने श्याम अनुरागी की ये रचना सुनी। इसे संगीत में ढाला था गौरव इस्सर ने। और इस रचना के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: रंग तरंग
0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। करते हैं शुरुआत गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी जी द्वारा भेजे गए सुविचार के साथ। बीतता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। सचमुच कैसे नादान हैं हम सब। दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। आपके सुविचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच है श्रोता मित्रों, जीवन को जीने का हमारा दृष्टिकोण हमेशा संतुलित और परिपक्व होना चाहिए। सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं, जल है तो कल है, वृक्ष है तो फल है। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से जी ने। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, असमानाज अंसारी और सुल्तान अंसारी, और शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, आज के प्रेरक प्रसंग में एक बार फिर से हम याद करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर को जब अंग्रेजी शासन का शिकंजा भारत पर कसता जा रहा था। हम आजादी के बहुत से अमर शहीदों के बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम तीन ऐसे नौजवानों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है, लगभग नहीं के बराबर। मित्रों, अगर मैं कहूं कि मात्र 18, 19 या 22 साल के तीन आजादी के दीवाने नौजवान अंग्रेजों के सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित सरकारी भवन में घुस गए थे तो क्या आप विश्वास करेंगे? असंभव सा लगता है ना, लेकिन ऐसा हुआ। वे तीन जवान थे, बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। उन दिनों कोलकाता में अंग्रेजों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दफ्तर था जो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था। ये ब्रिटिश शासन का एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था। बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी वहीं बैठते थे। ये 8 दिसंबर 1930 की घटना है। सामान्य दिन था। अंग्रेज अधिकारी अपने दफ्तर यानी राइटर्स

0: बिल्डिंग में आ चुके थे और अपना काम कर रहे थे। महत्वपूर्ण जगह होने के कारण वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत कड़ी थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सुरक्षा का घेरा तोड़कर बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता उस भवन में प्रवेश कर जाएंगे। लगभग दोपहर की बात है, वे तीनों युवा क्रांतिकारी भवन में घुस गए। उस दफ्तर में कई भारतीय भी काम करते थे, इसलिए उन्होंने यूरोपीय अधिकारियों जैसा पहनावा पहना और अंदर प्रवेश किया। उनके निशाने पर थे लेफ्टिनेंट कर्नल एनएस सिम्पसन, जो जेलों में भारतीय राजनीतिक बंदियों के साथ कठोर व्यवहार के लिए कुख्यात माने जाते थे। और देखते ही देखते तीनों ने लेफ्टिनेंट कर्नल सिम्पसन पर गोली चला दी। कर्नल की वहीं मृत्यु हो गई। इसके बाद वही हुआ जो आमतौर पर होता है, राइटर्स बिल्डिंग के अंदर ही ब्रिटिश पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ शुरू हो गई। तो श्रोताओ, आप जरूर जानना चाहेंगे कि क्या वे तीनों वहां से निकलने में सफल हुए? इसका उत्तर है नहीं। उन्होंने प्रण कर लिया था कि किसी भी कीमत पर अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। वे समझ गए थे कि अब बच निकलना लगभग असंभव है। तो नौजवान बादल गुप्ता और बिनॉय ने स्वयं को गोली मार ली। बादल गुप्ता की वहीं पर मृत्यु हो गई। बिनॉय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद 13 दिसंबर 1930 को उनकी भी मृत्यु हो गई। उनके साथी दिनेश गुप्ता घायल अवस्था में पकड़े गए, उन पर मुकदमा चला और 7 जुलाई 1931 को अलीपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। और अब जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद देश ने इन तीनों की स्मृति को कैसे जीवित रखा। कोलकाता के बेहद प्रसिद्ध डलहौजी हाउस का नाम बदलकर बीबीडी बाग यानी बादल, बिनॉय और दिनेश रखा गया और एक स्मारक बनाया गया। श्रोताओ, एक बात बहुत स्पष्ट है, वो ये है कि हम इन क्रांतिकारियों के साहस और बलिदान को आभार के साथ याद करते हैं, लेकिन हिंसा को जीवन का रास्ता नहीं मानते। हम बस उस दौर के इतिहास को उस समय के संदर्भ में समझते हैं। तो श्रोताओ, जब हम बीडीडी बाग का नाम सुने तो केवल उसे कोलकाता की एक जगह समझकर नजरअंदाज न कर दें। हम जरूर याद करें इन क्रांतिकारी युवाओं को, देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। आजादी को केवल एक विशेषाधिकार की तरह ही नहीं बल्कि एक उत्तरदायित्व की तरह भी देखें, और जिन्होंने देश के लिए अपना आज दे दिया। हम उनके बलिदान को याद करके अपने आज को बेहतर बनाएं। तो श्रोताओ, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी सीआईटी एनसीईआरटी को लगातार फॉलो करें। किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ और एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है बरसात और मेंढक। इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें पशु पक्षियों और संपूर्ण जीव जगत का ख्याल रखना चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए।
1: बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
0: कमली और सोमारू चले घास लेने।
3: घास घास थोड़ी सी घास ले ले,

0: पर घास तो सूखकर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
1: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
0: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
2: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
0: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
1: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
0: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
2: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
0: बादल बोले,
3: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
0: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
4: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
5: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
0: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
6: तो बच्चों, सुना आपने? बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ,
7: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: दीक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। प्रेरक प्रसंग श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम में रूस के एक भालू से जुड़ी एक घटना के बारे में बताया गया है और ये संदेश दिया गया है कि हमें अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को पूरी तरह से पहचानना चाहिए।
0: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।

0: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है? सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
0: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल हैं। एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई, वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही, लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी

0: चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
1: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
0: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।
1: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
0: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था?
1: बात स्पष्ट है। उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
0: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
1: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
0: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
1: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
0: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: और अब सुनते हैं एक सुंदर गीत।
3: फूल सी गुड़िया हमारी।

0: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, अब आनंद लीजिए इस सदाबहार नगमों का।

यह आवाजें थी सुमन कल्याणपुर, मोहम्मद रफी और साथियों की। फिल्म का नाम था फर्स्ट लव। गीतकार थे गुलशन बावरा और संगीतकार थे दत्ताराम।

0: लता मंगेशकर और मन्ना डे को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था संतान। और इससे पहले हम आपको बता दें, आप सुन रहे थे टार्जन कम्स टू दिल्ली फिल्म का गाना। गाने वाले कलाकार आशा भोंसले और उषा मंगेशकर थे।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। हम

0: हमारे आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
3: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
3: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
3: सिर्फ विविध भारती पर।
4: यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संगीतकार दत्ताराम की कुछ संगीत रचनाएं।

आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

आया बंदर भी आया, छुन छुन करती आई चिड़िया। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। नाचो कालू, नाचो कालू, मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

कहा थी, मुन्ने कहा थी सीधा दिल्ली जाऊंगा, तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

0: भी आया बंदर भी आया बचन चन करती आई चिड़िया
1: यह आवाज़ थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था अब दिल्ली दूर नहीं। गीत को हसरत जयपुरी ने लिखा था और धुन बनाई थी दत्ताराम ने।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
3: मैं निकला ओ गडले
2: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
4: दिल तो पागल है दिल दीवाना है।
5: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
2: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
6: चिट्ठी न कोई संदेह।
2: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: फिल्म काला आदमी का गीत सुनिए, आवाज सुमन कल्याणपुर की, शब्दकार हसरत जयपुरी हैं और संगीतकार दत्ताराम हैं।
7: आँख मिलाकर

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हमने सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म बालक से लिया है। गीत को पंडित भरत व्यास ने लिखा है। संगीतकार दत्ताराम।

सुमन कल्याणपुर की आवाज में अभी आपने फिल्म बालक का ये गीत सुना और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। गीतकार हैं गुलजार धीनवी, संगीतकार दत्ताराम, स्वर मुकेश, सुमन कल्याणपुर, महेंद्र कपूर और साथियों की फिल्म का नाम है श्रीमान सत्यवादी।

0: हो तुम चलते हैं दिल, दूरत पे नहीं जाते हम, इस दिल से परखते हैं दिल, इस दिल से परखते हैं दिल, सच कहने के आदि है हम तो सतवादी है।
1: जब इसमें नहीं तो कुछ भी नहीं, तो कैसी कही
0: एक बात कहूँ वल्ला, ये हुस्न सुभान अल्लाह, जब नाम लिया जी दिल थाम लिया, तो कैसी कही
1: बस तुमने कदर की है, क्या खूब नजर की है, दिलदार मिले तो ऐसा मिले, क्या बात कही।
2: दत्ताराम के संगीत निर्देशन में हम आपको अब इंदिवर का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है डार्क स्ट्रीट, गायिका है सुमन कल्याणपुर।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश दत्ताराम का संगीत, शैलेंद्र के बोल, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें। फिल्म का नाम है जब से तुम्हें देखा है।

इस दो गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे संगीतकार दत्ताराम की कुछ संगीत रचनाएं।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी बताइए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं और इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल भी हो गए हैं, है ना? दोस्तों, कई बार क्या होता है, जब हम किसी से बात करते हैं तो कुछ लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो बात करते करते अक्सर हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं या खिलखिलाने लगते हैं, और उनका ये खिलखिलाने का जो अंदाज है हमें बहुत लुभाता है, है ना? होता है ना? तो बस आज हम कुछ ऐसे ही गीत भी लेकर आए हैं जहां इन फिल्मी गीतों में बीच बीच में हमें सुनाई देगी एक प्यारी सी छोटी सी हंसी। जी हाँ, आप सभी ने हमने जब देखा कि फेसबुक पेज पर आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है जहां पर नायक या नायिका या यूं कहें गायक या गायिका गाने के दौरान हंस भी रहे हैं, तो आज इन्हीं कुछ गीतों को लेकर इस कार्यक्रम में हम आपके लिए उपस्थित हैं। देखिए, गीतों में शब्द होते हैं, सुर होते हैं, भाव होते हैं, और कभी कभी इन्हीं सुरों के बीच घुल जाती है एक प्यारी सी हंसी, है ना? कहीं नायिका की खिलखिलाहट प्रेम को चंचल बना देती है, तो कहीं नायक की हंसी उस गीत में शरारत भर देती है। और फिल्मी गीतों में ये हंसी महज एक आवाज नहीं बल्कि कहानी का हिस्सा होती है। तो कभी कभी प्रेम की स्वीकृति होती है, कभी नानुकर होती है, कभी छेड़छाड़ होती है, कभी शर्म और कभी बेफिक्र।

फिक्री है ना, ये सभी इस हंसी में शामिल होते हैं। तो आज के सुरीले सफर में हम सुनेंगे कुछ ऐसे ही गीत जहां गायन के बीच अचानक सुनाई देगी एक प्यारी सी छोटी सी हंसी जो उस पूरे गीत को, उस भाव को यादगार बना देगी। हमारे जो श्रोता फेसबुक पेज से जुड़ गए हैं उन्होंने हमारी इबारत पढ़ ली है, लेकिन वो श्रोता जो फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी हम आज की इबारत पढ़ देते हैं। गीत सिर्फ सुरों और शब्दों का नाम नहीं, कभी कभी उनमें खिलखिलाहट भी सुनाई देती है। और जब किसी गीत के बीच गायक या गायिका की हंसी अचानक सुनाई देती है तो लगता है जैसे पर्दे के पीछे कोई खूबसूरत शरारत हमारे सामने आ गई हो। कहीं प्रेम की नोकझोंक में हंसी होती है, कहीं छेड़छाड़ में, कहीं खुशी में, और कहीं ऐसी सहज हंसी जो गीत को सिर्फ सुनने का नहीं महसूस करने का भी एक मौका देती है। तो आज के इस सुरीले सफर में हम ऐसे ही गीतों की तलाश करेंगे जहां बोलों के बीच अचानक सुनाई देगी एक प्यारी सी हंसी। तो आइए सुरों के साथ आज हंसी की इन मीठी झंकारों को भी सुनते हैं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सुरीला सफर। तो चलिए निकल पड़ते हैं इस सफर पर।

ये स्वर थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों के। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन और फिल्म का नाम था आपकी कसम। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म आपकी कसम में इस गीत में किस्सा है कि किशोर कुमार जी हंसते हुए कहते हैं बजाओ बेटा जम के बजाओ, ईमानदारी से बजाओ। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हंसना तो बहुत अच्छा है लेकिन बिना मतलब की हंसी अच्छी नहीं होती। हाँ, दूसरे का मजाक बनाकर हंसना ठीक नहीं होता लेकिन कार्यक्रम में हंसना बहुत अच्छा लगता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का प्रसंग बहुत ही आकर्षक और रोचक है, कहीं गीत याद आ रहे हैं और हो सकता है ये गीत आप इस कार्यक्रम में शामिल भी करें। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चिर हरित मुस्कान बिखेरने वाली मंदाकिनी जिनके व्यक्तित्व के अनुरूप विषय गान और मुस्कान भरी सुरीला सफर लेकर आ रही हैं, अति स्वागतम। वही एक श्रोता ने लिखा है कि नमस्कार, ये बात बिल्कुल सच है कि आपकी खनकती आवाज प्यारी बातें सफर को बहुत सुहाना और मध भरे गीतों से बहुत ही रोमांचक बना देता है। आपका स्वागत है। गीतों में कुछ गुनगुना रहे हैं, आपने कुछ गीतों का जिक्र किया है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में कुछ पल हंसने के लिए मिल जाए तो ये समझना चाहिए कि शरीर को फ्री का टॉनिक मिल गया है, यानी कि हम विविध भारती के श्रोताओं को सुरीला सफर प्रोग्राम में आज 1 से लेकर 2 बजे तक फ्री में हंसने का टॉनिक देने वाली हैं उद्घोषिका।

एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर बहुत ही खूबसूरत है। आज के सुरीले सफर में गीत की शुरुआत में, बीच में या अंत में आ रही हंसी की बात तो होने जा ही रही है, वो तो होनी ही थी। लेकिन इसके अलावा एक और हंसी की बात मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी छोटी बहना कमेंट पढ़ते वक्त या बीच में या अंत में कभी कभी मंद मंद खिलखिलाहट के साथ जब हंस देती है तब लगता है कि हंसी से भरी फुलवारी हो, ऐसी प्यारी प्यारी न्यारी लगती है। ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके साथ में बज रहा है हमारा रेडियो भी हंस रहा है। अच्छा एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती का सुरीला सफर है, सुहाना होता है शुरू 1 बजे रोजाना, यहाँ कब किसकी कमेंट पढ़ी जाए ये किसने जाना। अरे वाह, आपने तो किशोर कुमार का गाना ही लिख दिया है। एक श्रोता ने कहा है कि हमारी भावनाओं, परिस्थितियों और शारीरिक प्रतिक्रिया पर आधारित है। हंसी के विविध प्रकार हो सकते हैं, खिलखिलाना, ठहाके मारना, दबे हुए हंसना, मासूम हंसना, उपहास भरी हंसी, घबराहट वाली हंसी और सबसे प्यारी खुशी या आनंद वाली हंसी। सुर और शब्दों के साथ एक छोटी सी हंसी गीत को चार चांद लगा देती है और सुरीला सफर में आपकी आत्मीयता भरी हंसी दिल में घर बना लेती है। आज की अनुपम सुंदर थीम पर इतने सारे गीत याद आ रहे हैं कि 2 या 3 सुरीले सफर भी कम पड़ जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो आपने लिख भी दिए हैं कुछ गीत, हो सकता है कि ये गीत इस कार्यक्रम में

0: शामिल भी हूँ। चलिए हंसते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत सुनते हैं। आनंद बख्शी के बोल हैं ये, अनुराधा पौडवाल और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज है। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए।
1: ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी?
2: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
1: ओ माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
2: हिंदी कविता है ना?
1: हाँ।
2: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
1: तुम और हिंदी कविता?
2: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम बेनहर। वो इंग्लिश।

0: किशोर
1: भूल गए
2: जानी मेरा नाम
1: अच्छा?
2: चोरी मेरा काम जानी मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडल बाज
2: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
2: चार का मौसम
1: बेशरम।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि कभी कभी गानों में एक मासूम सी नटखटपन घुली होती है और जब किसी धुन के बीच में अचानक से कोई खिलखिलाहट या कोई प्यारी सी गुनगुनाहट सुनाई दे जाती है तो लगता है जैसे किसी ने सुरों के आंगन में आकर रंग बिखेर दिए हों। कहीं उस हंसी में कोई मीठी सी शिकायत होती है, कहीं दोस्तों की मस्ती, कहीं चाहत का इकरार और कहीं एक ऐसी बेपरवाह हंसी जो गीत को सिर्फ एक रचना नहीं बल्कि जिंदगी का जीता जागता लम्हा बना देती है। बहुत सुंदर। हमारे श्रोता ने लिखा है कि गीत केवल सुरों और शब्दों का मेल नहीं होते, वे भावनाओं की ऐसी दुनिया है जहां कभी कभी एक छोटी सी हंसी पूरा गीत महका देती है। खासकर जब भी किसी गीत के बीच नायिका की सहज खिलखिलाहट अचानक सुनाई देती है तो मन जैसे उसी पल ठहर जाता है। वो हंसी कभी प्रेम की शरारत होती है, कभी छेड़छाड़, कभी नोकझोंक, कभी खुशी की निश्चल अभिव्यक्ति। सुरों के बीच घुली वो हंसी कानों में उतर कर सीधे दिल को छूती है और चेहरे पर अनायास मुस्कान ले आती है। गीत फिर केवल सुना नहीं जाता बल्कि महसूस होने लगता है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि गीतों की सुर लहरी का ऐसा जादू है कि पलकें नींद की दस्तक पर झपकती हैं और मगर मन को पंख और कल्पना को परवाज देते ये गीत की अनुगूंज पहरों पहर बनी रहती है। गायकों के दिव्य स्वर से रचा बसा कोई भी गीत रात को सोए कंदीलों तक को जगा देती है। ये है गीतों की ताकत। स्वर और लय अनादि है। हर गीत की मिठास जीवन की विविधता में प्राण फूंक देती है। गीतों के शब्द जितनी गहराई से मन को छूते हैं वो गीत उतना ही अक्षत और कालजयी हो जाता है। बहुत सुंदर इबारत हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि वाकई इन गीतों के बीच में हंसने के क्या मायने हैं, ऐसा वही महसूस करता है जो इन गानों से प्यार करता हो, मोहब्बत करता हो। अच्छा, चलिए दो सीधे साधे सवाल हमारी तरफ से आपके लिए कि आपको ऐसा कौन सा गीत पसंद है जिसमें गायक या गायिका की हंसी ने उस गीत की खूबसूरती और शरारत को आपकी दृष्टि में ज्यादा बढ़ा दिया है। कोई एक गीत का जिक्र आपको करना है, फिल्म का नाम, गाने के बोल के साथ। और हमारा दूसरा सवाल यह है कि क्या आपको ऐसी कोई घटना याद आती है जहां पर आप अपने परिवार वालों से या अपने दोस्तों से बात करते करते अचानक जोर जोर से हंसने लगे या खिलखिलाने लगे, या आपके दोस्त या आपकी फ्रेंड जहां कहीं भी आप खड़े थे अचानक एक खिलखिलाती हंसी आपके बीच आई और आप सभी लोग देखने लगे चौंक कर कि ये क्या हुआ? ऐसा कोई लम्हा आपको याद है? कम से कम शब्दों में बतानी है आपको ये घटना, छोटी से छोटी शब्दों में, यूं कह सकते हैं कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं की बातों को शामिल कर सकें। और आइए बढ़ते हैं शंकर जयकिशन के संगीत की ओर। हसरत जयपुरी के बोल हैं, किशोर कुमार की आवाज है, फिल्म का नाम है अंदाज। ये गीत तो हमें हंसने का मौका कई बार देता है ना?

तो देखा आपने कितना खूबसूरत गीत था जो हमें हंसा देता है ना। और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी इस वक्त मुस्कुरा तो रहे होंगे कम से कम, और कुछ लोग हंस भी रहे होंगे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज के इन गीतों में हंसी है, वाह वाह, आज तो हंसी की नाव पर हम सब मंदाकिनी जी के साथ गीतों की नदी में सैर करने वाले हैं। अच्छा, आप नाव की सैर कर रहे हैं मेरे साथ? चलिए, आप जिसमें खुश हैं हम तो उसी में खुश हैं। बस शर्त यह है कि हमें हंसते हंसाते हुए आज का ये सफर तय करना है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने पूछा कि हमें कौन सा गीत पसंद है, ऐसा कोई फिल्मी गीत जिसमें गायक या गायिका की हंसी ने उस गीत की खूबसूरती और शरारत को बढ़ा दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि जवानी जानेमन नमक हलाल का गीत, जो कि आशा भोसले की आवाज में, ये गीत हमें बेहद पसंद आता है।

वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लव स्टोरी फिल्म का गाना है कैसा तेरा प्यार कैसा गुस्सा है तेरा और सारे शहर में आपसा कोई नहीं, ये गाना फिल्म बैराग का हमें बहुत अच्छा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्मी गीतों में हंसी तो हमें खुश कर ही देती है लेकिन आपकी मधुर आवाज में भी हमें हंसी सुनाई देती है जो मन को प्रसन्न कर देती है। क्या बात है, आपको सुनाई देती है मेरी हंसी। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना, इस गाने में बड़ी अलग अलग हंसी है, खांसी वाली हंसी भी है। मुझे सबसे बड़ी अच्छी हंसी दिनेश हिंगू जी की लगती है उनकी फिल्मों में। क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब गीतों में किसी गायिका और गायक की गीतों में शरारतें होती है तो गीत में खूबसूरती आ जाती है। खासतौर से हमें तो गायिका की शरारत अच्छी लगती है। हमारे फिल्मी गीतों में इस तरह के बहुत सारे गीत हैं जो शरारतों से और खूबसूरत बन गए हैं। शायद मेरी शादी का ख्याल, अच्छा तो हम चलते हैं, ऐसे बहुत सारे गीत है जहां पर गायिका हंसती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हंसना और खिलखिलाना सच में जिंदगी के सबसे खूबसूरत और अनमोल तोहफे हैं। जब हमारा मन खुश होता है तो दिल झूम उठता है और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हंसने से हमारे शरीर और दिमाग को बहुत सारे फायदे मिलते हैं। खिलखिलाकर हंसने से शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है, रक्त संचार बेहतर होता है जिससे दिल की बीमारियां दूर होती हैं। हंसमुख बने रहने से इंसान हर मुश्किल परिस्थिति में उम्मीद नहीं खोता। जो लोग ज्यादा मुस्कुराते हैं लोग उनकी तरफ आकर्षित भी होते हैं और उनके सामाजिक रिश्ते मजबूत बनते हैं। इसलिए जिंदगी में चाहे कितनी भी भागदौड़ हो, हंसने और मुस्कुराने का कोई भी मौका हाथ से हमें नहीं जाने देना चाहिए। बहुत सुंदर। एक श्रोता ने लिखा है कि थोड़ी सी मुस्कुराहट उधार दे दे मुझे जिंदगी, कुछ अपने आ रहे हैं मिलने की रस्म अदा करनी है। आजकल की भागदौड़ और तनावपूर्ण जिंदगी में होठों के पास आए हंसी क्या मजाल है। फिर भी हमें हर हाल में रस्मी तौर पर मुस्कुराना पड़ता है। बच्चे की तरह उन्मुक्त और खिलखिलाती हंसी न सही, फिर भी थोड़ा बहुत तो हंसा ही जा सकता है। आजकल घरों में लोग सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिविटी के लिए हंसती हुई मूर्ति या लाफिंग बुद्धा रखते हैं। क्या अच्छा हो अगर घर के सभी सदस्य थोड़ी देर साथ बैठकर हंस बोल लें। एक लाइन में हम कह सकते हैं कि मुस्कुराइए, आप विविध भारती के साथ हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर टैगलाइन दी है आपने कि मुस्कुराइए हंसिए आप विविध भारती के साथ हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हंसी भी कितनी प्यारी चीज है, न कोई भाषा चाहिए न कोई वजह, बस दिल में निकली एक छोटी सी हंसी सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। कुछ हंसियां पल भर की होती हैं लेकिन उनकी मिठास बहुत देर तक दिल में रहती है। शायद इसलिए कहते हैं कि खुशियां बांटने के लिए शब्द नहीं एक सच्ची हंसी ही काफी होती है। तो हमारे जो श्रोता लिख रहे हैं कि हंसना बहुत मुश्किल काम है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हंसना इतना मुश्किल काम भी नहीं है जितना हमने इसे बना लिया है। क्योंकि हम तनाव अपने सिर पर ओढ़ लेते हैं, सारी परेशानियां सारे तनाव सारी मुश्किलात ओढ़े चलते रहते हैं और हंसना भूल जाते हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि जिंदगी में अच्छे दिन भी हैं बुरे दिन भी हैं, रात भी है तो सुबह भी है। हम अपनी जिंदगी को किन अर्थों में लेते हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है। आप हजार दुखों के साथ भी मुस्कुराकर जी सकते हैं, हंसकर जीवन को अपना कहते हैं ना कि बहुत ही सहज और सरल बना सकते हैं। देखिए इस गाने में दो सखियां किस तरह से एक दूसरे को छेड़कर ही हंस ले रही हैं। और ये हमारी जिंदगी में भी होता है कि जब हम अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं किसी अपने के साथ मिलते हैं तो हंसी मजाक करना पसंद करते हैं। आइए सुनते हैं शैलेंद्र के बोल, एसडी बर्मन का संगीत, गीता दत्त और आशा भोसले की आवाजें। फिल्म का नाम है इंसान जाग उठा। आपको भी बताना है कि आप भी कभी हंसे हैं ऐसे किसी अपने के साथ।

ये आवाजें गीते दत्त और आशा भोसले की थी। फिल्म का नाम था इंसान जाग उठा। तो देखा आपने कितनी खूबसूरत तरीके से हंसती हैं दोनों नायिकाएं, है ना? अच्छा, कभी आप हंसते हैं इस तरह से? बताइएगा हमें कि आप किस तरह से हंसना पसंद करते हैं या हंसना पसंद ही नहीं करते। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही मजेदार गीत चल रहे हैं, हम हंस रहे हैं और हमारे घर के जो पेंटर हैं, कलर कर रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं। सच में आपकी आवाज में भी हंसी छलक रही है। अच्छा, आपके घर में काम चल रहा है और वो पेंटर भी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और हंस रहे हैं, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि गीत के बोल तो याद रह जाते हैं मगर उन बोलों के बीच गूंजी हंसी अक्सर पूरी कहानी कह जाती है। बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि वैसे आपकी मधुर आवाज में हंसी की खनक मौजूद रहती है जिसे हम अक्सर महसूस करते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी हमारी तारीफ करने के लिए। लेकिन यहाँ कार्यक्रम के बारे में आपको बताना है कि आपको कौन से गाने पसंद हैं, जिनकी तारीफ में आप कुछ लिखिए या उस हंसी के बारे में लिखिए जो आपको बेहद पसंद है। जैसे कि एक श्रोता ने लिखा था कि उन्हें दिनेश हिंगू की हंसी बहुत पसंद आती है। अच्छा, आपको भी कोई ऐसी हंसी पसंद आती होगी किसी नायक या नायिका की, अपने आस पड़ोस में या अपने घर परिवार में या किसी बच्चे की, है ना, खिलखिलाती कोई हंसी जो आपको आकर्षित करती है, उसका भी जिक्र आप कर सकते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, ये इस गीत के अंत में लता जी की खिलखिलाती हुई पावन और जादुई हंसी है जो दुनिया की अनमोल मोती है। एक महज एक हंसी नहीं, स्वर साम्राज्ञी के कंठ से टपका पावन नूर है, दिल थम जाए ऐसा सुरूर है। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, विश्व में अलग अलग लैंग्वेज है लेकिन हंसी की एक ही भाषा है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप भी तो बहुत प्यारे हंसी वाले गीत सुनवा रही हैं अपनी सुंदर हंसी के साथ, क्या बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि पड़ोसन मूवी का गीत एक चतुर नार वाला गीत हमें बेहद अच्छा लगता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि किशोरदा के द्वारा गाए गए कुछ गीत जो हमें बहुत पसंद आते हैं, चतुर नार, बाबू समझो इशारे, आके सीधी गिरी दिल पे। अरे वाह, इसमें तो किशोरदा ने दो आवाजें निकाली है ना, ये गीत तो बहुत ही सुंदर है। एक श्रोता लिखते हैं कि सत्या फिल्म का गीत तू मेरे साथ है, तू मेरे पास भी है, गुलजार साहब के बोल, लता जी की आवाज, हरिहरन की आवाज। और इसी फिल्म का एक अन्य गीत है सपने में मिलती है कुड़ी मेरी, इस गीत में भी हंसी सुनने को मिलती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म बेताब का गीत जब हम जमा होंगे ये हमें बहुत पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे फिल्म चांदनी फिल्म का गाना टाइटल गीत जो कि चांदनी ओ मेरी चांदनी, और इसमें आपको यकीनन श्रीदेवी की जो हंसी है वो बहुत लुभाती है ना, क्योंकि इतनी खूबसूरती के साथ वो उस गीत में हंसती हैं और इस गीत को इतना खूबसूरत तरीके से उन्होंने गाया है कि हम सुनना बार बार पसंद करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गीतों में हंसी खोजना, वाह क्या बात है उद्घोषिका जी, आपका सादर नमस्कार, बड़ा रोचक विषय है आज का, और सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार, शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि आज विविध भारती सुरीला सफर पेज खोलने से पहले मैं अनुमान लगा रही थी कि आज आप ही आएंगी और ये देखिए आप आ भी गई। आपकी खनकदार आवाज का इंतजार रहता है, आज तो अलग ही प्रकार का आनंद रहेगा गाना सुनने में। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गीत में हंसी

आना ऐसा है जैसे किसी बेहद संजीदा पेंटिंग के एक कोने में किसी बच्चे ने चुपके से रंग बिखेर दिया हो। क्या बात है, ये हमें याद दिलाती है कि माइक के उस पार कोई मशीन नहीं बल्कि धड़कता हुआ इंसान खड़ा था जो गाते गाते उस लम्हे में खो गया। ये हंसी गीतों को अमर बनाती है क्योंकि सुर भले ही कानों को छूकर लौट जाएं, लेकिन वो बेसाख्ता खिलखिलाहट सीधे दिल में उतर आती है। क्या बात है, हमारे श्रोता भी कितने शायराना अंदाज में अपनी बात लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सभी आपके साथ मिलकर हंसते मुस्कुराते हुए कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी खुशी जाहिर करेंगे। हंसना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। सबसे ज्यादा फरमाइशी गीत भंवरे ने खिलाए फूल ये गाना आपको बेहद पसंद है। अच्छा, यहाँ लता जी जब हंसती हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो बहुत अच्छे गाने सुनने को मिलने वाले हैं जिसमें हंसी मुस्कुराहट सभी शामिल होने वाला है। मुझे लगता है एक गाना इसमें मुझे याद आ रहा है कि जय जय शिव शंकर, जिसमें बहुत ही हंसाया जाता है, और एक बात कहो गर मानू तुम, ये गाना भी हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए देखिए आपने इस गीत को पसंद किया और हमारा अगला गाना यही है हमारी लिस्ट में। आर डी बर्मन का संगीत है, गुलजार साहब के बोल, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम गोलमाल। बहुत हंसना हंसाना लता जी का इसमें भाता है ना। आप भी हंसिएगा ना इस गीत के साथ।

जी तो बताइए, गीत सुनने के बाद आप भी मुस्कुराए कि नहीं? और कभी कभी पता है ऐसा भी होता है ना कि हम खुद से ही बात करते हैं अकेले में और फिर मुस्कुराने लगते हैं या हंसने भी लगते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा बहुत बार, जब आप अकेले बैठे होते हैं या आराम कर रहे होते हैं या सोने जा रहे होते हैं तो कोई बात याद आ जाती है अपने दोस्तों की या अपने परिवार वालों की या किसी खास की, और हम अकेले में हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। आपके साथ कभी ऐसा होता है बताइएगा। वही एक श्रोता लिखते हैं कि कटी पतंग का प्रसिद्ध गाना है मेरा नाम है शबनम और प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। ये गाना जो आशा भोसले की चुलबुली और नटखट हंसी गाने की शुरुआत और अलग अलग अंतरा के बीच पर जो नेचुरली पिरोई गई है वो बहुत अच्छा लगता है और जिसे महान गायिका आशा भोसले ने अपनी बेहतरीन आवाज में गाया है। बिल्कुल, ये गाना इतना मुश्किल है और इसमें हंसना तो और भी ज्यादा मुश्किल, लेकिन हाँ इसे आपने समझा सबसे बड़ी बात यह है। एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे खूबसूरत और प्यारी छोटे बच्चों की हंसी होती है। कहते भी हैं कि दूर है मंदिर तो क्या हुआ, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। क्या बात है। वे एक श्रोता लिखते हैं कि जब भी मेरी धर्म पत्नी और मैं किसी भी होटल की या बिल्डिंग की लिफ्ट में अकेले होते हैं तो फिल्म एक दूजे के लिए का ये गीत मेरे जीवन साथी जरूर सुनते हैं, सुनाता हूँ। धर्म पत्नी हंस देती है और कहती है झूठा कहीं का, और मैं भी हंस देता हूँ। बिल्कुल, जीवन में ये रोमांस होना बहुत जरूरी है। जब आप जीवन में कहीं न कहीं रोमांचित होते हैं, रोमांस रखते हैं, तो जिंदगी और भी आसान हो जाती है। एक श्रोता लिखते हैं कि सभी को दिलीप कुमार और लीना चंदावरकर पर फिल्माया गया गाना सारे शहर में आपसे कोई नहीं, आशा जी की हंसी बहुत ही प्यारी हंसती है और हम भी हंसते हैं, और क्या गजब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी, इसमें आशा जी की जो हंसी है वो बाकमाल है। बिल्कुल सही कहा आपने, फिल्म लव स्टोरी का जो ये गाना है बहुत ही चुलबुली और शरारत भरी हंसी है उसमें आशा जी की। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय बहुत मजेदार है, और एक श्रोता ने कहा है कि मुझे तो काजोल की हंसी और मुस्कुराना, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे मेरी 8 महीने की बेटी की हंसी सबसे ज्यादा पसंद है। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किशोरदा का गाना है चिल चिला के कजरी सुना, ये गीत सुनकर हंसी आई जाती है और इसके बोल भी बहुत शानदार है। वहीं एक श्रोता को हेमा मालिनी जी की हंसी देखने और सुनने में बहुत अच्छी लगती है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे तो हंसना बहुत पसंद है और सबको हंसाने में बहुत मजा आता है। स्कूल के दिनों में सब मुझे हंसमुख अजमेरा नाम से संबोधित करते थे क्योंकि सभी को मैं अक्सर हंसाया करती थी। बहुत अच्छी बात, जब भी तो कहते हैं कि हंसो और हंसाओ। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा और आगे इस सफर में। शंकर जयकिशन का संगीत सुनते हैं, हसरत जयपुरी के बोल हैं ये, आशा भोसले, मुबारक बेगम और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है आरजू। हाँ, इस गाने के आरंभ में ही हंसी आपको सुनाई देती है ना?

हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज की थीम बहुत ही खूबसूरत है। गीतों के बीच गायक है गायिका की वो कुदरती और बेसाख्ता हंसी गाने में एक अलग ही रूह और ताजगी भर देती है। आज के इस खास शो में गीतों के बीच खिलखिलाती हंसी और छेड़छाड़ वाले कई सदाबहार नगमे आज आपके साथ हम सुनने वाले हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वार्तालाप वाले गीत तो बहुत ऐसे सुने हैं, लेकिन उनमें खिलखिलाहट वाले गीतों को ढूंढकर उन्हें प्रस्तुत करने का प्रयोग ही अनूठा है आपका, और इस दृष्टिकोण से ही ये इबारत आपकी प्रशंसनीय है। और आगे आपने डैश डैश डैश और क्वेश्चन मार्क डाल दिया है, और क्या। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे पतिदेव का सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है, उनके 5 में से 4 बातें तो चुटीली ही होती हैं, अक्सर अकेले में उनकी बातें याद करके मैं हंस पड़ती हूँ। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मधुबाला की मुस्कुराहट और हंसी बहुत खूबसूरत और कातिलाना लगती है। एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मुस्कुराती हूँ मैं कई बार, और जब नींद से जाग जाऊं तो याद आता है कि अरे ये तो सपना था, बस इसी बात पे हंसी आ जाती है। वही एक श्रोता को आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया वाला गाना बहुत पसंद आता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मैं आजकल अपनी बेटी के घर में हूँ, मेरी 2 छोटी सी नातिनें हैं, दोनों आपस में खूब खेलती हैं, खूब खिलखिलाकर हंसती हैं और मुझे बहुत मजा आता है उनके साथ। बिल्कुल सही कहा आपने, बच्चों के साथ खिलखिलाना तो बहुत ही अद्भुत एहसास है ये। और आइए अब सुनते हैं आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी के बोल।

0: है,
1: यहाँ है,
0: इधर है,
1: उधर है,
0: ऊपर है,
1: नीचे है,
0: कहाँ है,
1: यहाँ है।
0: अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है भाई,
1: कोई भी नहीं है।

0: भी अच्छा ये सब छोड़ो, पर इतना तो सोचो कि मैं भी चुप और तुम भी चुप, तो किसने मचाया ये शोर, कौन है, कौन कौन है भाई?
1: अरे ये तो पर्दा है।

0: है?
1: उधर है।
0: ऊपर है?
1: नीचे है।
0: कहाँ है?
1: यहाँ है।
0: अरे यहाँ तो कोई भी
1: नहीं है।
2: जी तो देखा आपने, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन सामने हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और लगातार इस सफर में हमारे साथ बने हुए हैं और हमें लिख भी रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि गीत के बीच में सुनाई देने वाली ये हंसी जैसे किसी बंद किताब के पन्नों के बीच अचानक कोई मुस्कुराता हुआ फूल मिल जाए वैसी होती है। ये हंसी गीत का हिस्सा होकर भी गीत से कहीं ज्यादा कह जाती है। कभी प्रेम की शरारत, कभी मिलन की खुशी, तो कभी उस पल की अनायास खिली मासूमियत। सुर कानों तक पहुंचते हैं मगर ऐसी हंसी सीधे दिल में उतर आती है और बरसों बाद भी वही चेहरे, वही दृश्य और वही खूबसूरत पल याद आ जाते हैं। सुरों के इस सफर में हंसी की छोटी सी झनकार जैसे बीते हुए पलों की खिड़की खोल देती है और तब महसूस होता है कि कुछ गीत सिर्फ आवाजों से नहीं, मुस्कुराहटों से, खिलखिलाहटों से और भी यादगार बन जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, तो यादगार रहेगा आज का ये सफर। और अब इस सफर से मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। जीवन एक निरंतर यात्रा है, इसमें हमें किसी एक उपलब्धि पर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि हर बात से सीखते हुए आगे बढ़ते हुए और खुद को बेहतर बनाते हुए जीवन का सफर तय करना है। जो व्यक्ति रुक जाता है उसकी प्रगति भी रुक जाती है, जबकि जो निरंतर प्रयास करता रहता है वो नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। जीवन में निरंतरता ही सफलता, आत्मविश्वास और विकास की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। कोई भी बड़ा लक्ष्य एक दिन में पूरा नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों को लगातार दोहराने से हासिल होता है। निरंतर और नियमित मेहनत से कठिन लक्ष्य भी आसान हो जाते हैं।

उस लगातार प्रयास करने से हमारा अपनी क्षमता पर विश्वास बढ़ता है, समय का सही उपयोग होता है, नियमित काम करने से टाल मटोल की आदत भी कम हो जाती है, हम चुनौतियों का सामना करना सीख जाते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहने की शक्ति हमें मिलती रहती है, हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है और इसमें निखार भी आता है। निरंतर सीखने और सुधार करने से हम मानसिक, सामाजिक और व्यवसायिक रूप से भी आगे बढ़ पाते हैं।

निरंतरता वो शक्ति है जो साधारण प्रयासों को असाधारण परिणामों में बदल देती है। यदि हम प्रतिदिन ईमानदारी और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते रहें, तो सफलता निश्चित रूप से हमें मिलती है। प्रकृति भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। नदियाँ कभी बहना नहीं छोड़ती, सूर्य हर रोज उदित होता है और ऋतुएं निरंतर बदलती रहती हैं। कभी सोचा है, यदि कोई नदी बहना छोड़ दे तो उसका पानी ठहर कर दूषित हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यदि मनुष्य प्रयास करना छोड़ दे तो उसके ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास का विकास रुक जाएगा। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, असफलताएं और निराशाएं हमेशा ही नया कुछ सिखा कर जाती हैं, भविष्य में बेहतर बनने का अवसर भी देती हैं। इसीलिए इसे अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत मानना चाहिए। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, वही वास्तव में प्रगति कर पाता है।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम और समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने दिवंगत आगा खान चतुर्थ और विकास कार्यों में उनके अमिट योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ग्रामीण विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने भी आज नई दिल्ली में प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि उन्होंने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क द्वारा सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में किए जा रहे प्रभावशाली कार्यों तथा भारत एवं विदेश में आगे की संभावनाओं पर चर्चा की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमार के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की।

0: भारत के करीब 1,60,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए लोगों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह और सामान्य कैंसर की जांच की सुविधा मिल रही है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की भी सराहना की जो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। डॉक्टर टेड्रोस ने बताया कि टीकाकरण और संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिली है। उन्होंने भारत के तपेदिक उन्मूलन, चिकित्सा उत्पादों के बेहतर नियमन और WHO को समर्थन देने के प्रयासों की भी सराहना की। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारे वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह आदेश जारी किया। एक रिपोर्ट।
3: ये प्रतिबंध ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली, क्वाडकॉप्टर, रिमोट से संचालित विमान, पैराग्लाइडर, पैरामीटर, हैंग ग्लाइडर, मैक्रोलाइट विमान, छोटे संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे और विमान से पैरा जंपिंग सहित कई हवाई प्लेटफार्मों पर लागू होता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें यह संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, VIP और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसी हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने ये भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: ब्रिक्स सम्मेलन 12 और 13 सितम्बर को आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिन के गुजरात दौरे पर आज अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि है। श्री कुमार ने कहा कि वे राज्य के बूथ लेवल अधिकारियों, BLO और चुनावी साक्षरता क्लब ELC के सदस्यों से बातचीत करेंगे। श्री कुमार आज शाम अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रमुख नागरिकों के साथ भारत में चुनाव विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र विषय पर संवाद करेंगे।
4: गुजरात की पावन भूमि पर आने पर मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी महान विभूतियों की जन्मभूमि भी और कर्मभूमि भी रहा है गुजरात। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदस्यों के साथ भी और गुजरात के कर्मठ बूथ लेवल ऑफिसर्स, वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल, छात्र और छात्राओं के साथ आज और कल विभिन्न कार्यक्रमों में संवाद करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 270 सदस्यों वाली पूर्ण राज्य कार्यकारिणी की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को सूची में प्रमुख स्थान दिया है और उन्हें तमलुक संगठनात्मक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमिलनाडु में 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए तमिलगा वित्तीय खशगम TVK के नेतृत्व वाले सेकुलर सोशल जस्टिस विक्ट्री गठबंधन ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गठबंधन ने धरपुरम से सत्यबामा और मधुरंतकम से मरगथम कुमारवेल को मैदान में उतारा है। विपक्षी DMK ने मधुरंतकम से पारंथमन और धरपुरम से S सुगन्या को उम्मीदवार बनाया है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उपचुनाव के लिए नामांकन 16 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को होगी और 19 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,377 हो गई है। 5,000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि सबसे अधिक मौतें चितवन में हुई, जहां 364 लोगों की जान गई। प्रभावित क्षेत्रों से 13,600 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। इस बीच भारत ने विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। जिसके तहत 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी गई है। बिहार में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है, कई नदियों का जलस्तर घट रहा है, राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक, बागमती समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात में थोड़ा सुधार हुआ है। जलस्तर में कमी के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य और तेज कर दिए हैं। पटना, वैशाली, सारण, मुंगेर, भागलपुर, अरवल समेत 14 जिलों में इस समय 40 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से पीड़ित है। विभिन्न स्थानों पर लगाए शिविरों के माध्यम से भोजन, मेडिकल सहायता और राहत सामग्रियां प्रभावितों तक पहुंचाई जा रही है। वहीं लगभग 700 ग्रामीण सड़कों के जलमग्न हो जाने से सड़क संपर्क टूट गया है। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने सड़कों की स्थिति पर निगरानी बनाए रखने और पानी निकलते ही इन्हें तत्काल ठीक करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से निरीश्री।
1: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। उत्तरी ओडिशा के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। विभाग ने आज मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रही। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संघर्ष जहाजों पर किए गए सबसे बड़े हमलों के बाद अधिक व्यवधान की आशंका जताई जा रही है। नवीन

で、まあ、もしかしたら、そちら、あの、気張らです。

बेन शेल्टन का मुकाबला कल फाइनल में वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में पिछले वर्ष के चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हराया। 11वीं वरीयता प्राप्त टियाफो ने हमवतन अमरीकी खिलाड़ी एलेक्स मिशेलसन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में

0: समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुति कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम पर आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत यानी इस कार्यक्रम का पहला गीत पंडित भरत व्यास का लिखा हुआ, कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ सुनिए। गायिका हैं लता मंगेशकर और फिल्म का नाम है बेदर्द जमाना क्या जाने।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था बेदर्द जमाना क्या जाने। कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोंसले।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर। फिल्म काला पानी का दो गाना सुनिए, स्वर आशा भोंसले और मोहम्मद रफी के, शब्द मजरू सुल्तानपुरी की है और तर्ज सचिन देव बर्मन की है।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली पेशकश लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें। फिल्म का नाम एक फूल चार कांटे। बोल हसरत जयपुरी के हैं और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है बरसात की रात, गीत साहिर लुधियानवी का है और धुन रोशन की।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: और आइए अब सुनते हैं नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी की रचना, स्वर लता मंगेशकर और साथियों की। फिल्म का नाम है मुगले आजम।

लता मंगेशकर और सखियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था मुगले आजम, गीतकार शकील बदायूनी थे और संगीतकार थे नौशाद साहब, गीतकार शकील बदायूनी थे। और आइए अब सुनते हैं इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। ये आवाज लता मंगेशकर की है, फिल्म का नाम है बिंदिया।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था बिंदिया। इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों की और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार और आरती। आज तुम भी हो तो मेरे साथ तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
2: मंजरी आपको, सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: और बताओ कैसी हो?
2: बिल्कुल ठीक।
1: आज हमारे क्या क्या विषय हैं?
2: विषय सीधे विषय पे आते हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: तो आज हम विषय लेकर आए हैं घर की सफाई, क्योंकि त्योहारों का मौसम है मंजरी जी। तो ऐसा होता है ना कि जब त्योहारों का मौसम होता है तो साफ सफाई ये तो लगा ही रहता है, तो किस तरीके से हम घर की सफाई में लगते हैं और आसानी से सब लोग मान जाते हैं सदस्य घर की सफाई करने के लिए, या फिर नोक झोंक थोड़ी बहुत होती है, तो उस बारे में हम चर्चा करेंगे।
1: बहुत और अच्छा विषय
2: है ना। हम अपने श्रोताओं से कहेंगे ना कि वो लोग भी हमें बताएं कि उनके घर में जब साफ सफाई होती है तो सारे लोग अपने आप अपना परिश्रम करने को तैयार हो जाते हैं, या फिर कुछ कहना पड़ता है, नोक झोंक होती है, रूठना मनाना चलता है।
1: बिल्कुल। और इसी के साथ साथ उपयोगी टिप्स में बातें होंगे कि जब बनानी हो नई रेसिपी तो इसके अनुभव भी आप लिखेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है या क्या तैयारियां करती है इसके बारे में भी बात करेंगे। और मुझे कुछ कहना में है कि बस 5 मिनट बनाम घंटों की बातें
2: जो अक्सर देखने में आता है।
1: आता क्या, हम लोग खुद ही करते हैं।
2: तो चलो
1: हमारे सभी साथी छोटी-छोटी सी यादों को ताजा करेंगे
2: कि आपके आप ऐसे किस इंसान को जानते हैं या किसको जानते हैं। हो सकता है आपको पड़ोसी ही हो जो 5 मिनट कहते हैं बस सब हम जा ही रहे हैं, लेकिन फिर घंटों चलती रहती हैं बातें, तो उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही आज हम लेकर आए हैं कहानी पद्मश्री के अंतर्गत जोधरिया बाई बैगा, जो कि कला क्षेत्र में प्रसिद्ध है, उनके बारे में हम बात करेंगे।
1: और आज है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बहुत ही गहन विषय है।
2: बिल्कुल।
1: लेकिन उससे पहले हम लोग सुनते हैं एक गीत।

0: आमंत्रित कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती आज हम लोग बात करने वाले हैं विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के बारे में और आज हम एक ऐसे दिवस की बात कर रहे हैं जिसके साथ एक ऐसा शब्द जुड़ा है जिस पर बात करना आसान नहीं लेकिन बात करना बेहद जरूरी है। ये दिवस है आत्महत्या रोकथाम दिवस। आत्महत्या शब्द ही बहुत दुखद है और इसलिए इस बात की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जागरूकता दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और जब भी कभी ऐसी दिमाग में किसी के भी ये बात आती है कि हम अपने जीवन को समाप्त कर ले तो उनको सोचना चाहिए कि आपका जीवन जो मिला है जीने के लिए वो कितना महत्वपूर्ण है, सबके लिए बहुत जरूरी है। तो एक बार विचार मंथन करें फिर आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं, अपनी समस्याएं जो है वो किसी और को बता भी सकते हैं।
3: बिल्कुल।

0: और इस दिवस को जागरूकता दिवस बनाने की शुरुआत हुई साल 2003 में और अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम संघ द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के सहयोग से की गई थी और इस दिन का उद्देश्य है लोगों में जागरूकता बढ़ाना, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बातचीत को प्रोत्साहित करना और जरूरत के समय मदद लेने के महत्व को समझाना कि ऐसा नहीं है कि आप कमजोर हो जाएंगे अगर आप किसी की मदद ले लेंगे, बल्कि मदद लेने से क्या होता है ना कि हमारी जो समस्या है जो हम उसको उस समय हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं किसी परेशानी की वजह से, तो सामने वाला हो सकता है हमारी परेशानी का हल ढूंढ के में दे दे।
1: बिल्कुल आरती, और कभी कभी जीवन में परेशानियां इतनी बड़ी लगने लगती हैं कि इंसान खुद को अकेला महसूस करने लगता है और ऐसे समय में सबसे जरूरी है कि आपस में बातचीत की जाए। अगर कोई व्यक्ति जो है लगातार उदास दिखाई दे और लोगों से दूर रहने लगे, अलग अलग सा अपने आप को रखे, निराशा की बातें करे या कहे कि वह खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा है, तो उसकी बात को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे वो घर के बच्चे हों चाहे कोई भी हो व्यक्ति आपके साथ का हो, हाँ मित्र भी हो सकता है, तो कभी भी कुछ ऐसा आपको या उदास भी आपको दिख रहा है तो आप उसकी उदासी को दूर करने के लिए उससे घुले मिले, उससे दिल की बात जानने के लिए आगे आइए, जिससे वो अपनी बातों को आपसे कह सके और आप उसको ये विश्वास दिलाइए कि भाई तुम्हारी बातें मैं अपने तक ही रखूंगा, है ना।
0: बिल्कुल, और किसी को भी अगर कोई अपनी परेशानी आपको बता रहा है तो उसे डांटने या उसकी परेशानी को छोटा बताने के बजाय, कभी कभी ऐसा होता है ना कुछ लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, तो ऐसा करने के बजाय उसकी बात को धैर्य और ध्यान से सुनना चाहिए, उसे इस बात का विश्वास दिलाना चाहिए कि वो अकेला नहीं है और हर परेशानी का हल शांति और समझदारी के साथ निकल सकता है। किसी की मदद करने के लिए हमेशा बड़े बड़े समाधान जरूरी नहीं होते, कभी कभी किसी की बात को ध्यान से अगर हम सुन लेते हैं ना तो वो ही बड़ी बात हो जाती है, या फिर हम उसके लिए कुछ थोड़ा सा समय निकाल लें, उसके साथ थोड़ा सा समय बिताएं और उसे ये महसूस कराएं कि वो अकेला नहीं है, तो बहुत मायने रखती है।
1: बिल्कुल सही बात है, ऐसे में साथ बहुत जरूरी होता है किसी का भी, और इसीलिए जब भी ऐसा लगे कि परेशानियों से जूझना मुश्किल हो रहा है, माता पिता, परिवार के सदस्य, शिक्षक, मित्र या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से आप तुरंत बात करें, और अगर हमारी जानकारी में कोई मानसिक तनाव से गुजर रहा है तो कुछ सरकारी व निःशुल्क हेल्पलाइन सेवाओं का संपर्क भी किया जा सकता है।
0: बिल्कुल, आप संपर्क कर सकते हैं और आप इंटरनेट पर इसको सर्च कर सकते हैं, और साथ ही वर्ष 2024 से लेकर 2026 तक के लिए इस दिवस की आधिकारिक थीम तय की गई है जो कि है आत्महत्या पर धारणा को बदलना, और जिसका उद्देश्य इसके इर्द गिर्द के सामाजिक कलंक को कम करना और खुलकर बातचीत को शुरू करना है, जिससे कि बातचीत होने से हमारा तनाव भी कम होता है और हम अपनी परेशानियों का हल भी आसानी से ढूंढ सकते हैं।
1: बिल्कुल, और हम लोग सुन लेते हैं गीत।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती, आज हम बात करने वाली हैं कहानी पद्मश्री की, जोधैया भाई बैगा, जो कला से संबंधित है और मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की रहने वाली। जोधैया भाई ने जीवन के 6 दशकों से अधिक समय तक बेहद गरीबी और कड़े संघर्ष का सामना किया। 60 वर्ष की उम्र पार करने के बाद उन्होंने रंग और कूची थामी और देखते ही देखते कला जगत का एक बड़ा नाम बन गई।
3: बिल्कुल। और जोधैया बाई, जिन्हें लोग जोधैया अम्मा के नाम से भी जानते हैं, उन्हें बैगा चित्रकार के रूप में प्रसिद्धि मिली है। वो आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाना माना नाम है। एक मजदूर से चित्रकार तक पहुंचने का जोधैया बाई का जो मार्ग था वो बहुत ही संघर्ष भरा रहा।
2: बिल्कुल। और जब जोधैया बाई के पति मैकू बैगा का निधन हुआ, उस समय जोधैया बाई के 2 मासूम बच्चे उनके साथ थे और तीसरी संतान गर्भ में थी। अपने बच्चों के लालन पालन के लिए मजदूरी करते हुए जोधैया बाई ने अपनी तीसरी संतान एक बेटी को जन्म दिया।
3: बिल्कुल। और बेटी के जन्म के साथ ही जोधैया बाई को कमजोरी ने घेर लिया। 3 बच्चों की जिम्मेदारी ने उन्हें अपने ही शरीर की कमजोरी के साथ लड़ने को विवश कर दिया था। परिणाम स्वरूप बेटी के जन्म के साथ ही वो एक बार फिर जीवन के रण में दुखों से संघर्ष करने के लिए उतर पड़ी थी।
2: और पीठ पर मासूम बच्ची को बांधकर जोधैया बाई गाय, भैंस, बकरी चराने जाती थी। जंगल में वापसी में लकड़ियां बीन कर लाती थी और जिसका बोझ भी उनके अपने सिर पर होता था। गांव में लोगों के घरों को लीपना, आंगन और दीवारों को गेरू से सजाना, खेत में मजदूरी करना, यही उनके जीवन की भाग दौड़ थी। यानी बहुत ही संघर्ष भरा उनका दिन था।
3: बिल्कुल। और संघर्ष से जूझ रही जोधैया बाई के जीवन में बदलाव तब आना शुरू हुआ जब आशीष स्वामी ने लोढ़ा गांव में अपना स्टूडियो जगन तस्वीर खाना खोला और स्थानीय लोगों को अपने यहाँ काम पर रखा, जिसमें जोधैया बाई का बड़ा बेटा भी शामिल था। एक दिन आंगन लीपने के लिए वो अपनी माँ जोधैया बाई को स्टूडियो ले गया था और साथ ही जोधैया बाई ने अपनी ही शैली में उस आंगन को ऐसे लीपा और उसे गेरू और छुई मिट्टी से ऐसे सजा दिया कि उसे देखकर आशीष स्वामी इतना खुश हुए कि उन्होंने जोधैया बाई जैसी बुजुर्ग महिला से, और लेकिन साथ ही साथ वो उनसे काम कराने पर थोड़ा नाराज भी हो गए थे कि आपने इतनी उम्र दराज महिला से कैसे काम कराया। और इस दौरान उन्होंने सुरेश बैगा ने, जो उनके बेटे थे जोधैया बाई के, उन्होंने बताया कि उनकी माँ अभी भी मजदूरी करती है
2: और आशीष स्वामी ने उन्हें अम्मा करके संबोधित किया और कहा कि अब से अम्मा मजदूरी नहीं करेगी बल्कि चित्र बनाएंगी। जोधैया बाई ने बताया कि जब आशीष स्वामी ने उन्हें चित्र बनाने का काम दिया तो वे घबरा गई थी। उन्होंने पहले तो साफ मना कर दिया कि ये लिखने पढ़ने का काम उनसे नहीं हो पाएगा। तब आशीष स्वामी ने उन्हें उनसे दीवार पर चित्र बनवाया, बाद में लकड़ी और सूखे कुमड़े, लौकी और तरोई पर चित्र बनवाए। जब उन्हें चित्र बनाने के लिए कागज दिया तो वे डर गई कि कागज और रंग दोनों ही खराब हो जाएगा, लेकिन आशीष स्वामी ने उन्हें थोड़ा डांट कर चित्र बनाने के लिए कहा।
3: बिल्कुल। और जब गुरुजी की डांट पड़ने लगी तो 70 साल की आयु के करीब पहुंच चुकी जोधैया बाई किसी मासूम बच्चे की तरह अपने घर में छिप जाती थी और उन्होंने उनके जो गुरुजी थे उनके घर जाते और उन्हें जबरन अपने स्टूडियो ले आते। उनकी पेंटिंग्स में बैगा समुदाय की परंपराएं, लोक कथाएं, देवी देवता और विशेष रूप से प्रकृति, जैसे कि महुआ का पेड़, जंगली जानवर और पक्षी एकदम जीवंत रूप में दिखाई देते थे
2: और उनकी बनाई पेंटिंग्स को देश विदेश में बेहद पसंद किया गया। उनकी कलाकृतियों की प्रदर्शनी भोपाल और दिल्ली के अलावा पेरिस, फ्रांस और मिलान, इटली जैसे अंतर्राष्ट्रीय शहरों में भी आयोजित की गई। जब वर्ष 2022 में जोधैया बाई को राष्ट्रपति से नारी शक्ति सम्मान मिला था, तब स्वर्गीय आशीष स्वामी की तस्वीर के सामने बैठकर जोधैया बाई काफी देर तक रोती रही थी।
3: बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने उन्हें सिखाया था
2: जी,
3: उस जगह तक पहुंचाया था। फिर वर्ष 2023 में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 15 दिसंबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में जोधैया बाई बैगा की उनके पैतृक गाँव लोरहा उमरिया में निधन हो गया। उनका जीवन इस बात का जीवंत उदाहरण है कि हुनर और सफलता के लिए उम्र कोई बंधन नहीं होता है।
2: बिल्कुल सही कहा आरती। और देखो जहाँ पर वो रह रही थी तो आसपास की जो चीजें उपलब्ध थी, जैसे तरबूज बताया है उन्होंने, है ना, कुम्भड़ा है, तो इन चीजों पे वो चित्र बना रही थी, तो एक कहते हाथ भी साफ हो जाता है और आपकी जो कला है वो धीरे धीरे निखर के सामने आती ही आती है। और जब उनके सोचो अगर चित्र वो देखो तो कैसा लगेगा ना कि कितनी सारी चीजें उन्होंने बनाई हैं उसमें।
3: बिल्कुल। तो और कभी कभी हम सोचते हैं ना कि हमारे पास ये साधन नहीं है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें एक बहाने की तरह से ली जा सकती
2: है। बात,
3: क्योंकि अगर हमारे अंदर एक करने का जज्बा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं।
2: हम सोचते हैं ना कि पहले इतने सारे ब्रश खरीद के लाएंगे या हमारे पास पूरे रंगों का डिब्बा होना चाहिए, तो इसकी जरूरत नहीं। अगर आपके पास दो रंग भी हैं तो आप उससे भी अपनी कला को शुरू कर सकते हैं।
3: देखिए उन्होंने प्रकृति से ही कला को लिया, प्रकृति से ही रंगों को लिया और प्रकृति के समान पे ही उसको उसका उपयोग किया।
2: प्रकृति में तो कितने सारे रंग हैं, कितनी सारी कला है। हम आसपास नजर दौड़ाएंगे तो लगेगा हम ये पत्ती भी बना लें, ये फूल भी बना लें, है ना। तो जब तस्वीरें अच्छी बन जाती है तो को लगता है कि भाई हम इसको अपने पास एकदम संभाल के रख ले, है ना। तो चलो इसी के साथ
3: सुन लें।

0: तो आरती तस्वीर को इतनी अच्छी होती है ना, लगता है कि उसको सीने से लगा के रख ले, है ना?
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जब बात आती है कि घर में साफ सफाई की बात आती है तो बस लगता है कि
1: सारी तस्वीरों को तो नहीं रख सकते ना सीने से लगा के।
0: सही बात है। और जब घर में साफ सफाई की बात आती है तो लगता है कि भाई शुरुआत कहाँ से की जाए, है ना? तो हमारे जो श्रोता भाई लोग हैं, सखियां हैं, ये बहुत आसानी से हमें बता देंगे कि मतलब कहाँ से सफाई की जाए। तो हमारे साथी का संदेश हम उठा लेते हैं, लिखते हैं कि घर की साफ सफाई सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं है, वो रिश्तों का आईना है। जहाँ साझेदारी होती है वहाँ काम बढ़ जाता है और बोझ हल्का लगता है, लेकिन जहाँ इसे एक ही व्यक्ति की जिम्मेदारी समझा जाता है वहाँ धीरे धीरे नोक झोंक पनपती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि सफाई को ड्यूटी नहीं साझेदारी बनाया जाए। थोड़ी मदद, थोड़ी तारीफ और थोड़ा समय पर किया गया काम घर को भी साफ रखता है और मन को भी साफ रखता है। क्या बात आपने कही है, है ना?
1: बिल्कुल। एक और हमारे साथी जो कहते हैं कि घर की सफाई बिना नोकझोंक के घर के हर सदस्य की भागीदारी से होनी चाहिए। इस बात पर एक गुजराती मुहावरा भी है, झाझा हाथ रलिया मड़ा, मतलब एक हाथ के मुकाबले ज्यादा हाथ से काम सुंदर तरीके से और जल्दी पूर्ण होता है। इसके अलावा फिल्म नया दौर का गीत भी सही संदेश देता है कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना।
0: बिल्कुल, सफाई करते समय ये गाना जरूर गुनगुनाना चाहिए जिससे एकता बने। और फिलहाल तो हम लोग एक अंतराल लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं।

0: अंतराल के बाद फिर सभी का स्वागत है और आरती कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। तो अगला संदेश क्या कहता है आरती, बताओ जरा।
1: अब हमारे एक श्रोता सभाई हैं, जो हमारे साथी हैं, जो कहते हैं कि घर सिर्फ चार दीवारों से नहीं बल्कि उसमें रहने वाले लोगों के आपसी प्रेम से बनता है। एक साफ सुथरा घर हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए सफाई को लेकर आपस में नोकझोंक करने के बजाय इसे एक खुशनुमा साझेदारी में बदले। जब पूरा परिवार मिलकर हाथ बढ़ाएगा तो घर का कोना कोना तो चमकेगा ही, साथ ही आपसी रिश्तों में प्यार की चमक भी बढ़ जाएगी।
0: क्या बात आपने कही है, बहुत अच्छी अच्छी सी बातें लिखकर भेजी है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि घर की साफ सफाई हो या रोजमर्रा के छोटे बड़े काम, कभी कभी इन्हीं बातों को लेकर घर में नोकझोंक हो जाती है, कभी भाई बहन में, कभी पति पत्नी में, तो कभी परिवार के किसी और सदस्य के बीच। और तुमने ये सब काम क्यों नहीं किया, या मैं ही सब क्यों करूं, जैसी बातें सुनाई दे जाती है। लेकिन हर नोकझोंक मन मुटाव नहीं होती, घर की साफ सफाई में आपसी सहयोग, समझदारी और प्रेम से काम आप लें और थोड़ी सी नोकझोंक में मुस्कान जोड़ दें और मैं की जगह हम को महत्व दें। भाई ऐसी अगर बातें होती है ना, तो बेचारे जो हमारे सामान होते हैं ना, वो बेचारे इंतजार करते हैं कि भाई ये लोग तो आपस में ही लड़े जा रहे हैं, कब हमारे पास आएंगे, कब हमको पूछेंगे, है ना। तो भाई ये चीज है कि आप मुस्कुराएं एक दूसरे के साथ और आपस में हाथ बटाएं, है ना।
1: और एक साथ हमें कितना समय भी, सोचिए कितना समय भी बिताने को मिलता है साथ में। हम लोग काम कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, हो सकता है वहाँ पे गाने चला के अरे थोड़ी देर के डांस भी कर लें,
0: क्या
1: गुना भी लें, बहुत कुछ कर सकते हैं।
0: तुम्हारा ये जो तरीका है ना, ये बहुत अच्छा है कि गाने बजा लें अपना, सुने बढ़िया गाने और मन करे तो डांस करें। लेकिन ये नहीं कि आपने लेके झाड़ू चालू हो गया डांस करना, तो
1: नहीं चलता है,
0: इधर उधर फैल गई गंदगी, वो भी ना करें। चलो अगला क्या संदेश है हमारे साथी,
1: जो लिखते हैं कि घर की सफाई हमेशा समझदारी और आपसी तालमेल से होनी चाहिए, क्योंकि नोकझोंक से सिर्फ मानसिक तनाव बढ़ता है और काम का बोझ कम नहीं होता। जब घर के सभी सदस्य मिलकर जिम्मेदारी बांटते हैं तो सफाई एक बोझ बनने के बजाय एक खुशनुमा पारिवारिक गतिविधि बन जाती है। पर कितना भी समझदारी अपना लो, नोकझोंक तो होना ही है। बिना नोकझोंक हुए, चाहे वो बचपन में भाई बहन के साथ हो या ससुराल में पति पत्नी हो, जब तक ये ना हो सफाई में मजा ही नहीं आता।
0: बात तो सही, बिल्कुल सही। और एक कहावत लिखते हैं हमारे साथी एक है कि सुंदर और स्वच्छ घर में ही खुशियों का वास होता है, लेकिन जब इसी घर में साफ सफाई की बात आती है तो अक्सर घरों का माहौल थोड़ा बदल जाता है। दिवाली की सफाई हो, वीकेंड का रूटीन हो, या रोजमर्रा का झाड़ू पोछा, घर की सफाई अक्सर परिवारों में दो ही मोड़ लेती है, या तो ये बहस और नोकझोंक की वजह बन जाती है, या फिर आपसी मेलजोल और साझेदारी का एक जरिया। तो भी हम तो सफाई के मामले में ये कह सकते हैं कि जो छुट्टी का दिन हो उस दिन आप एक बैग ले लीजिए और बस जो चीज आपको, हर कमरे में जाइए, जो चीज आपको लग रही कि हटा सकते हैं तो उनको उसमें रखते जाइए, और शाम होते होते आप देखेंगे कि आपने बहुत सारी चीजें ऐसी इकट्ठी कर ली हैं जो काम की नहीं है, बहुत टाइम से रखी हुई है, तो इस तरह से आप उनको हटा सकते हैं। तो और आप थक गए हों, ये नहीं कि लगातार काम ही करते रहिए, आपस में जाइए, एक चाय बना लाइए, पत्नी को पिला दीजिए, खुद पी लीजिए, अगर वो झगड़ा होते हैं तो रूठ गई है तो उन्हें मना भी लीजिए, है ना। और मनाना है तो भाई ये गाना भी सुना देते हैं, अगर पत्नी रूठ जाए तो वो पत्नी के लिए, पति के लिए गा ले, और पति रूठ जाए तो पत्नी गा ले, तो ये गाना सुन लेते हैं, फिर हम आगे बातें करते हैं।

0: सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला और गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो फिल्म हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: तो आरती हमारी बातें चल रही थी ना, तो हमारे साथी एक लिख रहे हैं कि परंपरागत रूप से हमारे समाज में घर की सफाई का पूरा जिम्मा महिलाओं का या किसी एक ही सदस्य पर डाल दिया जाता है और जब घर के बाकी सदस्य गंदगी फैलाने में तो वो आगे रहते हैं लेकिन समेटने के वक्त गायब हो जाते हैं, तब नोकझोंक की शुरुआत होती है। ये बात तो सही है कि हमारी सखियां बहनें सारा समेटती रहती हैं, उनके दोनों हाथ चलते ही रहते हैं सुबह से लेकर रात तक, लेकिन कोई मदद करने के लिए नहीं आता है बल्कि बच्चे तो और फैलाने लग जाते हैं। तो कहना चाहिए कि सबको सहयोग देना चाहिए, बच्चों को भी सिखाएं कि सफाई कितनी जरूरी है। आप जहां बैठते हैं, जिस कमरे में आप सोते उठते हैं वहां पर सफाई रखिए, और अगर जहां पर खाना खाते टेबल है तो उस जगह आप उसकी सफाई करिए। तो छोटे छोटे काम बांट देने चाहिए सभी को।
6: और एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि घर की सफाई नोकझोंक या साझेदारी बड़ा अच्छा मुद्दा है। घर की बहन की नोकझोंक बहन से नोकझोंक हो जाती है, वो कभी पोछा लगा देती है तो हम जाले साफ कर देते हैं, जब कभी बर्तन मांजती है तो हम उसका फोन चलाने लगते हैं। तब तो आपके अच्छी तरीके से डांट पड़ती होगी।
5: सही बात है, फोन चला रहे हो काम
6: वो भी उसका।
5: और कई बार ऐसा मुझसे निकल जाता है कि हम इतने भूतों की तरह जुटे हुए हैं, तुम लोग काम नहीं कर रहे हो साथ में, तो वो चीजें भी कभी कभी हंसी मजाक में भाई बहनों के बीच में निकल जाती है। तो हमारे साथी इसी तरह और लिखते हैं कि भाई जब घर की सफाई या नोकझोंक या साझेदारी की बात होती है तो मेरी पुस्तकें उनको वैसी लगती हैं, अजीब सी लगती है, और पुस्तकों की सुगंध उनको बदबू लगती है। मेरा रीडिंग रूम उनको कबाड़ खाना लगता है, घर का माहौल ऐसा ही है, जोड़ी हमारी जमीन न जाने कैसे जानी, अब तो हम हैं अंग्रेजी।

0: तुम लड़की हिंदुस्तानी। और इस तरह इन्होंने गीत भी लिखा है कि भाई मुझे ये गीत सुना दीजिए, तो ये चीज तो बड़ी ऐसी चलती रहती है नोक जो घर में होती है सफाई के समय। तो
1: और साथ ही मैं एक साथी जो लिखते हैं कि घर की सफाई, नोकझोंक क्या साझेदारी, मेरी छुट्टी का दिन हो और घर की सफाई का दिन हो तो मुझे सफाई का सामान पकड़ा देती हैं और ड्यूटी पर धर्म पत्नी मुझे मतलब सफाई की ड्यूटी पर लगा देती हैं। अगर मैं आनाकानी करूं तो मुझे मेरी मनपसंद अदरक इलायची वाली चाय का लालच देती हैं और कहती हैं कि जितनी बार भी पियोगे बना दूंगी, और मैं राजी भी हो जाता हूँ। भाई चाय मिलेगी तो करना ही पड़ेगा काम।
0: मेरी कोई अगर घर का इतना सारा काम कर रहा है तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसके लिए एक कप चाय बना दें, उसको ताजगी महसूस होगी तो फिर वो और ज्यादा काम कर सकती है ना। और हमारे साथी लिखते हैं कि घर की साफ सफाई, नोकझोंक क्या साझेदारी, भाई वे घर अब कहाँ हुए जब लोग ही फ्लैटों में रहने लगे हैं, नहीं अपितु मियां बीवी दोनों ही नौकरी पेशा होते हुए भी इस कल्चर से प्रभावित होने लगे हैं। फिर कहीं कोई कमी नजर भी आई तो उसके लिए दाई तो है ही ना। लेकिन ठीक है, हम किसी भी घर में रहें, चाहे वो फ्लैट में रहें, चाहे छोटे से घर में, चाहे बड़े से घर में, सफाई तो देखिए सब जगह ही होनी पड़ती। नहीं,
1: थोड़ा बहुत काम हमें अपने आप करना ही पड़ता है,
0: करना ही पड़ता है, वो कितना भी आप किसी से करवा लें, लेकिन एक बार तो एक रविवार गहन को जुटना पड़ेगा।
1: सफाई होती है, गहन सफाई तो हमें खुद ही करनी पड़ती है
0: ना। तो एक गीत सुनते फिर आगे बढ़ते हैं।
1: हाँ,

तू ले हाथों में हाथ चल तू साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती, जो हम बात कर रहे थे ना, तो हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि हम तो यही करते हैं, गानों के साथ काम या फिर भजन के साथ खाना बनाना। क्या बात है। मतलब बहुत ही फिर तो स्वादिष्ट खाना बनता होगा, क्योंकि भक्ति के रस में डूब के अगर आप एक रसेदार व्यंजन बना रहे हैं
3: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: तो उसका स्वाद ही अलग होगा।
3: वो हमारे जो मन की सोच होती है ना, वो हमारे खाने में भी आ जाती है।
2: बिल्कुल आ जाती है। और भाई जब हम खाना वाना खा के जाते हैं, बाहर निकलते हैं और या कोई घर पे आ गया तो बातें करने लग जाते हैं, देख रहे हैं कि भाई वो सामने वाला कितना बोल रहा है। तो जब किस्से शुरू होते हैं ना, तो उनका अंत ही नहीं होता, एक दूसरे से बातें करते हैं। और जब खाते करते उन्हें बाहर छोड़ने जाते हैं तो भी दरवाजे पे खड़े होकर के घंटों बातें चलती है। और कई बार सोच भी रहे हैं कि भाई अच्छा आप चले, अरे रुकिए भाभी जी ये किस्सा और ये भाई साहब ऐसी बात, तो ये और चलती रहती है।
3: बिल्कुल। और मंजरी, अच्छा ये चीज देखिए, अक्सर हम कहते हैं ना कि अच्छा वो आप थोड़ी देर बैठ जाइए ना, थोड़ी देर बैठ जाइए, नहीं नहीं बहुत हो गया, अरे 5 मिनट बैठ जाइए, नहीं नहीं बहुत हो गया, ज्यादा देर हम बैठ नहीं पाएंगे, हमें बहुत काम है, घर पे सारे काम पड़े हुए हैं, अब बैठेंगे तो फिर बहुत काम हमारे पीछे रह जाएंगे।
2: अभी फोन भी आता होगा किसी का ना, ऐसे
3: और ऐसा कहने के बाद भी एक घंटा निकल जाता।
2: कई बार जिसके साथ आप बातें करें ना, वो ये कहता है अरे छोड़िए आइए एक एक कप चाय और हो जाए, मतलब थोड़ा और बैठ लीजिए। तो उनको भी लगे, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमने तो मान लो सही में कहा या संकोच बस कह तो दिया, लेकिन सामने बोला हाँ चलिए बैठ लेता हूँ एक कप चाय पी लेता, तब पता चलता है कि भाई ये तो कुछ ज्यादा ही लंबी बातें खिंच गई है ना। तो हमारे साथी क्या लिखते हैं ये हम लोग देख लेते हैं, है ना।
3: एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि एक मिनट से चलते 5 मिनट तक की बातचीत की सीमा घंटों तक पहुंचाए जाने में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का अव्वल नंबर आएगा। उनकी बातचीत में घर से लेकर मोहल्ले तक के इतने सारे विषय जुड़े होते हैं कि बातें खत्म होने में घंटा भर समय भी कम पड़ता है, फिर ये बातें फोन पर हो रही हो या फिर आमने सामने।
2: भाई देखिए, इसमें दोनों लोग की बात करते हैं, महिलाएं नहीं, महिलाएं तो करती वो तो फेमस है। लेकिन हमारे साथी लोग भी खूब ऐसी बातें करते हैं। ऐसा नहीं है कि घर से निकले बाहर चौराहे पे चले गए या कहीं भी खड़े होकर बात कर रहे हैं। महिलाएं तो चलो अड़ोस पड़ोस की खबरें लेकर, उनको पूरी खबर रहती है कि यहाँ क्या चल रहा है,
3: पूछते भी है क्या बातें हुई।
2: और कई बार बहुत जानकारी भी मिल जाती है कि भाई इतने दिनों के लिए वो बाहर जा रहे हैं, तो सपोज आपने प्रोग्राम बनाया बाहर जाने का उसी दौरान, तो दो घर खाली रहेंगे, तो इससे पता चल जाता है कि भाई बगल वाला 15 दिन के लिए इस तारीख से जा रहा है, तो चलो हम थोड़े दिनों बाद चले जाते हैं। तो कभी कभी इस चीज का भी फायदा होता है। तो बात जरूर करिए, लेकिन हाँ भाई बहुत ज्यादा देर ना करके थोड़ी देर करिए। हमारे साथी क्या लिखते हैं कि 5 मिनट बनाम 1 घंटा कुछ लोगों की नहीं बहुत लोगों की आदत है। मेरी एक परिचित घंटा भर फोन पर बात कर लेती है और तब बोलती है अरे तुम तो आती नहीं, आओगे तब मिलकर अच्छे से बात करेंगे, फोन पर कितना बात करें। पड़ोस की चाची सास चचिया सास घंटों घर में बैठकर बात कर लेंगी, पर जब आप उन्हें गेट तक छोड़ने जाएंगे तो वहां भी खड़े खड़े आधा घंटा बात करेंगे। उनकी इस हरकत से मेरी सासू माँ कभी चिढ़ जाती थी, गेट पर खड़ा कर क्या बात करना, घर में ही आधे घंटा और बात कर लिया करो, अब कैसे कहा जाए कि आप अब जाइए भाई साहब,

0: में जाए तभी तो आदमी विदा ले उनसे। लेकिन पीछे से घर वाले जरूर परेशान होते हैं कि भाई तुम फिर वहां खड़ी बातें कर रही हो या उस पड़ोस से बातें करने लग जाओ, तो ऐसी ऐसे सीन हमेशा देखने को मिल जाते हैं। लेकिन क्या करें भाई, चल गई बातें तो चल गई,
1: चली जा रही है। और मैं श्रोता लिखते हैं कि भाई होने को तो ऐसा भी होता है, जो लोग नौकरी पेशा नहीं है उनके पास समय होता है, ये लोग आपस में ऐसा करें तो बात समझ में आती है, लेकिन जब ऐसे लोग किसी नौकरी पेशा लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करने लगे तो ऐसे में वो बात करे या फिर नौकरी पर जाए, वो तब भी जब सामने वाला अपना कोई अपना ही हो तो आप उनको मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनको बुरा लग सकता है कि अब हमें जानना है निकलना है काम पर।
0: और एक लिखते हैं कि चाहे मोबाइल पर बातचीत हो या लैंडलाइन पर, मैं तो शॉर्ट में और टू द पॉइंट बात करना पसंद करता हूँ, ये मेरी आदत मेरी धर्म पत्नी की भी है। और एक लिखते हैं कि हम 6-7 सहेलियां पार्क के गेट पर आते जाते जब तक कि सुबह सभी बहुत बिजी रहती है, फिर भी खड़े खड़े बात करते रहे, फिर चलते हैं कहकर फिर कोई नई बात शुरू हो जाती है और 5 मिनट की बात 1 घंटे की हो जाती है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि हमें घंटों की निरर्थक बहसों और फालतू की गपशप को अलविदा कहना चाहिए, इसके बजाय 5 मिनट की सार्थक बातचीत को अपनाना चाहिए, और जो जो हमारे समय की इज्जत करे, हमें कुछ सिखाए और जीवन को एक कदम आगे बढ़ाए।
0: और हमें एक गीत सुन लेना चाहिए।

0: तो भाई देखो, हमारी जो सखियों ने लिखे हैं कि उपयोगी टिप्स में लिखा है कि रेसिपी में लिखी सभी सामग्रियां, मसाले, सब्जियां, तेल आदि पहले से निकालकर काउंटर पर रख लें। चॉपिंग पहले कर लें, सब्जियों को काटना, प्यूरी बनाना या सूखा मसाला पीसना, ये सारे काम गैस चालू करने से पहले ही पूरी तरह से कर लें। बदलाव से बचे, पहली बार में सामग्री को किसी दूसरी चीज से बदलने की कोशिश ना करें, जो लिखा है वही इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल। और हमारी एक साथी जो हमें एक रेसिपी लिखकर भेजी रही है कि जैसे कि पिज्जा रोटी है तो रोटी चाट और आप बचे हुए रोटी से आप सैंडविच बना सकते हैं, वो भी खाने में बेहद स्वाद लगते हैं। इसी तरह आपको बचे हुए चावल से नई रेसिपी बनाने की टिप्स देती हूँ। चावल के पकौड़े, चावल को आप फ्री करके करके खा सकते हैं और फ्राइड राइस भी बना सकते हैं उसको, और फ्राई करके भी खा सकते हैं, फ्राइड राइस भी बना सकते हैं और बेहद स्वादिष्ट लगते हैं।
0: और हम गीत

0: तो भाई हमें तो जाना ही पड़ेगा, तो कार्यक्रम से लेते हैं
1: बिल्कुल।
0: विदा सभी को, मंजरी वर्मा और
1: और आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अंशी पाठ।
2: सखी सहेली।

0: ये भारतवर्ष कितना सुंदर है ना, वो वादियां, वो पहाड़, वो फूल पत्ते, वो मिट्टी और उसकी महक, ये देश, ये लोग, वो प्रांत, वो भाषा, वो जौहर, वो जलवा, वो प्रसिद्ध अभिनेता, वो प्रसिद्ध खिलाड़ी, वो उच्च स्तरीय एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि बस दुनिया कहने पर विवश हो जाती है कि भारतवर्ष इस पृथ्वी का सबसे अच्छा देश है। हम जैसे भी हैं हम एक हैं, हम जैसे भी हैं इस मिट्टी के बच्चे हैं, इस मिट्टी से हमें इतना लगाव है, इतना प्यार है जो शायद ही हम किसी और से करते हों। इस फिजा में, इस सभा में वो खुशबू है जिसकी बदौलत हम शान से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, और इसी आन बान और शान को दुरुस्त रखने के लिए सरहदों पर और इस भारतवर्ष के अंदर हमारी सेनाओं का प्रमुख रोल है। वो पैरा सर्विसेज हो, पैरा मिलिट्री फोर्सेज हो या आर्म्ड फोर्सेज हो, द पीपल इन यूनिफॉर्म प्रोटेक्ट आवर कंट्री। और आज हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में ऐसे ही एक जाबाज अफसर मौजूद है हमारे साथ, सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर, जो आज हमसे एसएसबी की गाथा, उसके गुण और अपनी उस शौर्य की गाथा शेयर करेंगे। क्योंकि एसएसबी सशस्त्र सीमा बल एक ऐसी फोर्स है जिस पर दायित्व है भारत की सुरक्षा का। आइए मिलकर स्वागत करते हैं असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर का, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी गुड इवनिंग। मैं सईद अफसर, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सबसे पहले मैं सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक महोदय तथा आकाशवाणी एफएम रेनबो का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मंच पर उपस्थित होकर अपने सेवा अनुभव और अपनी यात्रा साझा करने का अवसर प्रदान किया। मेरे लिए यह अवसर एक इंटरव्यू नहीं बल्कि देश के श्रोताओं से सीधा संवाद करने और अपने अनुभवों के माध्यम से युवाओं तथा देशवासियों तक कर्तव्य, साहस और राष्ट्र सेवा का संदेश पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस अवसर के लिए मैं आकाशवाणी एफएम रेनबो और पूरी टीम का बहुत बहुत आभारी हूं।
0: आपकी आवाज सुनकर मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में लोगों को बहुत ही उत्साह, एक गर्व महसूस किया गया होगा। आप पुलिस गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं और दो खास ऑपरेशंस जिनकी हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले आज इस प्रोग्राम में, और वो है पिथौरागढ़ और जमुई में जो दो ऑपरेशंस हुए, वो बड़े खास और इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस थे। मैं चाहूंगा कि आप अपनी जुबानी इन ऑपरेशंस के बारे में बताएं।
1: जी बिल्कुल, मैं अभी जमुई में हुए ऑपरेशन के बारे में आपको कुछ प्रकाश डालूंगा। उस ऑपरेशन की पूरी जानकारी काफी विस्तृत है और यह कई फेजेस में कंडक्ट किया गया था। 11 फरवरी 2021 मेरे सर्विस कैरियर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण दिन था। हमें इंटेलिजेंस प्राप्त हुई थी कि लखीसराय जिले के जंगल क्षेत्र में नक्सलियों का एक सशस्त्र दस्ता देखा गया है और उनके लिए आसपास के क्षेत्रों से भोजन सामग्री पहुंचाई गई है। प्राप्त सूचना को वेरीफाई करने के बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। हमने 10-11 फरवरी 2021 की मध्यरात्रि के दौरान अपना मूवमेंट शुरू किया। क्षेत्र की ज्योग्राफिकल कंडीशंस काफी चुनौतीपूर्ण थी, इसलिए ऑपरेशन में पेशेंस, एंडोरेंस और सतर्कता की विशेष आवश्यकता थी। ऑपरेशन के दौरान प्राप्त एक अन्य इनपुट के आधार पर परिस्थितियों के अनुरूप हमारी टीम ने अपनी योजना में आवश्यक बदलाव करते हुए आगे मूवमेंट किया। 11 फरवरी की सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास हमारी टीम पर अचानक भारी मात्रा में फायरिंग शुरू हुई। हमने स्थिति का असेसमेंट करते हुए जवाबी कार्रवाई की। एंगेजमेंट का कुछ समय तक रुक रुक कर जारी रहा। इसके बाद एरिया की सिस्टमेटिक सर्च की गई। इस कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण नक्सली कैडर मनसा कोड़ा जोनल कमांडर को न्यूट्रलाइज किया गया तथा कुछ अन्य कैडर के घायल होने की जानकारी बाद में प्राप्त हुई। साथ ही साथ कुछ हथियार, गोला बारूद एवं अन्य सामग्री जब्त की गई। लेकिन इस ऑपरेशन की सबसे संतोषजनक और महत्वपूर्ण बात मेरे लिए यह रही कि हमारी पूरी टीम सुरक्षित रही और किसी भी साथी को कोई इंजरी नहीं हुई। मेरे विचार से यही किसी भी ऑपरेशन की सबसे बड़ी सफलता होती है। मिशन को प्रभावी ढंग से पूरा करना और अपनी पूरी टीम को सुरक्षित वापस लाना। लेकिन मैं इस पूरी कार्रवाई को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में नहीं देखता। यह पूरी टीम का कलेक्टिव एफर्ट था। हर व्यक्ति ने, हर कार्मिक ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और सभी ने एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखा। हमारे लिए ऑपरेशन की सफलता केवल ऑब्जेक्टिव हासिल करने में नहीं थी, हमारे हर साथी का सुरक्षित रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। उस दिन पूरी टीम का डिसिप्लिन, म्यूचुअल ट्रस्ट और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हमारी सबसे बड़ी ताकत रही।

0: जब अचानक से फायरिंग शुरू होती है तो मन में पहला विचार क्या आता है? आपके मन में वो पहला विचार उस समय क्या आया जब एकदम से फायरिंग शुरू होगी? और खासतौर से मैं जानना चाहूंगा कि जो सिविलियंस होते हैं वो कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि एकदम से फायरिंग शुरू हो गई और जवाबी कार्रवाई हुई, तो जब एकदम से फायरिंग शुरू होती है तो मुझे जहां तक कॉम्बैट की नॉलेज है कि हम गोलियों के सामने नहीं आते, हम एक कवर लेते हैं, एंड ऑफ कोर्स कवर लेने के बाद थोड़ा सा उस कवर के दौरान ही हम लोग एक समीक्षा करते हैं, एक ऑपरेशन हो रहा होता है, फायरिंग शुरू हो गई, इसकी ट्रेनिंग हमें वाकई में पहले दी जाती है, पर फिर भी ट्रेनिंग और उस एक्चुअल मोमेंट में जब अचानक फायरिंग शुरू हुई तो आपके मन में पहला विचार क्या था?
1: जी बिल्कुल, उस समय सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि सिचुएशन को जल्दी एसेस करना, एसेस किया जाए और टीम को कोऑर्डिनेटेड तरीके से रिस्पांस दिया जाए। ऐसी परिस्थिति में ट्रेनिंग बहुत काम आती है, आपके पास सोचने के लिए बहुत कम समय होता है, इसलिए ट्रेनिंग के कारण रिस्पांस इंस्टिंक्ट और डिसिप्लिन्ड हो जाता है। उस समय मेरा फोकस था कि फ्रंटलाइन को एस्टेब्लिश किया जाए, कम्युनिकेशन क्लियर रहे और टीम इफेक्टिवली रिस्पांस कर सके।
0: ओके, तो उस समय जब आप आगे बढ़ रहे थे तो आप क्या आपने एक क्षण के लिए भी कुछ विचार आया? उसमें होता है ना एकदम से फायरिंग शुरू हो गई, दिस इज द रियल एक्शन, अब क्या होगा आगे पता नहीं, लोग परिवार के बारे में सोचते हैं, तरह तरह की बातें आती हैं जहन में, कुछ होता है?
1: जी, खतरे की स्थिति में डर या तनाव एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है, लेकिन ऑपरेशनल ड्यूटी में ट्रेनिंग आपको सिखाती है कि उस भावना को अपने डिसीजन मेकिंग पर हावी नहीं होने देना है। उस समय मेरे लिए पर्सनल फेयर से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरी टीम और मिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं करेज को इस तरह देखता हूं कि खतरे के बावजूद आप अपने कर्तव्य से पीछे ना हटें।
0: आप बीच में फायर डिसिप्लिन, आपने एक वर्ड यूज किया, तो मैं चाहूंगा कि इसका महत्व आप लोगों को समझाएं, वो लोग जो आपको अभी सुन रहे हैं, क्योंकि हमने डिसिप्लिन तो बहुत सुना है कि द पीपल हु आर इन यूनिफॉर्म वो डिसिप्लिन्ड रहते हैं, लेकिन कॉम्बैट के वक्त फायर डिसिप्लिन, ये मैं चाहूंगा कि ये मैंने सुना तो है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सशस्त्र सीमा बल के फायर डिसिप्लिन का एक जो महत्व है वो लोगों को बताएं, और साथ ही साथ जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे थे, कितनी जल्दी आप लोग आपस में अपने साइन लैंग्वेज में ही बात करते होंगे शायद, एंड यू माइट नॉट बी काइंड ऑफ यू नो, एक वो भी एक महत्वपूर्ण एक अंश है कॉम्बैट का, लेकिन फायर डिसिप्लिन एंड ऑफ कोर्स उसके बाद उसका जो महत्व है वो थोड़ा बताएं।
1: जी बिल्कुल, ऑपरेशन में किसी भी ऑपरेशन को सक्सेस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फायर डिसिप्लिन का होना, और कम्युनिकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमने ये इंश्योर किया कि आरटी के माध्यम से जो भी ऑर्डर्स पास किए जा रहे थे उन्हें सभी सेक्शंस तक क्लियर और काम तरीके से रिले करना आवश्यक था। इंटेंस एंगेजमेंट के दौरान अगर कम्युनिकेशन में कंफ्यूजन हो जाए तो सिचुएशन और डिफिकल्ट हो सकती है, इसलिए मैंने कोशिश की कि ऑर्डर्स एक्यूरेटली और टाइमली तरीके से आगे पहुंचे और ट्रूप्स के बीच कोऑर्डिनेशन बना रहे। इसी तरह फायर डिसिप्लिन भी बहुत महत्वपूर्ण था
0: जी।
1: हमारा उद्देश्य कंट्रोल्ड और इफेक्टिव रेस्पॉन्स देना था, ना कि केवल अधिक एमिनेशन खर्च करना।
0: ऑलराइट, बेसिकली यू नो आप लोगों की जो ट्रेनिंग होती है वो पब्लिक तो होती नहीं, इसलिए ये प्रोग्राम जो है संदेश टू सोल्जर्स, जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं उसके माध्यम से हम सिविलियंस को कुछ थोड़ा बहुत पता लग जाता है कि किस तरह का डिसिप्लिन, हम लोग डिसिप्लिन एक वर्ड यूज करते हैं लेकिन मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा फैलाव है, और डिसिप्लिन हमेशा रहने में मेरे ख्याल से इट डजंट मीन कि आप हमेशा सीरियस हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए जैसे हम आकाशवाणी रेनबो में करते हैं थोड़ा सी गीत संगीत भी सुनते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी पसंद का एक गीत हमें

0: चुनकर बताएं कि कौन सा गीत हम इस समय थोड़ा सा माहौल को थोड़ा सा और सॉफ्ट करने के लिए प्ले कर सकते हैं और कौन सा गीत हो सकता है।
1: जी मैं चाहूंगा कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए।
0: दिस इज ग्रेट सॉन्ग, पुरानी फिल्म का है।
1: जी जी बिल्कुल,
0: मतलब मैं पैदा नहीं हुआ था जब ये फिल्म रिलीज हो गई थी
1: जी,
0: और आपकी फिगर और आपकी स्मार्टनेस देखकर मेरे ख्याल से हमारे पैदा होने से पहले ये फिल्म बनी थी। इट्स अ ग्रेट सॉन्ग, किशोर कुमार लता मंगेशकर जी की आवाज में। इस गीत को सुनते हैं, उसके बाद मैं आपके से जानना चाहूंगा, आपके पास आऊंगा दोबारा, कि ये गीत आपको क्यों पसंद है, पन्ना की तमन्ना। लेट्स हियर इट आउट ऑन संदेश टू सोल्जर्स।

0: आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। मेरा नाम है मुनीश जौली और मेरे साथ असिस्टेंट कमांडेंट सैयद अफसर मौजूद हैं यहाँ स्टूडियो में। तो कुछ बताना चाहेंगे, पन्ना की तमन्ना बड़ा सॉलिड सॉन्ग है, एक बॉलीवुड से कुछ खास प्यार?
1: जी मुझे किशोर कुमार जी के गाने सुनने अच्छे लगते हैं, और जब मैं स्टडी करता था कॉलेज टाइम पे तो उस वक्त जो है मैं जब भी टाइम मिलता था तो फोकस होने के लिए मैं किशोर जी के गाने और अपने
0: मतलब एक अलग ही जादू है इनकी आवाज में। खिलाड़ियों से हम बात करते हैं वो किशोरदा के फैन है, हमारे आर्म्ड फोर्सेस जो है वो किशोरदा के फैन है, लता मंगेशकर जी के फैंस है, भले ही ये लोग फिजिकली हमारे साथ नहीं हो लेकिन इनकी आवाज सदियों तक रहेगी। और आई एम श्योर किशोरदा लता जी की सोल, उनकी आत्मा जहां भी होगी बहुत गर्व महसूस करती होगी कि द मेन एंड वुमेन इन यूनिफॉर्म आज भी उनकी आवाज उनको इतना प्रेरित करती है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपके सैन्य जीवन के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, अभी नक्सल अफेक्टेड जो एरियाज हैं उनके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि जब हम उन अफेक्टेड एरियाज में जो ड्यूटी करते हैं तो उस समय जो जो पर्सनल होते हैं वो किस प्रकार विजिलेंट रहते हैं?
1: जी बिल्कुल। नक्सल अफेक्टेड एरियाज में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप कभी भी कंप्लेसेंट ना हो, ऐसे एरियाज में ग्राउंड सिचुएशन लगातार बदल सकती है, इसीलिए इंटेलिजेंस इनपुट्स, ब्रीफिंग्स, लोकल सिचुएशन, रूट असेसमेंट और टीम कोऑर्डिनेशन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हमारी ट्रेनिंग हमें यह सिखाती है कि रूटीन मूवमेंट को भी पूरी प्रोफेशनल अलर्टनेस के साथ किया जाए, लेकिन विजिलेंट केवल हथियार लेकर चौकन्ना रहने का नाम नहीं है। विजिलेंट का अर्थ है अपने सराउंडिंग्स को समझना, असामान्य गतिविधियों को पहचानना, कम्युनिकेशन बनाए रखना और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत एप्रोप्रिएट डिसीजन लेना।
0: तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि हमारे साथ सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सैयद अफसर मौजूद हैं, और एसएसबी की जहां तक हम बात करें तो ओरिजिनली इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1963 को, तब स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से इसे जाना जाता था, नई दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, और सेवा सुरक्षा और बंधुत्व ये इसका मोटो है, सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। और हमारे बॉर्डर्स को गार्ड करते हैं और देश के अंदर जब भी कोई चुनौतीपूर्ण एक मौका आता है या वो क्षण आता है उसमें बिल्कुल सामने डटकर खड़े हो जाते हैं, उसका सामना करते हैं और विजयी होते हैं। चलिए हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़े से पन्ने जो हैं उनको घुमाते

0: सबसे पहले जानना चाहेंगे यहाँ, जब हम ये पन्ने थोड़ा सा पीछे मोड़ रहे हैं, कि आपके प्रारंभिक जीवन के जो पल थे, जहां बचपन है, शिक्षा है, परिवार है, आपकी अपनी पर्सनालिटी, उसके बारे में कुछ बताइए।
1: जी, मैं जमशेदपुर झारखंड का निवासी हूं। मैंने अपने प्रारंभिक जीवन की बात करूं तो मेरा बचपन एक सामान्य मध्यम वर्गीय पारिवारिक परिवेश में बीता है। मेरे परिवार ने बचपन से ही मुझे अनुशासन, ईमानदारी, मेहनत और बड़ों का सम्मान करने जैसे संस्कार दिए। मैंने रांची यूनिवर्सिटी से बीएससी मैथमेटिक्स में स्नातक की शिक्षा पूरी की। पढ़ाई के साथ साथ मुझे शारीरिक गतिविधियों, खेल और अनुशासित जीवन में रुचि थी। मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में मेरे माता पिता और परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। मैं मानता हूं कि व्यक्ति की सफलता केवल उसकी अपनी मेहनत का परिणाम नहीं होती, उसके पीछे परिवार के संस्कार, शिक्षकों का मार्गदर्शन और जीवन में मिले अनुभवों का बहुत बड़ा योगदान होता है।
0: एसएसबी में जब आपके भर्ती होने की जब बारी आई, तो आपको ये एसएसबी में ही, सशस्त्र सीमा बल में ही आने के लिए प्रेरणा आपको कहां से मिली? और साथ ही साथ मैं जानना चाहूंगा कि आपने जब एसएसबी ज्वाइन किया, तो उसकी भर्ती की जो प्रक्रिया थी वो कैसी रही?
1: जी बिल्कुल, मेरे लिए प्रेरणा का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मेरे पिता रहे हैं। वे इंडियन रेलवेज में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे, साथ ही टेरिटोरियल आर्मी में थे। बचपन में जब मैं उन्हें वर्दी में देखता था, तो उन्हें वर्दी में देखकर मेरे अंदर भी देश के लिए कुछ करने का जोश और जुनून पैदा होता था। शायद वहीं से मेरे मन में यह भावना विकसित हुई कि भविष्य में मुझे भी ऐसी वर्दी पहनकर राष्ट्र की सेवा करनी है। इसी भावना को व्यक्त करने वाला अंग्रेजी का एक कोट जो मुझे प्रेरित करता है, वो मैं कहना चाहूंगा। द यूनिफॉर्म इज नॉट मेयरली वॉट यू वेयर, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी यू कैरी, द वैल्यूज यू अपहोल्ड एंड द नेशन यू सर्व। मेरे लिए वर्दी केवल पहनावा नहीं है, यह उस जिम्मेदारी, अनुशासन और समर्पण की पहचान है जिसे पहनने वाला व्यक्ति अपने कंधों पर लेकर चलता है।
0: तो दोस्तों, आप सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सैयद अफसर की आवाज सुन रहे हैं। हमने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं, लेकिन अब हम ये जानना चाहेंगे उनकी ही जुबानी कि एसएसबी ज्वाइन करने से पहले और उसके बाद उनके परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं।
1: जी, परिवार के लिए यह गर्व का विषय था, लेकिन स्वाभाविक रूप से थोड़ी चिंता भी थी। यूनिफॉर्म सर्विस में पोस्टिंग्स अलग अलग राज्यों और कई बार कठिन तथा संवेदनशील क्षेत्रों में होती है, इसलिए परिवार को पता था कि आगे का जीवन आसान नहीं होगा। लेकिन मेरे परिवार ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। जब मैं ट्रेनिंग के लिए गया और उसके बाद अलग अलग लोकेशंस पर मेरी पोस्टिंग हुई, तो धीरे धीरे उन्हें भी इस प्रोफेशन की चुनौतियों की समझ हुई। और जब मुझे पुलिस मेडल फॉर गारंटी से सम्मानित किया गया, तो वह मेरे परिवार के लिए अत्यंत भावुक और गर्व का क्षण था।
0: आपने अपने गैलेंट्री अवार्ड की बात की, तो मेरे ख्याल से ये जो ऑपरेशंस आपने किए, जिसके लिए ये सम्मान आपको दिया गया, गैलेंट्री अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है ना, तो इसकी जो उपलब्धि थी, इसके महत्व के बारे में तो हम लोग जानेंगे, लेकिन आपके लिए वो क्षण कैसा था जब आपको पता लगा कि आपको इस गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? और खासतौर से जब एक ऐसी फोर्स के बारे में हम बात करते हैं जिसे 2001 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ट्रांसफर कर दिया गया था, और जो नेपाल और भूटान के बॉर्डर्स पे जो मैनिंग की जो ड्यूटीज थी, उसके बाद

0: एक और दायित्व दिया गया इन्हें, क्योंकि जब एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आ गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास कारगिल युद्ध के बाद, तो एक अडॉप्शन जो कहते हैं कि वन बॉर्डर वन फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया। और बॉर्डर एरिया हो या मैंने जैसे आपने आप भी बता रहे हो और मैं भी बता रहा हूं अपने श्रोताओं को कि देश के अंदर जो गतिविधियां चलती हैं, जहां पर भी कोई चैलेंजिंग मोमेंट आता है उसको उसका सामना करने के लिए, उसके सामने खड़े होने के लिए सशस्त्र सीमा बल हमेशा तैयार रहती है। और वहीं से गैलेंट्री अवार्ड के लिए ये सम्मान अनाउंस होना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। जब ये अनाउंस हुआ और आपको पहली बार पता लगा तो आपके वो क्षण कैसे थे?
1: जी, यह मेरे लिए बहुत गर्व और भावनात्मक क्षण था। सबसे पहले मेरे मन में अपने सीनियर्स, अपने साथी कार्मिक और अपने परिवार के प्रति आभार आया, क्योंकि जिस ऑपरेशन के लिए मुझे यह सम्मान मिला उसमें मैं अकेला नहीं था। पूरी टीम ने कठिन परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारी निभाई, इसलिए मैं इस मेडल को पूरी टीम के साहस, प्रोफेशनलिज्म और डेडिकेशन का सम्मान मानता हूं।
0: ये जो गैलेंट्री अवार्ड की हम बात कर रहे हैं तो असिस्टेंट कमांडर सैयद अफसर से मैं पूछना चाहूंगा कि ये मेडल मिलने के बाद आपकी सोच में भी कोई बदलाव आया?
1: जी, बताना चाहूंगा, सम्मान मिलने के बाद मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है। मेडल मेरे लिए यह रिमाइंडर है कि मुझे आगे भी अपने प्रोफेशन में उसी डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज्म को बनाए रखना है। मैं इसे उपलब्धि का अंत नहीं बल्कि आगे बेहतर करने की प्रेरणा मानता हूं।
0: और मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा अर्थ है गैलेंट्री मेडल का।
1: जी बिल्कुल।
0: राइट देन, जब गैलेंट्री अवार्ड मेडल मिलता है सैयद अफसर, मैं आपसे जानना चाहूंगा वो मेडल की जब खबर आती है तो उस दिन रात को नींद कैसे आती है और अगली सुबह वो भाव कैसे होते हैं? गौरव का क्षण होता है?
1: बिल्कुल, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी टीम के लिए जो ऑपरेशन में उस दिन डटकर खड़े थे साथ, और उन सभी मेहनत और ट्रेनिंग के दिनों के लिए जो हमने इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए किया था।
0: उस दिन जब ये खबर आपके पास आई तो शायद कोई ऐसा मोमेंट भी होगा जहां आप अकेले होंगे, कोई नहीं होगा आसपास कुछ देर के लिए, उस समय नहीं तो उसके थोड़ी देर बाद आप और सिर्फ आप, जहां आप अपनी आत्मा से बात कर रहे होंगे, कुछ ऐसा मोमेंट था, कुछ शेयर करना चाहेंगे?
1: जो बिल्कुल, जब हम ऑपरेशंस करते हैं तो उस वक्त हमारे दिमाग में मेडल्स ये सब नहीं होता, बट जब आपके किसी अच्छे काम को रिकग्निशन मिलता है तो बिल्कुल बहुत खुशी होती है, और वो भावुक क्षण था मेरे लिए।
0: एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा जिसके बारे में मैंने आपसे नहीं बताया और मैं नहीं बताता किसी को कि ये सवाल मैं शो में पूछूंगा आपसे, और ये सवाल मैंने भारत के टॉप स्पोर्ट्स पर्सन से पूछा है, देश के जाबाज सिपाहियों से पूछा है, अफसरों से पूछा है, सोल्जर से पूछा है, इसलिए ये सवाल मैं अब आपकी आंखों में देखकर ये पूछना चाहता हूं। सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर, ये तिरंगा आपके लिए क्या मायने रखता है, जिसकी आन बान शान के नीचे आप अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं?
1: जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया, तिरंगा हमारी आन बान और शान है, और इसी के लिए हम अपनी जान निछोर कर सकते हैं। इसी के हमेशा ऊंचा रहने के लिए हम अपनी सब कुछ निछोर कर देते हैं, और
0: भावुक क्षण है। सवाल उतना आसान नहीं है, है ना? ये तिरंगा कभी कभी वो भाव निकाल ही लाता है हमारे अंदर से, है ना? अच्छा, मुझे ये बताइए, आप देश की सेवा कर रहे हैं और आपका परिवार भी है, और उसके बीच में एक कहते हैं ना, एक संतुलन बनाना बहुत जरूरी होता है कि फैमिली की भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। फैमिली कहती है कि भाई

0: हूँ और कम्युनिकेशन बनाए रखता हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ कि जब एक सोल्जर देश की सेवा करता है तो उसके साथ उसका परिवार भी सैक्रिफाइस करता है।
1: देखो, परिवार का योगदान तो बहुत रहता है, एंड ऑफ कोर्स जब हम बात करते हैं परिवार के संतुलन के बारे में, उनका सपोर्ट, उसके बगैर तो कोई बैलेंस बन ही नहीं सकता लाइफ में। और हम आकाशवाणी में एक बैलेंस बना के रखते हैं अपने लिसनर्स के साथ। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी श्रोता इस समय संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं, न्यूज ऑन AIR के माध्यम से देश और विदेश में भी हमें सुना जा रहा है, हम इस बात से परिचित हैं। तो अगर आप कोई व्हाट्सएप मैसेज करना चाहें तो एक नंबर मैं आपको बता रहा हूं जहां पर आप व्हाट्सएप से अपने भाव, अपनी प्रतिक्रिया, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं सईद अफसर जी से तो वो पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 9868107070 9868107070। हाँ, लग ही नहीं रहा कि किसी अजनबी से मुलाकात हो रही है। और समय हो गया है कि एक और गीत सुने, तो कौन सा गीत आप प्ले करना चाहेंगे? किशोरदा के तो आप फैन हैं
0: जी। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई।
1: अरे, इसके अंदर तो बहुत राज छुपे हैं असिस्टेंट कमांडेंट साहब, जरूर इसके पीछे बहुत बड़ा कोई रीजन है। तो ये गीत सुनते हैं आपकी फरमाइश किशोरदा की आवाज में फिल्म अजनबी से।

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप। मेरा नाम है मुनीश जौली और मेरे साथ यहां असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर मौजूद हैं, सशस्त्र सीमा बल जो हमारी फोर्स है, उसको बहुत सारी शुभकामनाएं फ्यूचर के लिए भी आकाशवाणी की तरफ से। और बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं जिनसे थोड़ा सा परिचित होंगे थोड़ी देर में, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वो जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि सशस्त्र सीमा बल में जो भर्ती की जो प्रक्रिया है वो कैसी रहती है और आपके लिए कैसी थी।
1: जी, मैंने एसएसबी वर्ष 2012 में बतौर उपनिरीक्षक के पद पर ज्वाइन किया एवं अपनी सेवा यात्रा शुरू की। भर्ती की प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता, लिखित परीक्षा, मेडिकल परीक्षण, इंटरव्यू तथा अन्य निर्धारित चयन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। सेलेक्शन और ज्वाइनिंग के दौरान मेरे लिए यह एक नया अनुभव था। एक यूनिफॉर्म फोर्स में आने के लिए फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल प्रिपेयर्डनेस, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन की भी आवश्यकता होती है। ज्वाइनिंग के बाद मेरा पहला महत्वपूर्ण चरण सलोनीबाड़ी असम में सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर में बेसिक ट्रेनिंग का रहा। ट्रेनिंग के दौरान मुझे पहली बार महसूस हुआ कि अब जीवन की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। अब केवल व्यक्तिगत सफलता महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन और देश के प्रति जिम्मेदारी भी थी। वर्ष 2023 में मैंने विभागीय लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपिटेटिव एग्जामिनेशन दैट इज LDCE उत्तीर्ण कर असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी के पद पर पदोन्नति प्राप्त की। वर्तमान में मैं सशस्त्र सीमा बल 24वीं वाहिनी रंगिया असम में बतौर सहायक कमांडेंट अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूं।
0: तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि सब इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट तक का जो आपका सफर है वो कैसा रहा। और इससे पहले कि आप उत्तर दें, मैं कुछ मैसेजेस भी पढ़ लेता हूं जो हमारे पास आ रहे हैं देश भर से। और सबसे पहले ये मैसेज जिनका आया है वो है यश शिंदे, मुंबई से लिख रहे हैं। और प्रोग्राम के बारे में उनकी प्रतिक्रिया ये है कि उन्हें ये प्रोग्राम, आपकी आवाज और आपके विचार सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। शांताचारा बदीगर कोकनूर देवनागरी से संदेश टू सोल्जर्स की तारीफ करते हुए लिख रहे हैं कि वो याद दिलाते हैं ये प्रोग्राम की सर्विस सैक्रिफाइस ड्यूटी हमारे ब्रेव सोल्जर्स की, जो हमारे इस भारतवर्ष को गार्ड कर रहे हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है। और प्रभावित होते होते बी के दत्त हमें नई दिल्ली से मैसेज लिख रहे हैं, अनमोल राय छपरा बिहार से हमें मैसेज लिख बैठे हैं और आकाशवाणी का धन्यवाद दे रहे हैं चेतन पटेरिया ग्वालियर से। राजकुमार संतानी एक मैसेज लिख रहे हैं, मोहन चंद्र जोशी ने अपना एक मैसेज हमारे तक पहुंचाया है। और एक और मैसेज हमारे पास आया है जो मैं पढ़ना चाहूंगा यहां पे। सैयद सर के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अस्सलाम वालेकुम सर, हमें प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। और स्वर रोड मुरसेना डिस्ट्रिक्ट रामपुर यूपी से मैसेज आया है। और गुलाफशा इदरीसी जीनत और नाजिया शाजिया के साथ ये मैसेज हम तक पहुंचा है। कोकानूर से भी एक मैसेज आया है जिसको हम पढ़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम में वार्ता सुनकर हमें लग रहा है कि एसएसबी कितना महत्वपूर्ण और बड़ा काम कर रही है। अमेरिका से एक मैसेज आ गया हमारे पास एंड ऑफकोर्स वो कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। नाम लिखा नहीं है तो हम नाम ले नहीं पाएंगे। सूरज कुमार शेखुपुरा बिहार से हमें मैसेज लिख रहे हैं, एसएसबी को सैल्यूट दे रहे हैं। एसएसबी कमांडेंट साहब को संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम का नियमित श्रोता तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से विजय कुमार विश्वनाथन का प्रणाम, बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं आपकी गैलेंट्री अवार्ड के लिए। सैनिकों का जज्बा जो है उनकी शौर्य गाथा पर ये केंद्रित प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। संतोष श्रीवास्तव को पसंद आ रहा है जो प्रयागराज ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी में प्रोग्राम्स करते हैं। सुरेश कुमार 68 बटालियन एसएसबी मणिपुर एल एंड ओ ड्यूटी कर

0: एलएन ओ ड्यूटी के लिए कुछ टिप्स बताइए, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं क्या? एएसआई सुरेश कुमार आपसे परिचित है, एसएसबी के ही हैं
1: जी बिल्कुल,
0: तो वो कह रहे हैं कुछ टिप्स बताइए एल एंड ओ।
1: एल एन ओ बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी होता है।
0: okay.
1: कि आप जानते हैं मणिपुर की सिचुएशन थोड़ी सी मतलब गड़बड़ाई हुई है और वहां पे कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस जो रेगुलर फोर्सेस वहां तैनात है उसके अलावा अभी वहां पे तैनात की गई है ताकि सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जा सके। मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आपको जो ड्यूटी आपकी कंपनी कमांडर के द्वारा या जो एडहॉक कमांडेंट आपके हैं वहां पे उसके द्वारा लगाई गई है, या अभी हमारे 68 बटालियन वहां पे बेसिकली उनका केएलपी वहां पे रिलोकेट हो गया है, तो अभी 68 बटालियन की लगभग सभी वाहिनियां मणिपुर में हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो आपको ड्यूटी दी जाती है उस ड्यूटी को आप बहुत ही सतर्कता के साथ में और विजिलेंट होकर के करें और किसी भी अनटूवर्ड स्थिति के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें और साथ ही साथ स्थिति को समझें और सिचुएशन की डिमांड को देखते हुए एक्शन लें। और जो आपके सीनियर हैं, जो आपके जस्ट सीनियर हैं, जो आपके सुपीरियर हैं, उनके जो ऑर्डर्स प्रॉपर फॉलो करें और जो ट्रेनिंग में आपने सीखा है उस ट्रेनिंग को वहां पे जो है पूरी तरीका से उतारें और आपकी अपने आप ही जो ड्यूटी है वो परफेक्ट हो जाएगी।
0: वाह, बहुत अच्छे विचार आपने शेयर किए यहाँ पे और बहुत सारे लोग हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। मानसी महास्कर अंधेरी मुंबई से उनमें से एक है और आपको दिल से वो बधाइयां दे रही हैं, कह रही हैं कि आज के मेहमान अफसर सर और सब दलों के फौजी भाई बहनों को मेरा प्रणाम और मैं हमेशा सुनती हूं प्रोग्राम एंड ऑफ कोर्स वो अपने भाव भले ही व्हाट्सएप के जरिए चार लाइनों में ही व्यक्त कर रही हूं लेकिन इन चार लाइनों के पीछे ढेर सारा प्रेम हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए एंड ऑफ कोर्स फॉर द ग्रेट नेशन दैट वी लिव इन।

0: हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी लें, तो सबसे पहले उसी सवाल को मैं दोहरा रहा हूं असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर की, सब इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट तक का जो आपका सफर था वो कैसा था?
1: जी, यह सफर मेरे लिए निरंतर लर्निंग्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सफर रहा है। मैंने एसएसबी में अपने कैरियर की शुरुआत सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट एंट्री के रूप में की और आज असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में जिम्मेदारी निभा रहा हूं। समय के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्वरूप बदलता गया। एक जूनियर रैंक्स में आपका फोकस मुख्य रूप से अपनी असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रोफेशनली पूरा करने पर होता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपको अपने साथ काम करने वाले कार्मिकों की सेफ्टी, उनका मोराल, डिसिप्लिन और ऑपरेशनल एफेक्टिवनेस की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। इस सफर ने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाई, लीडरशिप का अर्थ केवल आगे रहना नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर अपनी टीम के लिए आगे खड़ा होना भी लीडरशिप है।
0: सशस्त्र सीमा बल।

0: जितनी भी तारीफ हम करें शायद शब्द कम पड़ जाएं। जानते हैं कि साल 2013 में सशस्त्र सीमा बल पर एक पोस्टल स्टैंप इशू किया गया था और वहां पे भारत की वो सरहद जहां पर बर्फीली चट्टानों के बीच में हमारे जाबाज सैनिक सुरक्षा का वो दायित्व संभालते हैं, एक कवच पहनते हैं, भारत मां का दिया हुआ वो कवच उस यूनिफॉर्म के रूप में। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, हर प्रांत, हर जगह में सशस्त्र सीमा बल लगभग हर जगह अपनी सेवाएं हमें देती हैं। और इस सशस्त्र सीमा बल में लीडर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो यहां हमारे साथ स्टूडियो में जो बैठे हैं असिस्टेंट कमांडर सैयद अफसर, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि आपके अनुसार एक अच्छा लीडर कौन होता है।
1: जी बिल्कुल, लीडर्स की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। जो मेरे लिए है मैं बताना चाहूंगा, मेरे विचार से अच्छा लीडर वह होता है जो अपनी टीम को केवल आदेश ना दे बल्कि उन्हें समझे। एक लीडर को अपने कार्मिकों की कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस दोनों को समझना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, लीडर को अपने एक्शन से एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। अगर आप अपनी टीम से कमिटमेंट की अपेक्षा करते हैं तो आपको भी उतना ही कमिटेड होना चाहिए।
0: वाह, और बहुत कम समय बचा है, लगभग हमारे पास 5 मिनट बचे हैं, तो अपने श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो एक व्हाट्सएप नंबर है जो मैं आपको दोबारा शेयर कर रहा हूं, आप अपने संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर है 9868107070 9868107070। असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर हमारे साथ मौजूद हैं। यहां पर कुछ और मैं आपसे बात करना चाहूंगा, थोड़ा सा चीजों को हमने बहुत सीरियसली लिया, लेकिन हमारे देश के युवा भी हैं जो शायद कोई मार्गदर्शन चाह रहे हो। अगर उन युवाओं के लिए मैं आपसे कहूं कि आप अपनी जुबानी, सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर की जुबानी, अगर कोई मैसेज उन यंग लोगों तक पहुंचाया जाए तो वो क्या होगा?
1: जी बिल्कुल, मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि अपने कैरियर का चुनाव केवल सैलरी या स्टेटस के आधार पर ना करें। ऐसा प्रोफेशन चुने जिसमें आपकी रुचि हो और जिसमें आप समाज और देश के लिए मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर सके। अगर कोई युवा यूनिफॉर्म सर्विस में आना चाहता है तो उसे फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन और प्रिजर्वेंस पर भी काम करना चाहिए। फेलियर्स आए तो उनसे सीखें, लेकिन अपने लक्ष्य को ना छोड़ें।
0: आज से अगर 14 साल पहले थोड़ा पीछे जाएं, साल 2012 में, तो 2012 के सईद अफसर और आज के अफसर जो हमारे सईद अफसर साहब हैं, उनसे अगर वो दोनों पर्सनालिटी मिले तो 2026 के सईद अफसर 2012 के सईद अफसर से क्या कहेंगे? कुछ ऐसे ही भाव जो आपने युवाओं के लिए कहे?
1: जी बिल्कुल, मैं 2012 के सईद अफसर से कहना चाहूंगा कि अपनी मेहनत और अपने उद्देश्य पर विश्वास बनाए रखो। आगे रास्ते में कई चैलेंजेस आएंगे, कई बार परिवार से दूर रहना पड़ेगा और कई बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अपने प्रिंसिपल्स और अपनी ड्यूटी से कंप्रोमाइज मत करना। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी सफलता का श्रेय अकेले खुद को मत देना। जिन लोगों ने आपके सफर में आपका साथ दिया है उन्हें हमेशा याद रखना।
0: और आकाशवाणी ने भी तो आपका बहुत साथ दिया है, मेरे ख्याल से आपकी फोर्स में बहुत सारे लोग जो बहुत डिफिकल्ट टेरेन में होंगे, क्या मतलब पहले तो बहुत सारे लोग खुले तरीके से आकाशवाणी को चला के रेडियो सुनते थे, आपका आकाशवाणी के साथ वो रिलेशन और जो आपके जो आपके बटालियन हो या आपके ग्रुप के जो लोग हैं आकाशवाणी के प्रति, उनका भी एक भाव होगा, जुड़ाव होगा, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं?

0: जी बिल्कुल, मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा। देश की सुरक्षा केवल सीमा पर तैनात फोर्सेस की जिम्मेदारी नहीं है, राष्ट्र निर्माण में हर नागरिक की अपनी भूमिका है। मैं विशेष रूप से युवाओं से कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और हार्ड वर्क को महत्व दें। जो युवा यूनिफॉर्म फोर्सेस में आने का सपना देखते हैं, वे पूरे समर्पण के साथ तैयारी करें और कठिनाइयों से कभी ना घबराएं। मेरे लिए राष्ट्र सेवा केवल एक प्रोफेशन नहीं है, बल्कि एक कमिटमेंट है, और पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मेरे लिए उस कमिटमेंट को और मजबूत करने की प्रेरणा है।
1: संदेश टू सोल्जर्स में समय निकलता जा रहा है, बहुत ही जल्द हमें इस प्रोग्राम का आज समापन करना पड़ेगा, लेकिन चलते चलते वो लोग जो हमें मैसेजेस भेज रहे हैं व्हाट्सएप, जिनसे मैंने मंगाया है, उनके नाम मैं अपने ही अंदाज में लेना चाहूंगा। मंसूर अली बीकानेर से हमारे को मैसेज भेज रहे हैं, साथ ही साथ SHQ बोंगाई गांव CTGD पार्था बर्मन, शायद ये भी SSB से ही हैं, इन्होंने हमें मैसेज भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया ये मैसेज भेजने के लिए। जय हिंद सर। नाम अपना नहीं लिखा, हाँ सौरभ कुमार हमें मैसेज भेज बैठे हैं, 16वीं बाहिनी SSB से स्वागत, बंधन अभिनंदन संचार शाखा से, ये आपके लिए मैसेज आया है। एंड ऑफकोर्स सौरभ हिमाचल प्रदेश से हमें मैसेज भेज चुके हैं, जय हिंद कहते हुए वो कह रहे हैं कि एक नए योद्धा है 73rd वाहिनी सशस्त्र सीमा बल सेंथुक में, नहीं टाटा योद्धा के आगमन के अवसर पर विधिवत पूजा अर्चना का आयोजन किया है, सर को बता दीजिए। जय हिंद सर। बहुत कम समय बच गया है, हमें ये प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट सैयद अफसर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो पे आए, अपने भाव शेयर किए, और वो गैलेंट्री अवार्ड मेडल मैं देख पा रहा हूं और मेरे अंदर बहुत ही इमोशन आ रहा है जो मैं व्यक्त नहीं कर सकता, और उन मेडल्स को देख के मैं यही कह सकता हूं दैट आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन।
0: थैंक यू सो मच।
1: और यहीं पे हम संदेश टू सोल्जर्स से आप सभी लोगों से विदा लेते हैं, आशा करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ, नमस्कार।

0: सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: एक सौ दो दशमलव सात एफएम पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के पांच बज रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

स्वागत है आप सभी युवा दोस्तों का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। और आज का ये अंक प्रस्तुत कर रही है आपके रेडियो वाली साथी प्रीति सिन्हा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस बदलते मौसम में एक ओर जहां गर्मी और फिर बारिश का असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, वहीं आप सभी अपना ध्यान रख रहे होंगे, खान पान में संतुलन बनाकर चल रहे होंगे और बुखार, सर्दी, फ्लू जैसे लक्षणों से अपने आप को बचा रहे होंगे, ताकि आप अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी में जुट सके और

अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। तो दोस्तों, बिना देर किए चलिए चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर और जानते हैं क्या है विशेष आज के दिन यानी 10 सितंबर को। दोस्तों, 10 सितंबर को आज हम मना रहे हैं विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, साथ ही गोविंद बल्लभ पंत की जयंती और KS रणजीत सिंह की जयंती। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर। दोस्तों, प्रतिवर्ष 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इसकी क्या वजह है और इसे क्यों मनाते हैं, आइए आज के इस अंक में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव, अकेलापन, डिप्रेशन, आर्थिक परेशानी, रिश्तों में तनाव और कई दूसरी परिस्थितियां लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकती हैं। कई बार व्यक्ति अपनी परेशानी किसी से साझा नहीं कर पाता और खुद को अकेला महसूस करने लगता है। ऐसे में परिवार, दोस्तों और समाज की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे ही समय में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस लोगों को ये संदेश देता है कि मानसिक परेशानी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर मदद लेने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस क्यों मनाते हैं और इसके पीछे क्या उद्देश्य है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आत्महत्या जैसी गंभीर समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करना और इसकी रोकथाम के लिए सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना है। इस दिन मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाने के साथ साथ लोगों को ये समझाने की कोशिश की जाती है कि मानसिक परेशानी भी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है और इसके लिए मदद लेना सामान्य बात है। दोस्तों, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पहली बार 10 सितंबर 2003 को मनाया गया था। इसे मनाने की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम संघ ने की थी। बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी इस पहल को समर्थन दिया। आज बड़ी संख्या में लोग तनाव, अकेलेपन, डिप्रेशन, पारिवारिक समस्याओं, आर्थिक दबाव, नौकरी से जुड़ी परेशानी या रिश्तों में तनाव जैसी परिस्थितियों से गुजरते हैं। कई लोग अपनी परेशानी दूसरों से साझा नहीं कर पाते। ऐसे में आत्महत्या रोकथाम दिवस एक बड़ा उद्देश्य इसी चुप्पी को तोड़ना है। लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपनी मानसिक परेशानियों के बारे में बात करें और जरूरत पड़ने पर परिवार, दोस्तों या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लें। दोस्तों, इस दिवस में परिवार और दोस्तों की क्या भूमिका है इसको भी समझिए। किसी व्यक्ति के व्यवहार में अचानक बदलाव, लगातार उदास रहना, लोगों से दूरी बनाना या निराशा होने की बात करना या दिखाई देना तो उसे गंभीरता से लेना जरूरी है। ऐसे समय में उसकी बात सुनना, उसे अकेला महसूस न होने देना और जरूरत पड़ने पर उसे मदद तक पहुंचाना महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का संदेश यही है कि किसी व्यक्ति की परेशानी को छोटा समझने या उसका मजाक उड़ाने की बजाय उसे समझने और सहारा देने की जरूरत है। तो
तो दोस्तों, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर चर्चा बस यहीं तक।

0: आपकी चाय।
1: EMI किराया कैसे मैनेज करूं?
2: एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। कैसे? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा। इतना इजी?
1: काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है।
2: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
1: ना भाई ना।
3: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: नमस्कार, यदि आप रेडियो प्रस्तुति और एंकरिंग में रुचि रखते हैं और अपनी आवाज के माध्यम से श्रोताओं के बीच अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ओबरा आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका।
6: आकाशवाणी ओबरा द्वारा युववाणी कार्यक्रम के लिए असाइनमेंट अर्थात समुदेशती आधार पर कंपेयर एवं

0: वार्ताकार का पैनल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ओबरा परिक्षेत्र में निवास करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
1: अभ्यर्थियों का चयन स्वर परीक्षा यानी ऑडिशन और स्क्रीनिंग समिति के संस्तुति के आधार पर किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों का नाम पैनल में शामिल किया जाएगा।
0: ध्यान रहे, यह स्थायी और नियमित रोजगार नहीं है। आकाशवाणी ओबरा अपनी कार्यक्रमगत आवश्यकता के अनुसार ही पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को समय समय पर कार्य हेतु आमंत्रित करेगा। प्रत्येक असाइनमेंट के लिए प्रसार भारती के नियमानुसार मानदेय दिए होगा।
1: आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 28 अगस्त 2026 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा महाविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
0: आवेदन शुल्क ₹118 निर्धारित है। शुल्क ऑनलाइन अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से PBBC ऑफ इंडिया प्रसार भारती आकाशवाणी वाराणसी के खाते में देय होगा।
1: आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा करने की रसीद संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।
0: इच्छुक अभ्यर्थी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आकाशवाणी ओबरा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन 28 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
1: और यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने में असमर्थ हैं, तो आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। पता इस प्रकार लिखें: स्वर परीक्षा युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी ओबरा जिला सोनभद्र, पिन कोड नंबर है 231219।
0: तो जुड़िए आकाशवाणी ओबरा से,
1: दीजिए अपनी आवाज को नई पहचान।

0: दोस्तों कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए ये वार्ता। विषय है पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली और युवा। वार्ताकार है अंजलि।
1: नमस्कार, मैं अंजलि आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रही हूँ जो केवल वर्तमान में ही नहीं बल्कि आने वाले भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। विषय है पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली और युवा। मनुष्य और प्रकृति का संबंध अत्यंत गहरा है। जल, वायु, भूमि, वन, नदियाँ और जीव जंतु ये सभी हमारे अस्तित्व का आधार हैं। किंतु आज बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन पूरी दुनिया के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुके हैं। ऐसे समय में पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली अपनाना केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन गया है। भारत ने भी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अर्थात पर्यावरण के लिए जीवन शैली की अवधारणा को विश्व के सामने प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देना है। साथियों, आइए अब हम बात करते हैं पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली का अर्थ क्या है। पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली का अर्थ है कि ऐसे व्यवहार आदतों को अपनाना जिनसे प्रकृति पर कम से कम नकारात्मक प्रभाव पड़े। हमें विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना है। इसका मतलब है कि पानी का सही उपयोग करना, बिजली की बचत करना, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना, सार्वजनिक परिवहन या साइकिल का उपयोग करना, पेड़ पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, जरूरत के अनुसार ही वस्तुओं का उपयोग करना है।

कहे तो प्रकृति से उतना ही ले जितनी हमें आवश्यकता हो और उसे सुरक्षित रखने में हम अपना योगदान दें। साथियों, आज पर्यावरण की स्थिति हम देखते हैं कि गर्मी लगातार बढ़ रही है, कभी बेमौसम बारिश होती है तो कभी सूखा पड़ जाता है, नदियाँ प्रदूषित होती जा रही हैं, जंगल कम हो रहे हैं और हवा की गुणवत्ता भी खराब होती जा रही है। इन समस्याओं का मुख्य कारण केवल उद्योग या सरकार नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतें भी हैं। यदि हम रोज एक प्लास्टिक की बोतल फेंकते हैं, अनावश्यक बिजली खर्च करते हैं या पानी बर्बाद करते हैं, तो हम इस समस्या का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यदि हम अपनी आदतें बदले तो हम समाधान का हिस्सा भी बन सकते हैं। साथियों, जैसा कि आपने गौर किया होगा, आज का हमारा विषय पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली और युवा विषय पर है। युवा क्यों महत्वपूर्ण है? भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारे देश की बड़ी आबादी युवाओं की है। आज के युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं। युवाओं में ऊर्जा है, एक नई सोच है और बदलाव लाने की क्षमता है। यदि युवा पर्यावरण संरक्षण का संकल्प ले, पर्यावरण के प्रति जागरूक बने, तो वे अपने परिवार पड़ोसी को जागरूक कर सकते हैं, समाज में बदलाव ला सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अभियानों का हिस्सा बन सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोगों तक संदेश पहुंचा सकते हैं। आज भी बहुत से युवा प्लास्टिक मुक्त अभियान चला रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं और साइकिलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे साबित होता है कि युवा केवल भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान में बदलाव लाने वाली शक्ति भी है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हमें मिलकर अपनी जीवन शैली में क्या-क्या बदलाव ला सकते हैं। आइए अब हम इस पर गौर फरमाते हैं। प्लास्टिक का कम उपयोग करें, एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिकों से बचें, कपड़े या जूट के बैग का उपयोग करें और पानी की अपनी बोतल को साथ रखें। बिजली की बचत, कमरे से घर से निकलते समय पंखा और लाइट बंद करें, एलईडी बल्ब का उपयोग करें और अनावश्यक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चालू ना रखें। पानी बचाएं, हमें पानी का सही उपयोग करना चाहिए, नल खुला ना छोड़ें। वर्षा जल संचय जैसी तकनीकों को ये बढ़ावा देती है। जहाँ संभव हो वहाँ हमें बस, मेट्रो, साइकिल या पैदल चलने को प्राथमिकता बनानी चाहिए। इससे ईंधन की बचत और प्रदूषण भी कम होता है। हर युवा यदि साल में एक या दो पौधे भी लगाए और उनकी देखभाल करे तो यह एक बड़ा योगदान होगा। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, तापमान नियंत्रित करते हैं और पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। जरूरत से ज्यादा खरीदारी ना करें, ऐसी वस्तु खरीदें जो टिकाऊ हो और जिनका उपयोग हम बार-बार कर सकें। दोस्तों, आज तकनीक भी पर्यावरण संरक्षण में मदद कर रही है। सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ऑनलाइन सेवाएं और स्मार्ट उपकरण जो ऊर्जा की बचत कर रहे हैं। युवा तकनीक को अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए वे इन नव विचारों को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रिय साथियों, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पृथ्वी हर व्यक्ति की जरूरत पूरी कर सकती है, लेकिन हर व्यक्ति के लालच को नहीं। यह वाक्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हमें यह समझना होगा कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली कोई बड़ी

0: कठिन चीज नहीं है, यह छोटे छोटे बदलाव से शुरू होती है। यदि आज का युवा पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बन जाए तो अपने आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, सुरक्षित और सुंदर पृथ्वी मिल सकती है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें, हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, संसाधनों का सही उपयोग करेंगे और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, विषय था पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली और युवा। वार्ताकार थी अंजलि, प्रस्तुतकर्ता थे सचिन कुमार वर्मा।

दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ओपरा केंद्र से 102.7 FM पर। दोस्तों आज 10 सितंबर को हम मना रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत की जयंती और साथ ही केएस रणजीत सिंह की जयंती। आइए थोड़ी सी बात इनके विषय में भी। पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जिनका जन्म 10 सितंबर 1887 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के खूंट गांव में हुआ था, भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर राजनेता और आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक थे। वे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और बाद में भारत के चौथे गृह मंत्री बने। देश के प्रति उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1957 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। दोस्तों साथ ही भारतीय क्रिकेट के इतिहास में आज का दिन यानी 10 सितंबर का दिन बेहद खास है। 1872 में आज के ही दिन हिंदुस्तान के महान क्रिकेटरों में शामिल कुमार श्री रणजीत सिंह का काठियावाड़ में जन्म हुआ था। तो दोस्तों हमारा ये आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। अब दीजिए अपने रेडियो वाले साथी प्रीति सिन्हा को कार्यक्रम युववाणी समाप्त करने की अनुमति। फिर मिलेंगे किसी अगले अंक में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी 102.7 FM पर। हम आकाशवाणी के ओपरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति आशीष वर्मा की, प्रस्तुतकर्ता सचिन कुमार वर्मा।
1: दिल की धड़कन, बीट का वाइब्रेशन,
2: आपकी चॉइस, हमारा डेडिकेशन।
1: कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
3: हेलो हेलो
4: हेलो,
2: आपके दिल की आवाज आपके रेडियो सेट पर।

0: कार्यक्रम हेलो फरमाइश में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम के साथ मैं आशीष वर्मा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आपसे बातचीत का सिलसिला, जानते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर।
1: खिलवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ सर।
0: जी सतीश जी कैसे हैं?
1: जी हम तो बढ़िया सर, हम बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि हमारा पहली बार आकाशवाणी ओबरा में कॉल लगा।
0: पहली बार आपसे बात हो रही है यानी?
1: जी जी सर पहली बार सर, मैं हमारे ग्रुप के 10 लोग लगाते हैं सर, तो मैंने पहली बार सोचा कि आज मैं भी मिला के देखूं।
0: चलिए अच्छा है ना, वो कहते भी है ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बताइए सतीश अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप?
1: जी सर मैं बिजली ऑफिस में ऑपरेटिंग का काम करता हूँ सर, सभी के घरों में उजाला रोशन करता हूँ। थोड़ा बहुत समय मिल जाता है तो रेडियो में आगे भी थोड़ा उजाला रोशन कर देता हूँ।
0: जी बिल्कुल, और आपके बोलने का जो ये अंदाज है लग भी रहा है कि आप रेडियो के बहुत अच्छे श्रोता हैं।
1: सर मेरी दिनचर्या में बस रेडियो एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, क्योंकि सर ये हमारा एक जीवन साथी, बोलो इसको जीवन साथी है।
0: जी
1: सब लोग साथ छोड़ देंगे सर, रेडियो हमारा मनोरंजन से काम नहीं छोड़ता सर।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, और हम हमेशा कहते भी है ना कि जब कोई नहीं होगा हम तो होंगे आपके साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर जी, और हमारा जो काम चलता है तो ये गाने गुनगुनाते और आवाज सुनते सुनते सर बहुत ही अच्छा हमारा आनंद यूं में ही हो जाता है सर, और उसमें कुछ मतलब बोर बन नहीं लगता है और कुछ थकावट महसूस भी नहीं होती है।
0: सच पूछिए तो जी रहे हैं आप, और इसी को जीना भी कहते हैं। रेडियो को आपने अपना जीवन साथी माना है, बहुत अच्छा साथ निभा भी रहा है रेडियो सभी का, आप जैसे श्रोताओं के साथ हम जुड़े हुए हैं, अच्छा लगता है जान करके।
1: बस सर जी मैं तो यही बोलना चाहता हूँ हमारे सभी श्रोताओं से कि रेडियो का एक माध्यम सर हमेशा यूं ही चलता रहे, और रेडियो से हमेशा यूं लगाव बना रखे तो सर दिनचर्या भी बहुत अच्छी निकल जाती है।
0: बहुत बढ़िया, और बता दीजिए आज क्या पसंद है आपकी?
1: सर आप मुझे सुनो दीजिए सर जी, फिल्म का नाम है करण अर्जुन, और गीत के बोल रहेंगे सर जी ए बंधन तो प्यार का बंधन, और कोई दोस्तों को डेडिकेट भी कर सकते सर जी?
0: हाँ जी बता दें
1: सर, सबसे पहले तो आपको
0: थैंक यू,
1: और हमारे मित्र हैं सर जी गौतम राय बोले जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी हैं, तुकाराम जाधव जी हैं, आत्मराम पाटिल जी हैं, नारायण प्रधान जी हैं, शाहरुख नूर अंसारी जी हैं, और राजेंद्र गंगवारी।
0: बिल्कुल चलिए फिर आपके और आपके दोस्तों के साथ इस गाने के माध्यम से बंधन और मजबूत करते हैं। जुड़े रहिए आकाशवाणी से, आपको जब भी मौका मिले सुनिए अपनी पसंद पर करण अर्जुन फिल्म का ये गीत।

0: हेलो
1: आशीष जी नमस्ते।
0: जी नमस्ते सर
1: जी, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से, आपका बेस्ट फ्रेंड।
0: तो बताइए दोस्त कैसे हैं?
1: जी मैं भी बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके सच बता रहा हूँ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत दिनों बाद आज आपसे बात भी हो रही है हमारी। और बताइए हाँ, क्या माहौल है आपके यहाँ, कैसे हैं सब?
1: जी अभी 2 महीने की फसल हो गई है यहाँ पर, और हमने इसमें स्प्रे करके पकने के लिए छोड़ दिया, अभी 1 महीने में पक के तैयार हो जाएगी फसल सोयाबीन की।
0: अच्छा जी,
1: और कटाई भी शुरू हो जाएगी।
0: बहुत बढ़िया। और कैसे ही उम्मीद है इस बार, कैसी कमाई होगी इस बार की फसल से, क्या लगता है?
1: जी आशीष जी बताना चाहेंगे, इस बार तो हमारे यहाँ पे बम्पर पैदावार होगी जी, काफी अच्छी फसल खड़ी है। और मतलब आपको बताऊँ, हफ्ते हफ्ते बरसात हुई है ना, तो मतलब जितना पानी सोयाबीन को जरूरत थी ना, उतना पानी गिरा है, तो मतलब काफी फलिया है सोयाबीन में, और बहुत पैदावार होगी इस साल।
0: बहुत बढ़िया, चलिए भोलेनाथ की कृपा है, उनकी नगरी में आप हैं और उनकी कृपा आप लोगों के जीवन पे बनी हुई है, आपकी मेहनत सफल हो रही है, ये जानकर के हमें भी बहुत खुशी हो रही है।
1: इस फसल जब आती है ना, तो मतलब सबको उत्साह रहता है, काम करने वाले लोगों का रहता है, जब मंडी में हम सोयाबीन या कोई भी फसल ले जाए तो बनियों को भी उत्साह रहता है
0: जी।
1: और किसानों को तो काफी उत्साह रहता है, क्योंकि मतलब उनको 6 महीने या 4 महीने की जो फसल का जो दाम उचित मिलता है ना
0: जी,
1: तो सभी लोग बड़े खुश होते हैं।
0: बिल्कुल सर।
1: अभी तो आपको बताऊं, काफी अच्छा मौसम है, पिछले हफ्ते बारिश हुई थी, लेकिन फिर से मतलब बारिश का दौर शुरू होगा मध्य प्रदेश में, और ये जो बारिश अब जो बारिश होगी ना, उससे मतलब कुएं तालाब नदियां सब भर जाएंगे, तो हमारे अगली फसल के लिए मतलब काफी मतलब फायदेमंद रहेगा ये पानी।
0: बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, हम भी ईश्वर से आपके लिए यही प्रार्थना करेंगे दोस्त होने के नाते, कि हमारे दोस्त की कमाई भी अच्छी हो, आकाशवाणी से वो ऐसे ही जुड़े रहें और अपनी पसंद के गीत अपने दिल की बातों के साथ सुनते रहें, सुनाते रहें। बताइए आज क्या पसंद है?
1: तो आप सुनवा दीजिएगा, वेलकम फिल्म का गाना है तेरा सराफा।
0: चलिए ठीक है सर, सुनवाते हैं आपकी पसंद वाला ये गीत, सुनते रहिए, जुड़े रहिए आकाशवाणी ओबरा से।

0: हेलो
1: जी कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
0: हाँ भैया, योगेश जांगड़े पे।
1: हाँ जी योगेश जी, कैसे हैं? बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है।
0: जी, बढ़िया है भैया, अच्छे हैं।
1: कहाँ पर हैं अभी?
0: अभी फिलहाल घर में है।
1: और तबीयत वगैरह ठीक है? थोड़े सुस्त लग रहे हैं।
0: नहीं, ठीक है भैया, अभी
1: हाँ,
0: तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है।
1: क्योंकि मौसम में जब बदलाव आता है तो थोड़ी बहुत कभी सुस्ती, कभी मन में अजीब से निगेटिविटी, वो क्रिएट होती रहती है।
0: अभी 3-4 दिनों से बहुत तेज धूप है भैया।
1: खैर ठीक है, चलिए, अच्छा है, मौसम है, बदलता रहता है। और गीत गानों से जुड़ाव बना हुआ है कि नहीं?
0: बिल्कुल, गीत संगीत तो सबसे ज्यादा जरूरी है।
1: वैसे आपकी फेवरेट पार्श्व गायिका कौन रही हैं?
0: गायिका में तो लता जी ही सबसे पसंदीदा है। देखिए भैया, आशा जी हो, लता जी हो, हमारी जो भारतीय संस्कृति है या भारतीय सभ्यता है, इन लोगों के जो गाए हुए गीत है ना, वो घर हमारे मन में रचे होते हैं। केवल एक पीढ़ी नहीं, हम कहते हैं भैया, ये हमेशा जीवंत रहने वाले गीत उनके रहे,
1: बिल्कुल
0: हम उनके शुक्रगुजार रहेंगे और हमेशा ये कामना करेंगे कि हमेशा उनका नाम यूं ही बना रहे।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने कि भारतीय संस्कृति के ऐसे कोई भी पहलू नहीं है, ऐसे कोई संस्कार नहीं है जिनको इनके गीतों के माध्यम से छुआ ना गया हो। कहने का मतलब, अगर कोई भी पर्व आता है तो अक्सर हम उसको सेलिब्रेट करते हैं गीतों के ही माध्यम से, गानों के ही माध्यम से। और उनमें जो ये पुराने गीत होते हैं वो तो चार चांद लगा देते हैं। फिर चाहे वो भाई बहन का पर्व हो, या फिर कोई धार्मिक पर्व हो, या फिर ऐसे ही कोई भी जो ओकेजन हो अपने घर में हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, चाहे जन्म

0: दिन मना रहे होते हैं या कुछ भी, तो ये जो गीत है इनके गाए गीत ये चार चांद लगा देते हैं।
1: जी
0: बताइए आज क्या पसंद है?
1: फिल्म है यादों की बारात, गीत के बोल है चुरा लिया है तुमने जो दिल को।
0: अरे वाह, चलिए बहुत अच्छा। और आज 8 सितंबर को जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आशा जी का जन्मदिन इस गाने के माध्यम से हम सेलिब्रेट भी कर ले रहे हैं, लेकिन हाँ ये अलग बात है कि प्रसारण हमारा आज 10 तारीख को हो रहा है। आपकी पसंद वाला ये गीत आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं।
1: शुक्रिया,
0: सुनते रहिए, जुड़े रहिए आकाशवाणी ओटा से। बहुत बहुत शुक्रिया सर।

0: हेलो सर जी, नमस्कार।
1: जी नमस्ते, अपना परिचय दें।
0: सर जी, मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग।
1: कैसे हैं गर्ग जी?
0: बहुत मजे में, बहुत मजे में।
1: क्या बात है। और आपके यहाँ का मौसम कैसा है?
0: हमारे बारिश बहुत कम हुई है और गर्मी काफी पड़ रही है, पर आपसे जब बात हो रही है तो हमें गर्मी का कोई नामो निशान नहीं, कहीं नजर नहीं आता, बल्कि ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है।
1: इसी को तो कहते हैं आत्मिक जुड़ाव। आदमी किसी अपने से बात करता है, जिससे बात करके उसको सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, तो फिर ये एहसास इसीलिए कूल हो जाते हैं, ठंड पड़ जाती है कलेजे में, जिसको बोलते हैं।
0: हाँ, कलेजे में ठंड पड़ जाना सबसे बड़ा सुकून है।
1: चलिए बस, और हम चाहते भी हैं कि आकाशवाणी के साथ आपका साथ ऐसा ही बना रहे, आपको हमसे, हमको आपसे, ठंड ऐसे ही पड़ती रहे। और आज कौन सा गीत आपने सोचा है हमारे श्रोताओं को सुनवाने के लिए?
0: सर, आज आशा जी का जन्मदिन है तो मैं चाहूंगा कि उन्हीं का गाया हुआ एक गीत, बहुत ही प्यारा सा गीत है, भले ही वो संजीदा सा गीत है पर मन को छू जाता है।
1: जी बताएं।
0: फिल्म है शहनाई।
1: हाँ, इस तरह तोड़ा मेरा दिल, क्या मेरा दिल दिल नहीं था, यही गीत।
0: आपने बड़ा तीर निशाने पे लगाया है,
1: जी
0: तो मैं
1: बिल्कुल,
0: इसको थोड़ा सा गुनगुना के बताना चाहूंगा।
1: जी बिल्कुल।
0: इस तरह तोड़ा मेरा दिल, क्या मेरा दिल दिल न था, ये तो कह जाते तुम्हारे प्यार के काबिल न था। इस तरह तोड़ा मेरा दिल, क्या मेरा दिल दिल न था।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: धन्यवाद आपका करना चाहूंगा।
1: तो चलिए ठीक है, इस गीत के माध्यम से आशा जी को हम याद कर रहे हैं। लगभग हर रोज इनके गाने हम आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित करते हैं, इनके साथ गुजारा हुआ हर दिन विशेष लगता है।
0: बिल्कुल,
1: बिल्कुल। चलिए ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और अब शहनाई फिल्म का ये गीत, जिसे आपने गुनगुना के हमें सुनाया, आपके रेडियो सेट पर हम उनकी आवाज में भेज रहे हैं।

0: तो श्रोताओं, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में ये था आपसे बातचीत का आज का सफर, जिसे आपके लिए पेश किया आशीष वर्मा ने। गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544527100 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति थी आशीष वर्मा की, प्रस्तुतकर्ता थे सचिन कुमार वर्मा। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को है, अब आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
1: वेद प्रकाश पाठक। सर्वोच्च न्यायालय नाबालिकन के सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल बदे सुरक्षा उपाय के मांग करे वाली याचिका पर सुनवाई कैले पर सहमति जतौले हवे।
2: याचिका में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को अनुबंध करने से रोकने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल बागची तथा वी मोहना की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर केंद्र और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि बाल यौन शोषण संबंधी सामग्री पर रोक के लिए कड़े कानून होने के बावजूद इंटरनेट प्लेटफॉर्म ऐसी सामग्री की स्वचालित निगरानी और उपयोगकर्ताओं की उम्र की पुष्टि की पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। याचिका के अनुसार फेसबुक और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म 13 वर्ष की उम्र से खाते बनाने की अनुमति देते हैं, जबकि भारतीय कानून में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति नाबालिग माने जाते हैं। समाचार कक्ष से रितेश।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देश के पूर्व गृह मंत्री और प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत का 139वां जयंती कार्यक्रम में शामिल भेल हैं। इस दौरान वहां के लखनऊ में उनके मूर्त पर फूल चढ़ा के श्रद्धांजलि देनी। साथ ही मीडिया से बतियावत मुख्यमंत्री श्री योगी भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत के व्यक्तित्व कृतित्व पर रोशनी डालें।
3: उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से मैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के 139वीं पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं और विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी एक महान अधिवक्ता थे, स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे। 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा क्रांतिकारियों के खिलाफ जो अभियोग दर्ज हुआ था, उस अभियोग के खिलाफ क्रांतिकारियों की पैरोकारी पूरी मजबूती के साथ करने वाले जो महान नेता थे वह पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के लगातार सेवा काल पूरा भइले के उपलक्ष्य में प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर ले सेवा संकल्प अभियान चलावल जाए। यही क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल के साथ बैठकी कई के अभियान के तैयारियों का समीक्षा कैले। बैठकी में मुख्यमंत्री कहना कि सेवा संकल्प अभियान के जरिया से प्रधानमंत्री के 25 वर्ष के सेवा काल के जन कल्याणकारी उपलब्धियन, नीतिगत सुधारन आ देश प्रदेश में आयल बदलावन के जन जन ले पहुंचौले के साथ ही हर नागरिक के विकसित भारत के राष्ट्रीय संकल्प से जुड़ल जाए। बैठकी के दौरान मुख्यमंत्री सजो प्रभारी मंत्रियन के जिलन आ अपने अपने विधानसभा में जाके तैयारियन का समीक्षा कैले का निर्देश देने। उत्तर रेलवे वाराणसी लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलोले के फैसला ले ले हो। ये विशेष ट्रेन 22 अक्टूबर से 12 नवंबर ले हर बीएफए के चलावल जाए। हमारे जौनपुर प्रतिनिधि बतौले कि ये ट्रेन वाराणसी से रात 1:35 पर रवाना होके रतिया में 2:35 पर जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन पहुंची। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के ओर से यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव कैल गेल बा। एगो रिपोर्ट।
4: बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि विज्ञान गृह विज्ञान में आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। बोर्ड खुद 30 नंबर की प्रैक्टिकल की परीक्षा लेगा, जबकि अन्य विषयों में पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी, यानी मार्कशीट में ग्रेड के साथ प्रैक्टिकल के नंबर भी दिखेंगे। पहले मूल्यांकन 5 पॉइंट स्केल ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर होता था, जिसे अंक पत्र में ग्रेड के रूप में दर्ज किया जाता था। समाचार कक्ष से अरुण।
1: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद शैक्षिक सत्र 2026-27 बदे कक्षा 9 आई 11 का अग्रिम पंजीकरण आ हाई स्कूल इंटरमीडिएट के परीक्षा फॉर्म भरले का आखिरी तारीख बढ़ा दिले हो। अग्रिम पंजीकरण ए समय सीमा से पहले 13 सितंबर तय रहल, जेके बढ़ा के 30 सितंबर कह दिल गई बा। एहि तरियन हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा फॉर्म भरले का आखिरी तारीख के 1 सितंबर से बढ़ा के 28 सितंबर कैल गई हो। प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक के बरखा का सिलसिला जारी बा। बरखा और बांधन से पानी छोड़ेले के नाते प्रदेश का करीब 26 जिला अबहिनो बाढ़ से प्रभावित हवे। सजो जगहिन पर राहत आ बचाव कार्य जारी बा। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के ज्यादातर पूर्वी या पश्चिमी जिलन में अगला 2 दिन ले गरज चमक के साथ बरखा भइले के संभावना बा। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।
5: एक सौ दो दशमलव सात एफएम पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हो रहे हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का।

आइए आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही दिन में यानी शाम 6:10 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। शाम 6:50 पर कार्यक्रम होगा किसानवाड़ी हमारे लखनऊ केंद्र से।

शाम 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सबरस, रात्रि 8:00 और 8:30 पर कार्यक्रम होगा गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत।

8:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। पुरानी फिल्म गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 9:45 पर गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत।

रात्रि 10 बजे कार्यक्रम होगा रसधारा का, और रात्रि 10:30 पर आज आप सुनेंगे उपशास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत विदुषी शोभा गोटू की गाई ठुमरी, दादरा और कजरी। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब समाप्त होता है।

102.7 एफएम पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:10 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के राम राम। आपो के राम राम जलेबी भौजी।
1: नंदू भैया आपो के राम राम। और बतावे घर परिवार लड़कन कदेलन सब राजी खुशी बायन ना।
0: देखे सब सही हो लेकिन जो नी मौसम चलता ना कहीं न कहीं सर्दी जुकाम और बुखार वाला ये देखे कुछ न कुछ अपने आप के भी भैया कहे ले कि भैया जब हम आई अपन मौसम में तो भैया आप सुरक्षित रहा, आप पहले से ही तैयारी करके रहा।
1: बहुत बढ़िया बात कहला कि सुरक्षित रहा। देखा मौसम के जौन उतार चढ़ाव बा और जौन एकर प्रभाव बा ओसे तो आदमी अपन सुरक्षा कर लेवेला, मगर कभी कभी का होला ना कि कोनो घर में जैसे बड़ बुजुर्ग कहावत हा सुनले हवा ना कि कमी से कला होला और कला के परिणाम कभी कभी बड़ा ही जानलेवा हो जाला।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात।
1: ऐसने में आप सुनले हुई हैं कि गाय में एक ठे दंपत्ति आत्महत्या कर लेले।
0: आए दिन देखे भौजी ये हमेशा देखे के मिलत बा, चाहे कोनो तरीका से होके एकर संख्या दिन पर दिन बढ़ल जात बा। और कहीं न कहीं आपके इशारा बा कि जौन आज विश्व आत्महत्या निरोध दिवस बा एकर देखें इहे मनसा बा कि भैया हो देखें कौनो भी समस्या होके समस्या के हल बा। जैसे आपके अगर कौनो बीमारी बा तो ओकर इलाज खातिर डॉक्टर हों, वही तरह से देखें एकर भी इलाज खातिर आपके मन में अगर कौनो संदेह बा, मन विचलित बा और मन में जोन बा कुछ अलग भाव उठत बा, जैसे आपके दबाव दबाव बा, तो आप जोन बा अपने आप के खुल के आ एक दूसरे से साझा करके एकर निदान भी करा सकल है।
1: एकदम सही कहला भैया। देखा जब केहू व्यक्ति में निराशा के भाव पैदा हो जाला तो जीवन के प्रति उदासीनता अवसाद के कारण बनेला। ऐसा अवस्था में लोग लगातार स्वयं के महत्व साबित करे खातिर अन्य लोगन से जरूरत से ज्यादा अपेक्षा करे लागेलन, किंतु जब उम्मीद के अनुरूप मदद या अपनापन ना मिलेला तो जिंदगी उनके खातिर बोझ बन जाला, व्यर्थ लगे लगेला, शौक समाप्त हो जाला और ना चाहते हुए भी एक गलत निर्णय पूरा परिवार के दुखी करके रख देवेला।
0: एकदम आपकी कहानगी सही बात। हम तो सब पंचन भैया से यह कहब कि भैया हो अपन घर परिवार के माहौल ऐसन बनावल जाए, कहला ना कि झोपड़ी में भी अगर आपस तालमेल होके खुशी होके तो झोपड़ी में भी बड़ा अच्छा लगेला। तो भैया हो जहाँ भी आप रहें एक तालमेल बैठा करके रहें, सब सब चीजन के जोन बात चाहे कमी हो चाहे अधिक हो ओके भी अपन बैलेंस करके चलें, तब जा करके कहीं परिवार चलला।
1: देखा जैसन हम लोगन पहले ही कह ली हजा कि कमी कालह के कारण हो गेला। परिवार में जब हर व्यक्ति के आवश्यकता समय से नहीं पूरा हो गेला या केहू के आवश्यकता के प्राथमिकता देहल जाला ना तो समझ कि ओ व्यक्ति से अन्य व्यक्ति के मन में एक शिकायत के भाव पैदा हो जाला और यहीं से शुरू होला उनके अंदर अपराध वो बेगानापन। और ये शुरुआती लक्षण बा परिवार में जे भी बड़ा बा उनके ए चीज के महसूस करे के चाही, बैठ के दोस्ते के तरीके उनसे पूछे के चाही कि ऐसन का चलत बा तोरे दिमाग में कि तू सबके बीच में नाही बैठत हवा, अकेलापन पसंद बा, भोजन में तोहार रुचि नाही बा, हसब बोलब बंद बा। अगर शुरुआती दौर में थोड़ा ध्यान दिहल जाए ना तो हो सकत बा कि जौन व्यक्ति कुंठित बा, जीवन से उदासीन बा, वो अपन समस्या एक दूसरे से बांटे और जाने ला जहाँ समस्या बा ना वहाँ समाधान भी बा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और देखें समाधान खातिर आज अपन डॉक्टर आनंद कुमार श्रीवास्तव जी हुआ जो असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान के हुआ, आज समस्या के समाधान आत्महत्या ना बा एकरा पर अपन पूरहर जानकारी देवत हुआ। हम तो कहते कि आवाज सुनल जाए।
1: चल
2: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उन सब में मानव सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ इसलिए है कि इसको प्रकृति ने सोचने समझने की क्षमता दिया है और इसी सोच समझ के बल पर निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसकी जो सोच समझ है वो अलग हो जाती है और अपने मन में क्या क्या जो है सोचने लगता है, कोई परेशानी आ गई, कोई दुख आ गया, कोई तकलीफ आ गई, कोई ऐसी घटना दुर्घटना आ गई जिसमें कि उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो थोड़ी अलग हो जाती है और वो कुछ गलत कर बैठता है, यानी कहने का मतलब कि अपने जीवन को ही समाप्त कर लेता है, यानी आत्महत्या कर लेता है। इधर भी जो है बहुत ऐसी घटनाएं देखने को मिली, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से या कोई बीमारी हो, ऐसा बहुत जो भी लक्षण मिला, लेकिन इन सब के पीछे क्या वजह है और कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से उस व्यक्ति ने इतना बड़ा कदम उठाया, इन्हीं सब बातों पर आज चर्चा करने के लिए आज हमने
3: डॉक्टर आनंद कुमार श्रीवास्तव, आप असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान के हैं,
2: विगत 10-12 वर्षों से आप इसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और अच्छा अनुभव है आपके साथ। तो डॉक्टर आनंद कुमार श्रीवास्तव जी, सबसे पहले तो अपने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: हाँ, धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब।
2: क्या सर सारी समस्याओं का समाधान आत्महत्या है?
4: पहले तो मैं अपने रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। देखिए, आत्महत्या जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एक शब्द सेल्फ मर्डर से बना हुआ है
2: जी।
4: इंग्लिश में जिसे सुसाइड कहते हैं, सेल्फ मर्डर का मतलब है अगर इसमें व्यक्ति सफल रहता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है और व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इस क्रिया के द्वारा वो अपने दुख और व्यथा से राहत पा लेता है। विभिन्न संस्कृति और समाजों में इनकी दर भिन्न भिन्न होती है। एक साइकोलॉजिस्ट है, मैं थोड़ी पृष्ठभूमि के साथ आपको बताना चाहूंगा
2: जी।
4: एक साइकोलॉजिस्ट है सेनिटमैन, जिन्होंने सेनिटमैन ने सुसाइड के फील्ड में बड़ा काम किया है।

0: या लीडिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने आत्महत्या को इंटेंशनल डेथ कहा है, आत्म प्रेरित मृत्यु। तो अब बात जहां तक चल रही थी कि आत्महत्या जो है क्या निजात पाने का एकमात्र रास्ता है या क्या परेशानियों का एकमात्र हल आत्महत्या ही है, इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आत्महत्या परेशानियों का समस्याओं का हल नहीं है। आत्महत्या करके व्यक्ति अपने परिवार सभी सदस्यों को समाज को हर तरीके की क्षति पहुंचाता है। आत्महत्या किसी भी परेशानी का किसी भी समस्या का हल नहीं है।
1: जी, यानी कहने का मतलब कि हमें और सोचना होगा, हमारे सोच को विस्तृत विचारधारा के रूप में आगे ले जाना होगा।
0: निश्चय ही, क्योंकि आत्महत्या कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं है। इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं, बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं जो स्ट्रगल करके, जो समस्याओं से जूझ करके, कठिनाइयों और निराशाओं से पार पा करके, विभिन्न बाधाओं को पार करके जीवन में सफल होते हैं। अनेक असफलताओं के बाद भी सफलता मिलने के चांस रहते हैं। इसलिए व्यक्ति को कभी भी किसी भी स्थिति में आत्महत्या के बारे में नहीं सोचना चाहिए।
1: जी बिल्कुल।
0: एक गलत धारणा हमारे समाज में ये है कि आत्महत्या बिना चेतावनी के किया जाता है। ऐसा नहीं है। आत्महत्या करने वाले कई बार या कई बार अपने फैमिली में, अपने मित्रों में, अपने लोगों के बीच इस पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, या एक दो बार जो है इस बारे में प्रयास करते हैं। एक सडनली केसेस बहुत कम है। वही लोग आत्महत्या करते हैं जो विषाद या अवसाद से ग्रस्त होते हैं। ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग भी आत्महत्या करते हैं जो जिनका जो है कि मेंटल हेल्थ एकदम बढ़िया था, जो बहुत अच्छी स्थिति में थे। तो ऐसे लोग जो कि बौद्धिक और मानसिक स्तर से काफी ऊंचे लेवल के लोग हैं, जो कहीं से भी जो है कि उनका मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, आर्थिक कारण कहीं से भी नहीं था खराब, वो लोग भी आत्महत्या कर ले रहे हैं। ऐसी बहुत सी समाज में धारणाएं, गलत धारणाएं हैं साइड करने वाले आत्महत्या करने के बारे में। कुछ ऐसे जो है कि फैक्टर जरूर हैं जिनके कारण कि व्यक्ति क्या करता है कि आत्महत्या के लिए प्रेरित होता है।
1: जी,
0: उनमें जैसे गंभीर बीमारी, जैसे ये देखा गया कि एड्स है, कैंसर है, ओल्ड एज के लोगों में, ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उनमें ये देखा गया कि अगर उनको गंभीर बीमारी है तो वो लोग जो है कि अपने अपने आप को मान के चलते हैं कि अब हम ठीक नहीं होंगे पाएंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब ये लाइलाज है, मैं इसी तरह करूंगा। तो ऐसे लोग जो है गंभीर बीमारियों के कारण भी बहुत सारे लोग आत्महत्या करते हैं। दूसरा जो कारण मुझे एक बड़ा कारण है, तनाव युक्त घटनाएं और परिस्थिति, सिचुएशन जो है कि बड़ा रोल प्ले करता है आत्महत्या में। जैसे आज के समय में बहुत तेजी से दिखाई दे रहा है विवाह विच्छेद, हिंदी में जिसे कहेंगे, लोग परिवार के सदस्यों के आपस में जो है कि तलाक हो जाना, परिवार के सदस्यों का आपस में मनमुटाव रहना, परिवार के सदस्यों का एक साथ न रहना, ये दूसरा कारण है। प्रियजन की मृत्यु, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसको बहुत ज्यादा हम चाहते हैं, जिनके साथ बहुत ज्यादा मेरा लगाव है, जो है अगर पति पत्नी में कोई, भाई बहन में कोई, माता पिता में कोई, ऐसे लोग अगर की मृत्यु हो जाती है तब भी व्यक्ति कभी कभी ऐसी स्थिति में जो है कि आत्महत्या का कदम उठा लेता है। एक जो चीज है, जो सिचुएशन अभी लेटेस्ट नजर आ रही है या दिखती है या बहुत बार लगती है, नौकरी वगैरह को खो देना, ये भी एक सुसाइड का बड़ा कारण है। युवा वर्ग में नौकरी अगर चली जाती है, नौकरी या जिस जॉब को कर रहे हैं अगर वो जॉब छूट जाती है, उनकी जॉब से हटा दिए जाते हैं, तो उनको लगता है कि अब मैं किसी काम का नहीं हूँ, किसी लायक नहीं हूँ, मैं अपने परिवार पे बोझ हूँ, परिवार के लोगों के किसी तरीके की मदद मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसी स्थिति में भी बड़ा तबका है जो आत्महत्या का कदम उठाता है या उसके बारे में सोचता है।
1: जी जी, डॉक्टर साहब, जैसे कि जो हमारे युवा पीढ़ी है, और अभी आप कह भी रहे थे कि जो है युवाओं के ऊपर काफी दबाव महसूस किया जा रहा है, ऐसे में ये गलत कदम उठा ले रहे हैं, और ये एक युवा शक्ति है, देश की शक्ति है, जिनके ऊपर की देश को नाज है, और इनकी ताकत क्षमता का अभी हमें लाभ उठाना है, और ये ऐसे गलत कार्य ना करें, आत्महत्या जैसे कदम ना उठाएं, और आगे बढ़ने के लिए हिम्मत इनको देने के लिए आज आप कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें क्या कहना चाहें।
0: देखिए, युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली चीज कि वो अपने आप पे भरोसा रखें, अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार जॉब को तलाशें, नई नई जो है कि टेक्नोलॉजी, नए नए जो है कि जो इनोवेशन है, जो नई नई चीजें आ रही हैं, उनको सीखें
1: जी।
0: अपने काम के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने परिवार के प्रति ईमानदार रहें, और इन सब के साथ युवाओं में जो कई चीजें हैं वो अब बहुत तेजी से प्रचलन बढ़ गया है, अल्कोहल और ड्रग्स लेने का
1: जी।
0: जो है अल्कोहल और ड्रग्स से अपने को दूर रखें, क्योंकि युवाओं में जो आत्महत्या के केसेस हैं उन्हें देखा गया कि अल्कोहल और ड्रग्स लेने वाले 50% है।
1: अच्छा।
0: ऐसे युवा जो आत्महत्या कर रहे हैं उनमें से देखा गया कि 50% ऐसे लोग थे जो अल्कोहल या ड्रग्स बराबर लेते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बताती है कि डेथ के समय भी उनमें अल्कोहल और ड्रग्स की मात्रा बहुत ज्यादा थी। इसका मतलब है कि ऐसे ड्रग्स और अल्कोहल कहीं ना कहीं इस दिशा में हमको प्रेरित करता है,
1: तो इससे हमारे युवा पीढ़ी को बचना होगा।
0: हाँ, उससे हमारे युवा पीढ़ी को बचना होगा। और एक और बात जिस जो कि आज के समय में प्रासंगिक है, सोशल मीडिया का जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है, और युवा वर्ग सबसे अधिक प्रभावित है। मेल फीमेल दोनों की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि मेल फीमेल सारे युवा उसमें सम्मिलित हैं। सोशल मीडिया पर कोई भी कमेंट्स है, कोई पिक्चर है, कुछ चीजें हैं, उनको जो है कि हमको ध्यान से पोस्ट करना है, ध्यान से करना है चीजों को, सोशल मीडिया का लिमिटेड यूज करना है, एक जो है कि संयमित रूप से यूज करना है। ऐसे फोटो, ऐसे चीजें, ऐसे चैट न डालें जिनके कारण कि समाज में हमको बदनामी उठानी पड़े या हमको लगे कि ये इसका रास्ता एकमात्र मेरे पास यही बचा है कि मैं सुसाइड करूं। खासतौर से फीमेल में बहुत सारे केसेज ऐसे आए कि उनकी ऐसे पिक्चर, ऐसी चीजें जो है कि सोशल मीडिया पर आ गई या उनके फोटो वायरल हुए, उनके चैट वायरल हुए, जिसके कारण कि सुसाइड, बहुत सारे गर्ल्स स्टूडेंट ने इसीलिए सुसाइड कर लिया। तो सोशल मीडिया का प्रयोग खास तौर से किशोर बहुत सावधानी से करें, और उस पर कोई ऐसी चीज न करें, कोई ऐसी चीज न डालें जिनसे कि उनको आगे चल करके शर्मिंदा होना पड़े और परिवार को शर्मिंदा होना पड़े, जिसके कारण वो आगे चल करके आत्महत्या जैसे कदम को उठाएं।
1: तो श्रोताओं, देखें, आज हमारे साथ थे डॉक्टर आनंद कुमार श्रीवास्तव, आप असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान के हैं, और आपने खास करके युवा पीढ़ी को संकेत करते हुए इन्होंने कई ऐसी बातें बताई जिससे कि हम सभी बच करके अपने जीवन को एक नया रूप दे सकते हैं। और आज के मौके पर जबकि पूरा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मना रहा है, आज हमने इन्हीं सब बातों पे बातचीत की। उम्मीद है कि आज के बातचीत से हमारे सभी श्रोताओं को लाभ पहुंचेगा। और डॉक्टर साहब, आपने आकाशवाणी के लिए इतना अच्छा बातचीत किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: नंदू भैया,
2: जलेबी भौजी,
1: देखा बात बात कहीं सुनल गेल और यह सीख मिलल कि मन के हारे हार है,
2: मन के जीते जीत।
1: और एक हौसला के साथ समस्या से लड़े के जब जुनून बा, तहर जिंदगी तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी गुलजार रही।
2: बिल्कुल रही, और इतना बढ़िया जानकारी देले। लेकिन देखें, जब जानकारी के क्रम भइल तो देखें मन फेर के भी क्रम होए के चाहिए, ताकि मन अपन भी बढ़िया हो जाए, बाहर निकले। तो अमर इंद्रासन कुमार और उनके संघाती लोगन के एगो दादरा से पंचायती आगे बढ़े।
1: बिल्कुल,

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: जलेबी भौजी।
3: हाँ नंदू भैया।
2: देखे ये रहला इंद्रासन कुमार वो साथी रहला आ कई तरह से अपन गीत गौने के माध्यम से भी बहुत कुछ कह गई गांव और शहर के वर्णन कैले, इनका भी दिल जाए धन्यवाद।
3: और सबसे बड़ा बात कि मन मनसायन में भी देखा एक संदेश छुपल है कि स्वच्छता हमार नैतिक दायित्व है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: और देखा आपके जान के ये बात बड़ा खुशी हुई कि जौन हमरे यहाँ स्वच्छता अभियान चल रहल बा ओमे जौन सफाई कर्मी रहलन हा उ लोगन कहीं ना कहीं आपन पहचान बतावे में हिचकत रहलन। अब उन लोगन के नाम सफाई कर्मी से हटा के स्वच्छता मित्र कर दिया गया।
2: बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी लोगन के पंचायत कर्मी के नाम से भी कुछ जानल जात रहल है तो कहीं ना कहीं रहल। और देखे भौजी जब अपन पंचायती लगल बा तो किसान भैया लोगन के भी जब बात शामिल न हुई तो बात न बनी,
3: अधूरा रही।
2: बिल्कुल बिल्कुल। कहे से कि देखे कहल गल ना कि जौन किसान भैया लोग देखे जैसे कुछ चिंता उनके होत रहला कि भैया हो लागत बहुत ज्यादा खेती में लगत बा लेकिन जौन बा जौन पैदा होत बा वो कम होत बा तो कैसे कर सामंजस्य बैठावल जाए कि जौन बा लागत कम लगे और आप मुनाफा भी हमके होए।
3: आप एकरे खातिर देखा पहले तो हम लोगन के कृषि विविधीकरण सब फसली खेती के जौन जागरूकता बढ़ल ओकरे साथ साथ जवन श्री अन्न के बात हो रहल बा मतलब मोटा अनाज तो देखा हम जौने अंचल में है ना वहाँ बहुत सारा ऐसा क्षेत्र बा जहाँ वर्षा आधारित खेती होला पानी के अपन व्यवस्था ना बा तो ऐसने में बहुत लोग अपन खेत छोड़ देते रहलन कि पानी बरसबे ना करी तो का करी।
2: बिल्कुल बिल्कुल। और देखे यही से कह लेना कि प्राकृतिक खेती जौन बा बिल्कुल बिल्कुल प्राकृतिक खेती जौन बा उ एक तो पर्यावरण के अनुकूल बा और कृषि पद्धति में ये बहुत अच्छा बा। पहले जौन बा सब ऐसन जौन बा खेती होखे जेकरा में कि अपन हल बैल से जुताई होखे जैविक खाद लगे और कौनो भी रसायन के बात ना होत रहे तो आज जौन इतना लागत लगत बा उ देखे इहे सब में लगत बा कि अपन अलग से कुछ न कुछ करे के पड़त बा जौन भी खेती में बात बा उ पैसा दिहल जात बा तो ओकरा से रसायन मुक्त अगर होए के बा अपन माटी के जौन बा अब बढ़िया करे के बा तो प्राकृतिक खेती की ओर हम लोगन के आवे के पड़ी।
3: और एकरे खातिर जरूरी बा कि जौन हमार प्रधानमंत्री जी मोटा अनाज के बढ़ावा देत हमन सब फसली खेती के रूप में अगर हम मोटा अनाज के अपनाई ओकर खेती बढ़ाई अपन जैसन के हमार क्षेत्र बा कोदो सावा मकई ए तरह के जौन मोटा अनाज बा बजरी ज्वार ए सब में देखा पानी की जरूरत कम पड़ेला देख रेख के जरूरत कम पड़ेला और पैदावार अगर अच्छा हुई तो देखा आज जौने गति से मोटा अनाज के प्रति लोगन के जागरूकता बढ़त बा तो कहीं ना कहीं किसान के भी मुनाफा हुई तो हमार खेती ए क्षेत्र में भी लगे के चाहिए।
2: आपके कहानी सही बा और मोटा अनाज के तरफ बढ़ल भी जरूरी बा कैसे कि स्वास्थ्य के लिए भी जौन बा मोटा अनाज एक बढ़िया उपाय बा और पहले भी मोटा अनाज के इस्तेमाल होत रहे तो बहुत कम बीमारी देखे के मिलत रहे लेकिन मोटा अनाज जैसे ही अपन थाली से निकलल वैसे ही बीमारियन के प्रकोप बढ़ल चलल जात बा तो डॉक्टर भी अभी अपन भैया सहेजल है कि मोटा अनाज के तरफ हर लोगन के बढ़े के चाहिए। और ओकरे साथे साथे जौन बा उ तो कहल ना कि एक गुण खेती दो गुण गाय जे न देखे ओकर जाए तो कहीं न कहीं अपन किसान भैया लोगन के जौन दोरा के सिंगार कहल जाला कि एक गाय अगर एक मुड़ अगर ना बा एक मुड़ बैल ना बा तो भैया वो खेती बारी में बिल्कुल अधूरा हो। काहे से कि जौन भी खेती के तकनीक उनके बा वो पूरा के पूरा जोन बा अपन खेती बाड़ी में गाय के मुतारी से हो गईल, चाहे गोबर से हो गईल, दूध उनके मिली, मतलब हर तरह की चीज उनके अपन उपलब्ध हुई जो उनकी खेती बाड़ी में भी काम आई, चार पैसा के भी काम आई। तो हर किसान भैया लोगन के अपन एकरे तरफ बढ़े के चाहिए और एकरा से पर्यावरण के संतुलन भी सही से बनल रहला। लेकिन भौजी देखें बातचीत तो होते रही, आवें जानकारी क्रम के ओर बढ़ल जाओ, कैसे कि परंपरागत मोटे अनाजों की सफसली खेती के का अनुभव बापन गणेश लाल खरवार भैया के, जो आदिवासी कृषक हव, जगत नारायण भैया से बात कही बा, आवाज सुनल जाए।
3: अच्छा,
4: किसान भाइयों बहनों, इस समय प्राकृतिक खेती के लिए चारों तरफ जागरूकता फैलाई जा रही है कि किस प्रकार हम जो है कि अपने स्वस्थ रहें, धरती हमारा स्वस्थ रहे और पर्यावरण भी स्वस्थ रहे,

0: सावा बोए हैं, मेड़ो बोए हैं, उड़द बोए हैं, तिली भी है,
1: मेड़ो बोया है,
0: हाँ बोया है, धान भी है,
1: हाँ हाँ अच्छा,
0: अरहर भी है उसी में, सब फसली करी है।
1: जी जी जी जी, तो ये सब अच्छा चल रहा है इसमें?
0: चल रहा है, जो चल रहा है सो चल रहा है। हम लोग उसमें रासायनिक खाद नहीं डालते हैं, अपना पुरानी खाद जो है गोबर वोबर के व्यवस्था में रहते हैं, दूसरा खाद नहीं डालते हैं। धान ओन है उसमें तो देना ही पड़ता है।
1: अच्छा अच्छा भाई, वही हाँ, प्रजाति के धाने है,
0: धाने है बिना खादे वाला में, 2 बीघा के लगभग धान है उसमें, अभी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है।
1: जी जी जी जी,
0: और पानी की सिंचाई नहीं है, वो ऊपर की व्यवस्था से हम लोगों का पानी जो है मिलता रहता है, खाने भर का हो जाता है वो भी।
1: जी जी जी, तो ये मोटा अनाज में से ये सब जो आपके लिए हमारे सामान को दो मेड़ो मिझड़ी वाला
0: है,
1: तो मैं तिली भी आप बतौल,
0: हाँ तिली अरहर भी, अरहर भी, भी,
1: भी सावा और अरहर के सह फसली जो खेती के लिए हम,
0: हाँ
1: तो ओके देख रेख कैसे करते हैं
0: उसको? देख रेख बस शाम सुबेरे रोज देख रेख कर रहे हैं,
1: जैसे वो सावा में अब ये समय तो सावा कटे के बखत आ गए,
0: हाँ आ गया कटने,
1: और रहरो जो बाकी छोटाने छोटाने
0: है, सावा काट लेंगे, सावा
1: काटेगा, सावा काटने लगे तो रहरिया नहीं कटाई,
0: नहीं कटाएगा उसको, देख के काटेंगे ना,
1: बराबर काटे
0: बराबर के,
1: हाँ हाँ, और जो है कि सावा के डंठल नीचे हो जाए और अरहर के ऊपर चढ़ जाए,
0: ऊपर चढ़ जाएगा।
1: अच्छा, तो सावा के खेत में अरहर बढ़िया होता है?
0: हाँ होता है,
1: अच्छा,
0: और मेड़ो का भी खेत में भी सावा है,
1: तो मेड़ो में कैसे कैसे करते हैं?
0: मेड़ो का भी जैसे सावा है वैसे मेड़ो का भी करते हैं,
1: हाँ,
0: जैसे वो कटाई मेड़ो का होगा सावा के होगा उसी तरह से मेड़ो का भी कटाई,
1: संगे संगे मेड़ो का
0: नहीं, रहरिया ना कटाई,
1: नहीं नहीं संगे संगे मेड़ो कटाई
0: नहीं कटाएगा, वो बाद में कटेगा,
1: बाद में कटेगा।
0: सावा जो है इस समय जो सावा कटने की तैयारी में है, मेड़ो जो है 1 महीना के बाद में होगा।
1: जी जी, अब बोया संगी है?
0: बोया तो संगी है, उनके वैरायटी अलग अलग है ना,
1: संगे जैसे तो झुक न जाला,
0: झुक जाला बाकी है बड़े बड़े बाग।
1: तो अच्छा, तो ये मेड़ो के कैसे वो में देख रेख करते हैं? कुछ नहीं, वैसा
0: कुछ नहीं,
1: जैसे सावा तैसे वो
0: भी है।
1: अच्छा, एक जो बाकी जब दवे होला,
0: दावे के लिए बैल से दवाया जाता है,
1: बैल से दवाएगा,
0: खलिहान बना कर
1: काट करके ओके
0: इकट्ठा करेंगे,
1: इकट्ठा करके ओके
0: खलिहान में,
1: गर्मई है
0: नहीं नहीं
1: घुमसई है ना,
0: कुछ नहीं, उसको खेते में काट के छोड़ेंगे बस, जब दवाई के शुरू होगा लिपो खलिहान और उसको बोझा बांध के रखो, बैल से दा दो।
1: अच्छा,
0: हाँ हवा ना रहे, हवा रहे चाहे सुपा से धो करके घर में ले आओ।
1: अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा अच्छा, बहुत लोग गांच जब लगाते हैं,
0: हाँ वो खराब होता है, खराब हो जाता है।
1: अच्छा, खराब हो जाएगा,
0: हाँ क्योंकि
1: गमक जाएगा,
0: गमक जाएगा, और उसे छतवे में काट के सूखा रहेगा, जब डंठल सूख जाएगा बस रस्सी से बांधिए, बस जिस दिन दाने का होगा उस दिन आप धो करके इकट्ठा करके बस बैल से रंगवा दीजिए।
1: अच्छा अच्छा, तो ओके छुड़ाने में टाइम लगा?
0: नहीं, 2 घंटा 4 घंटा में 3-4 बार पलटो अखैन से एकदम सही हो जाता है। बस पुआल इधर रखो, दाना वसा करके घर ले जाइए।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: पुअलवा का होला?
0: पुअलवा गाय बैल खाला,
1: हाँ गर्मी के मौसम में,
0: गर्मी के मौसम कौन मौसम में।
1: अच्छा, और अनाज की कैसे करे?
0: अनाज के उसको लिया के कुठला उठला में रख देते हैं, नहीं रख देते हैं, खाने भर का रहता है खाते हैं, नहीं बिकने रहता है तो खाने भर का हो ही जाता है, ज्यादा तो बिकने भर का हम लोगों के पास होता नहीं है।
1: खराब नहीं होता है?
0: नहीं होता है,
1: इसे ढेर दिन रखे हो गए
0: कुछ नहीं होगा, साल भर रख दीजिए कोई बात नहीं, और उसमें विटामिन ए बी सी डी आ जाएगी।
1: अरे का बात है
0: कि नहीं है,
1: तो हमें जो बाकी मतलब और फायदेमंद हो,
0: रोटी भी खाइए चाहे उसके चावल भी बना के खाइए।
1: आप पुराना आदमी है, पहलवा लोगन के जब वो है पेट वेट खराब है ना,
0: हाँ।
1: तो सवा के रोटी साझी खा जाए,
0: हाँ,
1: तो 1-1 घंटा में ठीक, ऐसा सही बात
0: है
1: ना?
0: सही बात है,
1: आजो
0: आज भी है,
1: हाँ
0: हाँ, तो सुई दवा के कोई मतलब नहीं है।
1: अच्छा अच्छा,
0: हाँ अभी आधा बीघा में बादाम भी है।
1: अरे बाप,
0: हाँ
1: हाँ, मतलब आप सब आनंद ले बैठले बैठा,
0: बैठले बैठल का ही नहीं ली,
1: हाँ
0: हाँ, ज्यादा नहीं होगा आधा बीघा में है,
1: तो वो बादाम वाला कैसे जुगाड़ होला?
0: बादाम वाला बस उसमें मकई के समय बोआता है, और उसमें तो अलगे रहेगा क्योंकि मका सका रहेगा, धंगा जाएगा, उसके लिए कूड़ी भी मरना पड़ता है, हाँ मरा गया है,
1: कूड़ी ना मरा तो
0: ना हुई तो बैठबे ना करी का ना,
1: हाँ
0: हाँ।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
0: सब बाजारे कौन जाई लेवे इतना महंगा, अपने घर में पैदा होता तो कहाँ जाई लेवे,
1: तो मतलब कोड़ी मार करके थलो बना ला,
0: हाँ हाँ बस उसके पेड़वा के नीचे थला बनाया जाता,
1: अच्छा,
0: है
1: अच्छा,
0: तब उसमें बैठता है खाना,
1: तब बैठता है,
0: हाँ।
1: और कोड़े कैसे हुई
0: ना, कोड़ाई तो बैठबे ना करी,
1: मैंने बाद में

0: पक जाएगी।
1: पक जाए तो ओके, बस खुरपी निकालो, गायता निकालो, फरसा निकालो, निकाल निकाल के ले चलो घर में।
0: कैसे पहचान करें कि हमारी पक गिल हो?
1: पक गई बा, खुद बताई।
0: से हम लोग सीख रहे हैं आपसे, तो भाई हम लोग तो जाना कि हमें दिखाए लागल नीचे गोल गोल, तो उखाड़ ले पहले।
1: नहीं नहीं वैसा नहीं है, बकरे पकेगा तो उसका पेड़ बताएगा कि मैं
0: अच्छा,
1: पका।
0: अच्छा अच्छा, मतलब ये है कि जब ये
1: तैयार हो गया,
0: पतई पकड़ा जाए,
1: हाँ हाँ,
0: तब जाने की जोहन बाकी हमें
1: हो गया, उसको निकालो, गाय बैल खाएंगे।
0: अच्छा,
1: पतइये
0: पतैया,
1: हाँ गाय बैल है, नहीं तो खादे बन जाएगा, खेतवे में रहेगा। हाँ, खाने हाँ, वाले हैं जानवर है तो खा लेंगे।
0: हाँ,
1: उसके बाद काना को ले जाके सुखवा दो, चाहे कुछ करो, खाते रहो।
0: अच्छा अच्छा, तो मतलब ये तरीके से जो बाकी
1: हम लोगों का खेती भी है, खेती है, और उड़द के भी है, तिली के भी है। तिली तो है लेकिन तिली उतना नहीं है, है लेकिन बो दिए गया।
0: अच्छा,
1: है
0: ये बताइए, तिली में एक आकाश बावर लगा,
1: आकाश बावर लगता है?
0: हाँ
1: है, हाँ आकाश बावर है, उसमें नमक नहीं डालेंगे, वो जहाँ फैल जाता है पूरे तिली को जला देता है।
0: काम नमक डालेंगे
1: उसी में खेतवे में छिट दीजिए,
0: पौधों ने गली
1: नहीं गलेगा, नहीं गलता है वो, खाली वही गलेगा।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: आकाश बावर,
1: आकाश बावर
0: तो कैसे,
1: एकदम
0: तो कैसे छिटेंगे?
1: बस हम मार दीजिए मुठे मुठा, हाथे हाथे, जैसे
0: जैसे खाद छींटते हैं,
1: खाद छींटते हैं, जितने पेड़ लगा है वो एकदम भस्म हो जाएगा, तिली आपका सही रहेगा, रहर तिली।
0: मतलब जहाँ आकाश बावर लगा है,
1: हाँ हाँ,
0: उसी जगह पे मैंने आकाश बावर के ऊपर,
1: हाँ छिटना है,
0: नमक छिड़क दीजिए।
1: हाँ छिड़क दीजिए, ज्यादा
0: खत्म हो जाएगा।
1: जैसे पूरा खेत में हो गया है,
0: हाँ, हाँ,
1: तब एकदम जैसे बोते हैं वैसे ही बो दीजिए।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: आकाश बावर खत्म हो जाएगा,
1: खत्म हो जाएगा, उसका दवाई नमके है,
0: और कुछ जुगत
1: नहीं, और दूसरा नहीं है, नहीं तो और खेतों को सारी खेत रहर भी खराब कर देता है।
0: हाँ
1: हाँ वो आकाश बावरवा,
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: वो फल फूलने आएगा उस समय, वो लपट जाएगा, फल फूल नहीं लगता है।
0: हाँ,
1: ये खेती हम लोगों का
0: तो
1: है।
0: बहुत बढ़िया अनुभव के बात आप बता रहे हैं, यही से बड़े बुजुर्ग के जन बाकी कहें लोग कि अगर कहूँ जाए के हो
1: और का?
0: तो बुजुर्ग के बल्कि बक्सा में बांध करके ले जाए,
1: ये बाकी
0: तो कहीं ज्ञान सीखे तो जन बाकी।
1: हाँ महुआ का भी पेड़ है, महुआ का भी लटा भी बनता है, उससे मिला के खाओ और मजा आता है।
0: तो लटा बनता है?
1: हाँ बिल्कुल बनता है, लेकिन आज के युग में तो नहीं बनाते, हम लोग के युग में बन रहा था।
0: अरे तो कर जो बाकी चना में मिला करके,
1: हाँ एकदम मस्त होता है,
0: चना भून करके,
1: हाँ,
0: महुआ भून करके,
1: भून के खाइए,
0: जवन ताकत हो कि जो बाकी बैल का पूरी है, रहर खींचा जाए।
1: तब ये है कि हम लोगों का ही परम्परागत,
0: तो ये तो बहुत बढ़िया है, तो परम्परागत खेती के बारे में आप बता रहे हैं, सबसे सुन करके मतलब इच्छा तो होता हो कि मैंने यह खेती से आज जरूरत हो,
1: जागरूकता है।
0: हाँ।
1: हाँ।
0: अच्छा, आजकल सुन ले रहे हैं आपकी खाद खातिर बड़ा मारामारी होता है।
1: मारामारी हो रहा है, बाकी हम लोगों के पास खाद देने लायक जगह नहीं है।
0: हाँ,
1: है कि नहीं है?
0: पूरा जब गोबरे खाद है,
1: हाँ, तब ऐसा है जब खाद वहाँ दिया जाता है जहाँ आप धान पान किए हैं वहाँ पे खाद दिया जाता
0: बिल्कुल,
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मोटा अनाज में ना।
1: हाँ मोटा अनाज में सही बिक दीजिए, जोतिए, घास पतेरा निकल जाए, देख रहे हैं मक्का कितना दिखाई दे रहा है,
0: सुंदर है।
1: हाँ इसमें कोई खाद डाला गया है? कुछ नहीं डाला गया। अरे 10 दिन के बाद ये टूटना शुरू हो जाएगा।
0: बकरी भी रखते हैं का?
1: हाँ बकरी भी है,
0: ओकर लेड़ियो डालते होंगे?
1: हाँ लेड़ियो डला, गाय भी बकरी के सब लेड़ी डलाता है उसी खेत।
0: ये दोनों के खाद में का अंतर बुझाला, गाय वाला में और बकरी वाला?
1: बकरी वाला में बहुत अच्छा है, गायों में सबके फायदे हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: हाँ दोनों में।
0: तो बिल्कुल प्रकृति पर निर्भर गणेश लाल खरवार जी के खान पान, रहन सहन और खेती किसानी, इतना अच्छा आप बातचीत किए, आप मेरपुर ब्लॉक के रनटोला के निवासी हैं, इतनी अच्छी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जलेबी भौजी,
3: हाँ नंदू भैया,
2: देखा इनकर भी जानकारी सुनल गए, इनके भी धन्यवाद दिल जाए, लेकिन देखा दी तोरे हाथ में जो उन बा पाती भी लग गई,
3: जानकारी के ही बाती भाई, और पाती है अपन बाबूलाल मौर्य भैया के रापटगंज मंडी से बाजार।
2: बिल्कुल बिल्कुल, तो बाज द
3: तो देखा, सबसे पहले तो ये जान ले हल जाए कि वहाँ के भाव कुंटल में होला, आलू लाल वाला 1100 से 1200, आलू सफेद 900 से 1000, प्याज बा 4000 से 4500, लहसुन बा 1200 से 1400, अदरक बा 7000 से 8000, हरी मिर्च 2200 से 2500, टमाटर 2500 से 3000, भिंडी 1500 से 1800, करेला 3200 से 3500, लौकी 1800 से 2000, कोहड़ा 1200 से 1500, नेनुआ 2800 से 3000, सूरन 5000 से 6000, कुंदरू 2000 से 2200। भैया देखो फूल गोभी 2500 से 3000 रुपया प्रति सैकड़ा, पत्ता गोभी 2200 रुपया से 2500 रुपया प्रति सैकड़ा, और नेबुआ देखो भैया एकदम से हीरा हो गल 600 से 700 रुपया प्रति सैकड़ा, ई रहल है बाजार भाव।
2: तो भैया के भी दिहल जाए धन्यवाद, और घड़ी के इशारा बा कि अब अपन पंचायती ही समेटल जाए, और ओकरे साथ साथ ओकरे साथ साथ देखें जौन बा अल्पसंख्यक के रोजगार में सहायक सीखो और कमाओ योजना जौन बा ए पर भी भैया लोग अपन ध्यान देवे और ऐसे जौन बा अपन लाभ उठावे।
3: भैया देखो कोनो भी इंसान जैसन हम लोग निराशा के बात करत रह लीजा, अगर करके सीखो और करके कमाओ, जिंदगी कभी उदासीन न हुई, यही संकल्प के साथ अपन बैठ के आज समय
2: समेटल जाए तो चलल जाए तो सब पंचन के राम राम, राम।

0: अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत 102.7 FM पर। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:50 होने को है। अब आप सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: पंचो जय हिंद। ज्योति बहनी।
1: हाँ रामजीत भैया।
0: देखो हम पंच खेती पाती तो करबे करी थे और यह खेती पाती में हम पंच बहुत मेहनत लगाए के करी थे और कौदा ऐसा न होते कि फसल अपन बहुत बढ़िया हो जाता है तो वही के रख रखाव होता है जितना प्रयास हो सके थे हम पंच वही का करी थे।
1: देखो भैया सही कह रहे हो, कई कई बार हम लोग फसल उपजा ले थे मगर हमरे किसान पंच के पास इतनी जगह नहीं होते फसल रखे के ताकि हम अपन फसल सुरक्षित रख सकी।
0: बिल्कुल बहनी ठीक कहती हो, यही बदे तो आपन जौन सरकार है वो बहुत सचेत है और यही की ताए बहुत बढ़िया योजना बनाए है और वही योजना का नाम है कृषि आधारभूत फंड और यही के तहत तमाम तरह के सुविधा जौन है हम पंचन का दीन जात है।
1: सही कह भैया। देखो ने गांव में है या पंचायत है उमा अगर एपीओ है या किसानन का संगठन है वही सब जो है ई योजना का लाभ ले सकते हैं। और भैया देखो इसे जो है अपन फसल वहां रख के सुरक्षित कर सकते हैं और आगे जब उसका दाम बढ़े तो बढ़िया से बेच सकते हैं।
0: बिल्कुल बहनी और यही माँ जो हम पंच बनाए सकी थे वही माँ है कोल्ड स्टोरेज गोदाम पैकेजिंग इकाई छटनी के इकाई और रेफ्रिजरेटेड वैन ई सब चीजन में हम अपन फसल बढ़िया तना रख सकी थे।
1: सही कह रामजीत भैया। अब किसान जो है सिर्फ फसल उपजावे तक ना सीमित रही बल्कि उसका उचित लाभ ले सकी।
0: बिल्कुल जब आपन फसल जौन है खराब न हुई तो धीरे धीरे वो आपन फसल जौन है वो बाजार में सही समय पर ले आई तो वही के दामो बढ़िया मिली। तो बहनी ये जौन चीजें नई नई होती हैं यही का हम पंच जानित है आज की खबरें में।
2: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों की भागीदारी बढ़ाकर कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने के लिए कार्य योजना की समीक्षा की है। नई दिल्ली में हुई बैठक में मार्च 2027 तक प्राथमिकता वाले 300 कृषि विज्ञान केंद्रों के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के उन्नयन पर जोर दिया गया। इसके साथ ही दिसंबर 2028 तक सभी कृषि विज्ञान केंद्र में इंक्यूबेशन सह कौशल केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन केंद्रों के माध्यम से किसानों और ग्रामीण युवाओं को कृषि आधारित उद्यम नई तकनीक कौशल और नवाचार से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बैठक में केवी के कर्मचारियों की सुविधाओं समय पर धनराशि उपलब्ध कराने पर्याप्त मानव संसाधन और राज्यों के सहयोग पर भी चर्चा हुई। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मजबूत केंद्र राज्य समन्वय आधुनिक बुनियादी ढांचे और प्रभावी कार्य योजनाओं के जरिए कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों तक वैज्ञानिक जानकारी और आधुनिक कृषि तकनीक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बनाया जाएगा।
1: देखो अब रबी फसल आवे वाली है तो किसान पंच बिल्कुल तैयारी में है सब्जियां उगा ली जाए ताकि अच्छा दाम मिल जाए।
0: बिल्कुल तो यही बदे देखो आज की बात में लायन है रबी में सब्जी उत्पादन जही के जानकारी दे रही है प्रज्ञा उपाध्याय बहनी।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, रबी में सब्जी उत्पादन कैसे करें इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं जिला उद्यान अधिकारी बाराबंकी प्रज्ञा उपाध्याय जी। स्वागत है कार्यक्रम में। प्रज्ञा जी ये बताएं कि रबी में जहां सब्जी उत्पादन करना चाहते हैं किसान भाई बहन तो क्या सलाह है आपकी?
4: नमस्कार किसान भाई बहनों, रबी का सीजन सब्जियों का सीजन है। रबी के सीजन में आप बहुत सारी सब्जियों की खेती कर सकते हैं जैसे कि आलू है, मटर है, टमाटर है, मिर्च है, शिमला मिर्च है, पालक, मेथी, धनिया, मूली है, गाजर है, तो बहुत सारी सब्जियां हैं जो आप रबी के सीजन में आप उसका उत्पादन कर सकते हैं।
3: तो दो तरह की स्थितियां, कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनकी नर्सरी पड़ती है, कुछ की सीधी बुआई होती है, तो कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है बुआई या नर्सरी में साथ साथ रोपाई में?
4: जब किसान भाई हमारे सब्जी का उत्पादन करे तो सबसे पहले दो तीन बातों का ध्यान रखे।
3: जैसे
4: कि सबसे पहले वो मृदा का परीक्षण करा ले, उसके बाद मृदा को शोधित कर ले, और जब वो बीज का चुनाव करे तो वो अपने जलवायु के हिसाब से और बाजार के डिमांड के हिसाब से बीज का चुनाव करे, और बीज आप उनका रोग रोधी हो, सहनशील हो, कीट रोधी हो, तो ये दो तीन बातों का किसान भाई बहुत ध्यान रखे जिससे उनको उत्पादन अच्छा प्राप्त होगा।
3: जहाँ नर्सरी तैयार है वहाँ खेत में रोपाई करनी है, लेकिन जहाँ रबी सब्जियों की सीधी बुआई करनी है तो वहाँ कौन सी खास बातें हैं?
4: कि जैसे पहले वो मिट्टी को पूरी तरह वो भुरभुरा बना ले, उसके बाद इसमें सड़ी गली गोबर की खाद का प्रयोग करे। जैसे कि यदि प्रति एकड़ के हिसाब से देखा जाए तो उसमें वो 10 से 12 टन तक का सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं,
3: यानी 100 से 125 क्विंटल।
4: जी जी। और उसके बाद उसमें वो 60 से 100 किलोग्राम नीम की खली का प्रयोग करें, एवं साथ में एक मित्र फफूद है ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा पाउडर का भी प्रयोग करें, जिससे कि जो भी हमारे मिट्टी जनित रोग है वो नहीं पनप पाएंगे मिट्टी में।
3: यानी भूमि शोधन जरूर करें ट्राइकोडर्मा से जहां भी रबी सब्जियां उगाने जा रहे हैं।
4: जी। किसान भाइयों को मैं ये सलाह दूंगी कि रसायन का कम प्रयोग करें, फिर भी थोड़ी बहुत मात्रा में मूलभूत में कुछ प्रयोग जैसे कि वो एनपीके का करते हैं तो उसको वो कर सकते हैं। जैसे कि यदि वो टमाटर की खेती कर रहे हैं, मिर्च की खेती, शिमला मिर्च की कर रहे हैं, तो इसमें वो जो खाद का प्रयोग करे वो 48-20-20 केजी के अनुपात में एनपीके का प्रयोग करे।
3: यानी 48 किलो नाइट्रोजन की मात्रा, 20 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटास प्रति एकड़ तत्व के रूप में।
4: जी हाँ। लेकिन इसमें भी एक तरीका होता है खाद डालने का मिट्टी में। जैसे कि जब वो बुआई करते हैं तो वो फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा वो मिट्टी में मिला दे और नाइट्रोजन को वो दो भागों में बांट ले। आधी मात्रा नाइट्रोजन वो बुआई से पहले ही डाल दे और शेष जो आधी मात्रा बचती है नाइट्रोजन की उसको भी दो भागों में वो बांट ले। इसमें कि आधी मात्रा जो नाइट्रोजन की होती है वो बुआई के 30 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे दे और फिर 45 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप
3: यानी
4: में।
3: एक चौथाई, एक चौथाई।
4: जी जी हाँ।
3: डॉक्टर साहब, रबी सब्जियों की बात चल रही है, उनके उत्पादन तकनीक की बात चल रही है, तो बीज की मात्रा प्रति एकड़ कितना लगेगी, जहाँ नर्सरी डालनी है या सीधी बुआई करनी है, और रोपाई या बुआई का अंतरण क्या होगा जैसे टमाटर मिर्च शिमला मिर्च गोभी वर्गी सब्जियों में?
4: जी जी, हर फसल का अलग अलग होता है। जैसे कुछ फसल देखिए, हमारे जो टमाटर है, शिमला मिर्च है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, इनकी हम नर्सरी तैयार करके फिर इसके खेत में रोपाई करते हैं। और कुछ हमारे जैसे कि बीज है, पालक है, मेथी है, धनिया है, मटर, मूली, गाजर आदि है, इनको हम सीधे खेत में छिटकवा विधि या लाइन से लाइन में तैयार करके इनको हम खेत में सीधे करते हैं।
3: प्रज्ञा जी, जहाँ गोभी वर्गी सब्जियों की नर्सरी तैयार है तो रोपाई का अंतरण क्या होगा?
4: अब जैसे कि यदि किसान भाई हमारे अपने खेत में फूल गोभी पत्ता गोभी लगा रहे हैं तो उसमें लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। उसी तरह यदि वो टमाटर मिर्च शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 50 सेंटीमीटर की रखें और पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर तक की रखें।
3: और जहाँ पालक मेथी धनिया लगाने जा रहे हैं तो वहाँ अंतरण क्या होगा बुआई का?
4: पालक मेथी धनिया आदि में किसान भाई लाइन से लाइन की दूरी 40 सेंटीमीटर रखेंगे और पौध से पौध की दूरी 15 सेंटीमीटर। उसी तरह वो मूली और गाजर में भी वो लाइन से लाइन की दूरी वो 40 सेंटीमीटर की रखें और पौध से पौध की दूरी 15 सेंटीमीटर तक की रखें।
3: और आलू में?
4: आलू में वो किसान भाई हमारे लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें और पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर तक रखें।
3: और सब्जी मटर?
4: सब्जी मटर में भी लाइन से लाइन तक की दूरी 50 सेंटीमीटर तक रखें और पौध से पौध की दूरी वो 20 से 25 सेंटीमीटर तक रखें।
3: प्रज्ञा जी, उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं जो किसान भाई बहन चुने ताकि पैदावार उनको अधिक से अधिक मिले, बाजार भाव अच्छा मिले?
4: तो हर फसलों में कुछ विशेष विशेष प्रजातियां हैं जिसका वो ख्याल रखे। जैसे कि हमारी मटर है तो मटर में हमारी एक वैरायटी है अर्किल वैरायटी है, एक IIVR की एक वैरायटी है काशी मुक्ति है, काशी उदय है, काशी नंदनी है और एक इस समय बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है जो अर्ली वैरायटी है
3: काशी अगेती
4: है,
3: जिसकी बुआई जल्दी कर सकते।
4: जिसकी बुआई वो किसान भाई इस समय वो कर सकते हैं तो इसका प्रयोग करें और इसका अच्छा रिजल्ट आएगा।
3: और आजाद पीथरी भी है,
4: ये भी अर्ली वैरायटी है।
3: और आलू में?
4: और आलू में तो बहुत सारी वैरायटियां हैं, कुफरी चिपसोना है, पुखराज है, सूर्या है, ख्याति है, सिंदूरी है। तो किसान भाई को यही कहना चाहूंगी किसान भाइयों से कि वो अपने जनपद के क्लाइमेट के हिसाब से आलू के प्रजातियों का चयन करें।
3: और गोभी वर्गीय सब्जियों में?
4: गोभी में भी बहुत से अच्छी वैरायटियां आई हैं, जैसे कि एक पंतनगर की वैरायटी है पंत शुभ्रा है, एक पूसा करनाल की वैरायटी है पूसा स्नोबॉल है, दीपाली है, समर किंग है।
3: और पत्ता गोभी?
4: पत्ते गोभी में भी जो है पूसा ड्रम हेड है, पूसा मुक्ता है, प्राइड ऑफ इंडिया है, तो ये वेराइटियाँ अच्छी हैं जो अच्छा रिस्पांस दे रही हैं और किसान भाई इसका प्रयोग कर सकते हैं।
3: और मूली जहाँ लगाना चाहते हैं किसान भाई?
4: जी हाँ, मूली भी बहुत अच्छी प्रजातियाँ आई हुई हैं, जैसे कि काशी श्वेता है, काशी हंस है, काशी मूली है, ये हमारी वाराणसी की वेराइटी है तो बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है।
3: गाजर में?
4: गाजर में भी अच्छा वेराइटी है, एक वाराणसी की अच्छी वेराइटी आई है, काशी कृष्णा है, और एक पूसा करनाल की वेराइटी है, पूसा केसर है, जिसको किसान भाई गाजर के खेती में प्रयोग कर सकते हैं।
3: पालक की कौन कौन सी प्रजातियां अच्छी हैं?
4: पालक की प्रजाति में हमारे किसान भाई ऑल ग्रीन का तो पहले से ही प्रयोग कर रहे हैं, एक हमारी वाराणसी की एक नई वेराइटी आई है काशी ज्योति, इसका प्रयोग करें, इसका भी अच्छा उनको रिजल्ट मिलेगा जो है पालक की खेती में।
3: मेथी, धनिया, लहसुन, प्याज और शिमला मिर्च में?
4: मेथी में तो पूछा अर्ली बंचिंग है, जो बहुत ही हमारी पुरानी वैरायटी है, जो आज भी प्रचलित है, आज भी वो अच्छा रिजल्ट दे रही है, और एक कानपुर की वैरायटी है आजाद वन, उसका भी वो प्रयोग कर सकते हैं। धनिया है तो धनिया हमारा पंथ हरितमा है, जो पहले भी किसान भाई हमारे कर रहे थे और आज भी इसका अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो रहा है।
3: लहसुन और प्याज में?
4: लहसुन में जिसमें की G282 है और G3 है, और प्याज में आपका एग्रीफ्राउन लाइट रेड है, पूसा रेड है, कल्याणपुर लाल गोल है, अच्छा रिजल्ट दे रहा है।
3: चलते चलते किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे रबी में सब्जी उत्पादन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
4: जी हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9454334400, 9454334400, 9454334400।
3: प्रज्ञा उपाध्याय जी, आज आप कार्यक्रम में आई और रबी में सब्जी उत्पादन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: ज्योति बहनी।
7: हाँ रामजीत भैया।
6: देखो अपने पंचन का जानकारी तो खूब दवाई दियो, अब कुछ गीतों गवने सुनवाई दिन जाए।
7: बिल्कुल भैया, देखो लोक गीत के बिना हमारे जो है कार्यक्रम अधूरे रहा।
6: यही बदे रंजुल जयंत गौतम भैया की आवाज में सुन लीन जाए ई लोक गीत।

0: रामजीत भैया
1: हाँ ज्योति बहनी।
0: देखो, हम लोग जो है खेती किसानी करी थे, मगर ज्यादातर जो है दिमाग में यूं रहा था कि हम अपन रोजी रोटी कमा ले और हमारा घर परिवार चला करे।
1: बिल्कुल बहनी, मूल बहुत से किसान ऐसे हैं जे न सिर्फ कमात हैं बल्कि हम पंचन की तरह मिसाल बन जाते हैं। अब नहीं कि हम लाइत है आज के किसान में, आज के विषय है गन्ना और केला उत्पादन, जह पे जानकारी दे रहे हैं हिमांशु नाथ सिंह भैया।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ एक ऐसे नॉनमेसी किसान हैं, सीतापुर जनपद के बिसवा ब्लॉक के खंभापुरवा गांव के हिमांशु नाथ सिंह भैया, स्वागत है कार्यक्रम में। भैया, आप मिठास की फसल की खेती के लिए जाने जाते हैं, केला उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और खेती से जुड़ाव हुआ कब से?
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, मैंने बीकॉम एलएलबी किया हुआ है। मेरी शुरू से ही एक पिताजी को देखते हुए शौक था, खेती की तरफ रुझान था और उन्हीं को देखते करते ही मैंने सब सीखा। पिछले लगभग 15 साल से मैं पूरी तरह से किसानी में हूँ।
2: इस समय रकबा क्या क्या है?
3: केला का लगभग 8 एकड़ है और गन्ना लगभग 15।
2: मिठास की फसल से शुरुआत करें तो लगभग 15 एकड़ मिठास की फसल आपके पास है। शरदकालीन बुआई करते हैं या बसंतकालीन?
3: सारी शरदकालीन ही बुआई रहती है
2: पूरी
3: जी।
2: उसके साथ क्या सह फसली खेती भी करते हैं?
3: हाँ जी, सह फसली खेती भी करते हैं, सरसों और आलू की
2: साथ में
3: जी।
2: तो वैरायटी कौन कौन सी चुनते हैं शरदकालीन गन्ना में?
3: वैरायटी इस टाइम पे जो है मेरे पास 0118 है, 13235 है, 15023 है और 14201 है, और अभी हाल में ही जो नई रिलीज वैरायटी है वो 16202 और 18231।
2: यानी सभी लेटेस्ट वैरायटी आपके खेत में है
3: जी।
2: तो इन प्रजातियों की खासियत क्या महसूस कर रहे हैं आप अपने खेत पर?
3: प्रजातियां अच्छी चल रही हैं, उसमें से कुछ हिस्सा सीड के लिए भी मैं तैयार करता हूं, तो उन पर थोड़ा सा खास ध्यान रखा है, लेकिन ये प्रजातियां अच्छा रिस्पांस दे रही हैं और आगे चल के किसान भाइयों को फायदा ही होगा इनसे।
2: यानी बीज उत्पादन भी गन्ने का करते हैं?
3: हाँ जी, बीज
2: उत्पादन। कितना रकबा बीज उत्पादन का होता है?
3: बीज उत्पादन लगभग 5 से 6 एकड़ के लगभग रहता है।
2: और लेटेस्ट वैरायटी?
3: जी सारी लेटेस्ट वैरायटी का।
2: कुछ भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के ट्रायल्स भी आपके यहाँ लगते हैं?
3: हाँ कुछ लगते हैं।
2: जैसे?
3: जैसे अभी जो अंडर ट्रायल वैरायटी है वो कभी आती हैं, जिसके लिए साइंटिस्ट और वो आते हैं, अपना देखते हैं, स्टडी करते हैं, और बाकी जो रिलीज वैरायटी है उनको भी वो लोग स्टडी करते हैं, वो किस तरीके से
2: आपके खेत
3: मेरे प्लॉट पे क्या रिस्पॉन्स दे रही है, कैसे कर रही है।
2: शरदकालीन गन्ने की बुआई के पहले खेत की तैयारी से लेकर के और मिठास की फसल की कटाई तक कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं आप अपने खेत में?
3: जी सबसे महत्वपूर्ण काम तो ये रहता है कि खेत में हरी खाद बहुत जरूरी है लेते हैं, क्रॉप का रोटेशन बहुत जरूरी है, और जो अवशेष रह जाता है उसकी मल्चिंग खेत में ही करते हैं, कोई चीज खेत के बाहर नहीं जाती है और ना खेत को जलाया जाता है।
2: आप शरदकालीन गन्ने के पहले हरी खाद ढैंचा उगाते हैं?
3: जी ढैंचा उगाते हैं।
2: तो पलटाई के बाद खेत की तैयारी बढ़िया से?
3: जी खेत की तैयारी और साथ में जो है ट्रॉली बीघा गोबर की खाद अगर उपलब्ध हो पाती, कोशिश यही रहती है कि उपलब्ध रहे।
2: शरदकालीन गन्ने की जहां बुआई करने जा रहे हैं कितना रकबा रहेगा इस बार?
3: लगभग उतना ही रहेगा, 15 एकड़ के आसपास
2: शरदकालीन गन्ने की बुआई
3: जी।
2: तो अभी कुछ बुआई शुरू हुई?
3: जी बुआई शुरू हो गई है।
2: कुछ जल्दी नहीं है?
3: नहीं ऐसा जल्दी नहीं है, लेकिन असल में जब जमाव आ जाएगा तो इसके बाद हमको उसी में लाही और आलू भी लेना है, तो उसका भी बेड साथ ही साथ तैयार हो जाएगा, तो टाइम ठीक रहेगा।
2: अंतरण कितना रखते हैं लाइन से लाइन की दूरी?
3: लाइन से लाइन की दूरी मेरी 5 फीट की रहती है और बट से बट की दूरी जो है 1 से 1.25 फीट की रहती है।
2: यानी 1.5 मीटर पर गन्ना उगाते हैं?
3: जी।
2: और गन्ने की दो लाइनों के बीच में?
3: जिस प्लॉट में सरसों लेनी है तो उसमें 2 लाइन सरसों की ले लेते हैं और आलू की 2 लाइन लगभग हो जाती है
2: गन्ने के 2 लाइनों के बीच।
3: जी
2: आलू की कोई खास वैरायटी चुनते हैं मिठास की फसल के साथ?
3: आलू की एक वैरायटी है जो हम लोग कई सालों से रिपीट हो रही है, उसका पैदावार अच्छी मिलती है।
2: और आपके यहाँ लोकल मार्केट?
3: जी लोकल मार्केट में अवेलेबल है, तो उसी को ही वो रहते हैं, वो कच्चा ही आलू बेच लेते हैं।
2: अच्छा
3: जी,
2: तो आलू की बुआई कब तक पूरी कर लेंगे आप शरदकालीन गन्ने की?
3: शरदकालीन गन्ने की बुआई लगभग हम 15 से 20 तारीख तक पूरी कर लेंगे।
2: सितंबर में ही?
3: जी उसके बाद जो है बड है, सिंगल बड ही बुआई करते हैं।
2: अच्छा
3: जी, सिंगल बड बुआई करते हैं, उसका ट्रीटमेंट ट्राइकोडर्मा से और बवेरे बेसन वो तो प्लॉट में पड़ के पहले ही उसकी जुताई हो चुकी है,
2: यानी भूमि शोधन
3: जी, और ट्राइकोडर्मा से उसका ट्रीटमेंट रहता है। उसके बाद जब बुआई हो जाती है तो गोबर की अगर भुरभुरी खाद मुझको मिल गई तो उसके ऊपर एक गोबर की खाद कूड़ से कूड़ में डालते हैं।
2: अच्छा
3: जी
2: हिमांशु भैया, आप मिठास की बात हुई, केला उत्पादन से भी जुड़े हैं, तो कोई खास वेराइटी है?
3: जी नहीं।
2: अच्छा, क्या खासियत महसूस कर रहे हैं ग्रैंड नाइन जो G9 वैरायटी है अपने खेत में?
3: G9 की पैदावार अच्छी है, जो फलत आती है वो अच्छी आती है, केले का साइज ठीक आता है, जिसकी मार्केट में अच्छी डिमांड ठीक रहती है।
2: इस बार बुआई केले की कब आपने की और खेत की तैयारी में क्या कुछ खास किया?
3: खेत की तैयारी में हरी खाद ली, गोबर की खाद ली, और पिछले साल से मैं हाई डेंसिटी फार्मिंग कर रहा हूँ केले।
2: अच्छा
3: जी,
2: तो अंतरण कितना रख?
3: अंतरण लाइन से लाइन की दूरी 6 से 6.5 फीट रहती है, और पौधे से पौधा 5 फीट और 2.5 फीट।
2: अच्छा
3: जी,
2: 2.5 फीट पर भी?
3: जी।
2: तो जो अंतरकर्षण क्रियाएं हैं उनको करने में आपको दिक्कत नहीं?
3: नहीं, दिक्कत नहीं आती, मेरे पास मिनी ट्रैक्टर है।
2: अच्छा,
3: उसी के हिसाब से गैप रखते हैं, और मिनी ट्रैक्टर 2.5 फीट में नहीं चल पाता है, उसके लिए लेबर लगाएं, बाकी सारा मिनी ट्रैक्टर काम कर देता है।
2: अच्छा
3: जी,
2: केला में कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं आप?
3: बुआई के समय तो कुछ नहीं करते हैं, हाई राइज मतलब मिट्टी उठा के बेड बना के पौधा लगाते हैं, उसके 15 से 20 दिन बाद जो है एक टॉप ड्रेसिंग करते हैं पोटाश, DAP और यूरिया की।
2: अच्छा
3: जी,
2: तो जल मिले?
3: हाँ, तीसरी या चौथी डोज में उसका भी ड्रेंचिंग करते हैं।
2: अच्छा, ड्रेंचिंग शुरू कर देते हैं। इस समय जो जुलाई में रोपाई हुई, फसल कैसी चल रही है?
3: फसल ठीक चल रही है।
2: तो फसल बढ़वार पर है?

0: जी फसल बर्बाद। पिछले लगातार कई सालों से आप मिठास की फसल गन्ना और केला दोनों पैदा कर रहे हैं मुख्य रूप से। एकड़ में कितनी लागत गिरती है, उत्पादन कितना तक ले लेते हैं और आपका मुनाफा होता कितना है?
1: केले में लगभग जो हिसाब जोड़ा है वो करीब 100 से 110 रुपए का खर्चा आ जाता है
0: एक पौधे
1: एक
0: पर?
1: पौधे पर।
0: जी
1: और अगर हम एवरेज 1200 रुपए क्विंटल लगभग लें तो 250 के आसपास का
0: पौधे
1: एक
0: पर मिल
1: पौधे पे
0: जाता है,
1: मिलता है।
0: यानी लगभग 125 रुपये पौधा
1: जी,
0: आपको मिल जाता
1: एक
0: है।
1: सौ पच्चीस से 150 तक का पौधा मिल जाता है वो मार्केट को देखते हुए,
0: और
1: बाजार को
0: एक
1: देखते
0: एकड़
1: हुए।
0: में पौधे लगते कितने हैं केले
1: एक
0: के?
1: एकड़ में पहले तो 6x6 के हिसाब से 1250 पौधा लगता था, अब जो हम हाई डेंसिटी से कर रहे हैं तो उसमें लगभग 1650 से 1700 पौधा आ जा रहा है एक एकड़ में।
0: तो इस हिसाब से सघन और अति सघन बागवानी से आपको मुनाफा अधिक हो रहा है?
1: हाँ, थोड़ा सा मुनाफा पौधे बढ़ जाने की वजह से ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा खर्चा भी है
0: बढ़ा
1: क्योंकि
0: है।
1: जी क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस कम करने की वजह से उनको खाद पानी पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। बाकी
0: और मिठास की फसल में?
1: मिठास की भी फसल में लगभग 500 से 600 कुंटल लेते हैं, 500 भी अगर लेते
0: एकड़
1: हैं
0: में?
1: जी एकड़ में,
0: हाँ।
1: तो खर्चा पे अगर हम जाएं, गन्ने में थोड़ी सी लागत बढ़ जाती है, ये गन्ना मंदाई, मिट्टी चढ़ाई, ट्रांसपोर्टेशन, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम जो आ रही है वो लेबर की आ रही है।
0: जी,
1: लेबर काफी महंगी हो गई है तो
0: खर्चा बढ़
1: जी
0: जाता है।
1: खर्चा बढ़ चुका है।
0: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: जी बिल्कुल, 9838405500, 9838405500, 9838405500।
0: हिमांशु नाथ सिंह भैया, आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
3: परंतु सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: ज्योति बहनी।
6: हाँ भैया।
5: देखो, अपने खेती पाती में मौसम के जौन जानकारी है वो अगर समय पे मिल जात है तो बहुत नुकसान जौन है वो बच जात है। तो भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 7 दिनों तक कहूं कहूं पर गरज चमक के साथ बौछार पड़े के संभावना है। साथ ही 10 और 11 में वज्रपात के संभावना है और 12 से लेकर 16 तक कौनो विशेष चेतावनी नहीं है। ज्योति बहनी।
6: हाँ रामजीत भैया।
5: देखो, अपने बहुत से पंच हैं जो अपन बात हमसे कहे चाहते हैं और कुछ सुझाव दिए चाहते हैं, तो यही की तय उन्हें अपन पता बताए दिन जाए।
6: बिल्कुल भैया, हम बता दें, कार्यक्रम किसानवाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ और पिन कोड है 226001।
5: और साथ ही जे पंच हम पंचन का मेल करे चाहे वह हमार मेल लिखे, हमार मेल है farmandhomeairlko@gmail.com। और देखो बहनी, अब अपने बैठकी का समय हो चला है तो पंचन से लीन जाए आज्ञा। जय

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को परखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सेवाकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के दिए निर्देश। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने लखनऊ के सिविल अस्पताल में स्ट्रोक यूनिट, सुपर स्पेशियलिटी ओपीडी और न्यूरो सर्जरी वार्ड का किया उद्घाटन। कहा, अस्पतालों के बीच समन्वय से जनता को मिलेंगी गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं। शिक्षकों के लिए 3 नवंबर को होगी स्पेशल टीईटी परीक्षा, 4 अक्टूबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। और राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में राज्य के कई जनपदों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के निरंतर सेवाकाल पूरा होने के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की उपस्थिति में अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
4: बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के सेवाकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और विकसित भारत 2047 के संकल्प को जन संकल्प बनाने का अवसर है। इस दौरान सेवा गतिविधियों, विकास कार्यों, लाभार्थियों की वास्तविक कहानियों, युवाओं की प्रतिभा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जन प्रतिनिधियों की भागीदारी को जोड़कर अभियान को सेवा से संकल्प की व्यापक यात्रा के रूप में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाए। अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को सेवा दिवस के तहत दीप प्रज्वलन के साथ होगी। 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के संबोधन का सजीव प्रसारण भी किया जाएगा। इनके अतिरिक्त प्रमुख स्मारकों और पर्यटन स्थलों पर नमो सेवा थीम पर लेजर शो, तीर्थ स्थलों और शक्तिपीठों में राष्ट्र कल्याण एवं विकसित भारत के संकल्प के लिए महायज्ञ, 25 सितंबर को ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम चौपालों का आयोजन किया जाएगा। 17 अक्टूबर को अभियान का समापन होगा। समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।
3: केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आज सेवा संकल्प अभियान की कार्ययोजना को लेकर देश के सभी राज्यों के नगर विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा शामिल हुए। बैठक में नगर विकास मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान के कार्यक्रमों के साथ ही विशेष कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। श्री शर्मा ने बताया कि 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कुल 157 घंटे का अनवरत स्वच्छता अभियान प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देश के पूर्व गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 139वीं जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। लोक भवन में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रख्यात अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत का देश की स्वतंत्रता और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने प्रदेश के विकास और समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए।
5: उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में इस बड़े राज्य की व्यवस्था को सुशासन के मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना और इसके आर्थिक उन्नयन, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य करना, इसके लिए उन्होंने उस समय अपना प्रयास प्रारंभ किया। अनेक प्रकार के रिफॉर्म लाए, लैंड रिफॉर्म का जो मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया।
3: उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने आज लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में स्ट्रोक यूनिट, सुपर स्पेशियलिटी ओपीडी और न्यूरो सर्जरी वार्ड का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने कई नई स्वास्थ्य सुविधाओं की शुरुआत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेशवासियों को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गंभीर रोगों वाले मरीजों को बेहतर चिकित्सा देने के लिए सरकार ने विभिन्न अस्पतालों के बीच समन्वय स्थापित करने की शुरुआत की है।
6: श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी व स्ट्रोक के जो पेशेंट्स आते थे, न्यूरोलॉजी के, उनको तत्काल उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित हो, इसके लिए लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान और सिविल अस्पताल के बीच में समन्वय स्थापित करते हुए और वहां के चिकित्सक आकर के यहां पर ओपीडी करेंगे, मरीजों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि सिविल अस्पताल में सुविधाएं पहले उपलब्ध नहीं थी, अतः सिविल अस्पताल को उच्चीकृत करते हुए यहां पर चिकित्सीय सुविधाएं बढ़ाने का काम किया है और इस प्रयोग को हम अन्य अस्पतालों में भी ले जाएंगे।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। शिक्षकों के लिए स्पेशल TET परीक्षा 3 नवंबर को आयोजित की जाएगी। बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने स्पेशल TET के आयोजन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर है, वहीं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। पूर्व में TET या CTET उत्तीर्ण कर चुके शिक्षकों के लिए स्पेशल TET दोबारा उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है। जिन अध्यापकों ने पूर्व में TET या CTET उत्तीर्ण नहीं की है, उन्हें निर्धारित विज्ञापन के अंतर्गत पंजीकरण कर आवेदन करने और परीक्षा में भाग लेने की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने आज बिजनौर में महिलाओं से संबंधित विवादों पर जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को मामलों के निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण आजीविका मिशन की दीदियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस मिशन से जुड़ी महिलाएं विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाली शक्ति हैं।
7: ये बहनें केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं है, बल्कि ये सभी बहनें विकसित भारत के संकल्प को लेकर अपनी प्रगति करने वाली सभी बहनें हैं। आप सभी वो शक्ति है जो परिवार को संवारती है, समाज को दिशा देती है और राष्ट्र के भविष्य का निर्माण भी करती है।
3: आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों को सुगम यात्रा की सुविधा देने के लिए उत्तर रेलवे ने वाराणसी और मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। उत्तर रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक समर्थ गुप्ता ने बताया कि यह विशेष ट्रेन 22 अक्टूबर से 12 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को संचालित होगी। चित्रकूट में कल से शुरू होने वाले भाद्रपद अमावस्या मेले में श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया है। मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाएं की हैं। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मेला क्षेत्र प्रमुख मंदिरों, घाटों और पार्किंग स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
8: हमारे इस मेले की सुरक्षा में डिप्टी एसपी रैंक के 14 अफसर हैं, एसओ इंस्पेक्टर्स 15 लगे हुए हैं, 36 इंस्पेक्टर, 262 सब इंस्पेक्टर, 13 महिला सब इंस्पेक्टर, 820 कांस्टेबल हेड कांस्टेबल, 125 महिला कांस्टेबल, ट्रैफिक के 18 निरीक्षक और 80 कांस्टेबल्स, पीएसी की 2 कंपनियां हैं, फ्लड प्लाटून भी हमारे पास 2 प्लाटून हैं।
3: राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के 26 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशासन लगातार निगरानी करते हुए राहत और बचाव कार्यों को संचालित कर रहा है। अब तक 21,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। इस बीच राज्य की कई नदियां अब भी उफान पर हैं। बदायूं बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में रामगंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी, अयोध्या व बलिया की तुर्तीपार में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में प्रदेश के कई जनपदों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को परखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सेवाकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के सिविल अस्पताल में स्ट्रोक यूनिट, सुपर स्पेशियलिटी ओपीडी और न्यूरो सर्जरी वार्ड का किया उद्घाटन। कहा, अस्पतालों के बीच समन्वय से जनता को मिलेंगी गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं। शिक्षकों के लिए 3 नवंबर को होगी स्पेशल टीईटी परीक्षा, 4 अक्टूबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। और राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में राज्य के कई जनपदों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
9: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
10: FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। शाम के 7:31 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस।

0: आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे फिल्म पुकार के इस गीत को आर डी बर्मन की आवाज में।
1: आपकी चाय ईएमआई किराया कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। कैसे? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा। इतना इजी? काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है। इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है। ना भाई ना।
2: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: नमस्कार, यदि आप रेडियो प्रस्तुति और एंकरिंग में रुचि रखते हैं और अपनी आवाज के माध्यम से श्रोताओं के बीच अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ओबरा आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका।
5: आकाशवाणी ओबरा द्वारा युववाणी कार्यक्रम के लिए असाइनमेंट अर्थात समनुदेशती आधार पर कंपियर एवं अंतरवार्ताकार का पैनल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ओबरा परिक्षेत्र में निवास करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
4: अभ्यर्थियों का चयन स्वर परीक्षा यानी ऑडिशन और स्क्रीनिंग समिति के संस्तुति के आधार पर किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों का नाम पैनल में शामिल किया जाएगा।
5: ध्यान रहे, यह स्थायी और नियमित रोजगार नहीं है। आकाशवाणी ओबरा अपनी कार्यक्रमगत आवश्यकता के अनुसार ही पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को समय समय पर कार्य हेतु आमंत्रित करेगा। प्रत्येक असाइनमेंट के लिए प्रसार भारती के नियमानुसार मानदेय देय होगा।
4: आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 28 अगस्त 2026 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा महाविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

0: सकते हैं। पता इस प्रकार लिखें: स्वर परीक्षा युववाणी, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी ओबरा, जिला सोनभद्र, पिन कोड नंबर है 231219।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी ओबरा से,
0: दीजिए अपनी आवाज को नई पहचान।

आरडी बर्मन और आशा भोसले की आवाज में अभी आप सुन रहे थे इस गाने को, और फिल्म का नाम था सनम तेरी कसम, संगीत आरडी बर्मन का। आकाशवाणी ओबरा से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस।

आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को अब लीजिए सुनिए, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में, संगीत आर डी बर्मन का और फिल्म का नाम जवानी दीवानी।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

0: समीर के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। संगीत अदनान सामी का था और फिल्म का नाम था लकी।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
1: हेलो, फिर क्या फोन उठाइए।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
0: डायल करिए 0544-5297-100 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
2: इसी के साथ कार्यक्रम सबरस अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं 102.7 FM पर। रात्रि के 8 बज रहे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में इस गाने को। आकाशवाणी उबरस, इस समय आप सुन रहे हैं गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत।

अभी आप सुन रहे थे शमसा कंवल की आवाज में इस गीत को। अब लीजिए सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में अगली गजल।

जगजीत सिंह की गाय इस गजल के साथ गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे के की आवाज में। संगीत विशाल शेखर का था और फिल्म का नाम था ओम शांति ओम। आकाशवाणी ओबरा से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। नीति मोहन की आवाज में अब लीजिए सुनिए फिल्म पद्मावत के इस गीत को।

नीति मोहन की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म पद्मावत के इस गीत को। इसी के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में इस गजल को। आकाशवाणी उपरा से समय आप सुन रहे हैं गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

अभी आप सुन रहे थे अदनान सामी की आवाज में इस गीत को। इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को है।

0: अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार और रात्रि 9 बजे अंग्रेजी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत और रूस ने यात्री विमानों के संयुक्त उत्पादन और भारतीय ऑपरेटरों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की डिलीवरी की दिशा में कदम बढ़ाया। केंद्र सरकार ने मूल्य पारदर्शिता, प्रायोजित लिस्टिंग और खोज परिणामों में हेरफेर पर नियमों को सख्त करने के लिए ई कॉमर्स नियमों में संशोधन किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है।
2: India's approach is rooted in Vasudhaiv Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट सिद्धांत है कि अंतरिक्ष से मिलने वाले लाभ संपूर्ण मानवता तक पहुंचने चाहिए।
2: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar South Pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity.
1: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफ्रॉन स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध भी शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण सेवा कंपनी राइड भारत की कंपनी टेकमी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत इस शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के महत्व और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता का संदेश देंगे। उनका कहना है कि इन संस्थाओं में आज की वैश्विक परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं।
3: राष्ट्रीय राजधानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आने वाले शीर्ष नेताओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम कर रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने विदेशी मेहमानों के अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम जनता को कम से कम असुविधा हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली में करीब 15,000 पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस में प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि विदेशी गणमान्य अतिथियों के गुजरने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी कैमरे भी लगाए गए हैं।
4: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेके ट्रैफिक से लेके लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
3: भारत की अध्यक्षता 4 प्रमुख स्तंभों लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर आधारित है। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के बाद से अब तक 350 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान जनता के लिए बंद रहेंगे। भारत और रूस ने आज यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण और भारतीय विमानन कंपनियों के लिए 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति पर चर्चा की। नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलिखानोव के साथ बैठक में देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए नागरिक यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण पर विचार विमर्श किया। प्रस्तावित समझौतों में पिनकल एयर, एयर केरल और स्लीक एविएशन सहित भारतीय विमानन कंपनियों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति और इससे जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल हैं। 2 दिन का इनोप्रोम इंडिया कार्यक्रम कल नई दिल्ली में शुरू हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक रूस और भारत की कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th.

0: September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश की आपदा प्रबंधन व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया है और अब किसी के हताहत ना होने का लक्ष्य रखा गया है श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि सरकार 3 प्रमुख स्तंभों पर ध्यान दे रही है जोखिम में कमी पूर्व चेतावनी प्रणाली और किसी के हताहत ना होने देना श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आपदा रोधी गांव और शहर तैयार करना है सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन किया है इसका उद्देश्य कीमतों में पारदर्शिता प्रायोजित उत्पादों की सूची खोज परिणामों में हेरफेर और डार्क पैटर्न से जुड़े नियमों को सख्त करना है संशोधित नियमों के अंतर्गत किसी उत्पाद की कीमत कम करने पर ई कॉमर्स कंपनियों को घटी हुई कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी बतानी होगी नए नियमों से ई कॉमर्स क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता जवाबदेही और उपभोक्ता केंद्रित व्यवस्था सुनिश्चित होगी ये नियम अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होंगे ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: ध्यान दें आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक तो देर किस बात की आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
3: ये आकाशवाणी है मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय झारखंड केरलम माहे मध्य प्रदेश तेलंगाना उत्तराखंड विदर्भ पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते मोना अग्रवाल अवनी लेखरा मिली शाह की टीम ने महिलाओं की R2 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग महिला SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता वहीं भारतीय पुरुष टीम ने R1 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से हराया उधर दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 2 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल पहुंचने की संभावना गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया इसके साथ ही समाचार संध्या का

0: Good night.
1: एक सौ दो दशमलव सात एफएम पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
4: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
5: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
6: हेलो,
4: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
5: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
4: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
5: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
4: ओनली ऑन AIR ओबरा।

साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में। फिल्म का नाम था हम दोनों, संगीत जयदेव का था। आकाशवाणी ओबरा से समय आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अब लीजिए सुनिए आशा भोसले की आवाज में फिल्म शालीमार के इस गीत को।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे इस गीत को। फिल्म का नाम था आग गले लग जा। इसी के साथ पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यही समाप्त होता है। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उपरा का प्रसारण। रात्रि के 9:31 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। अब लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज में फिल्म ये वादा रहा का गीत।

ये वादा रहा। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में इस गीत को। आकाशवाणी ओबरा से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

अब लीजिए सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म आनंद आश्रम के इस गीत को। इसे लिखा है इंदिवर ने।

किशोर कुमार और सपना मुखर्जी की आवाज में ये था फिल्म जाबांज का गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत था आरटी बर्मन का। इसी के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उबरा का प्रसारण और रात्रि के 9:45 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत। सबसे पहले लीजिए सुनिए जगजीत सिंह और आशा।

0: भोसले की आवाज में इस गजल को सुनते रहे आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।
1: ये समझने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

मेहंदी हसन के गाए इसी गजल के साथ गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 एफएम पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। रात्रि के 10 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम रसधारा। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में लीजिए सुनिए फिल्म अजनबी के गीत को।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

बप्पी लहरी और आशा भोसले की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म नमक हलाल के इस गीत को। आकाशवाणी उपरा से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसधारा।

गुलजार के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म मासूम से। संगीत आरडी बर्मन का था। आकाशवाणी उपरा से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा।

अभी आप सुन रहे थे शैलेंद्र की आवाज में इस गीत को, और फिल्म का नाम था जमाने को दिखाना है। आकाशवाणी वाला से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा। अब लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज में फिल्म गैम्बलर के इस गीत को।

0: तेरी प्रीत भला कैसे सुलझाएगी।
1: बाप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में इस गीत को फिल्म पतिता से। इसी के साथ कार्यक्रम रसधारा अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। रात्रि के 10:30 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए सुनिए विदुषी शोभा गुरटू का गाया दादरा।

युवरा से इस समय आप सुन रहे हैं उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। अब लीजिए सुनिए शोभा गुट की गाई इस ठुमरी को।

0: अभी आप सुन रहे थे उस्ताद गुलफाम उस्ताद की गाई ये ठुमरी। इसी के साथ उपशास्त्र संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे It saves life on earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
1: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इनमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण सेवा कंपनी राइड भारत की कंपनी टेक मी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2 दिन के सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और भारत सहित 11 सदस्य देश शामिल होंगे। ब्रिक्स के साझेदार देशों के रूप में बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम भी सम्मेलन में भाग लेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस और ब्राजील के राष्ट्रपति आज रात नई दिल्ली पहुंचेंगे, जबकि कई अन्य नेता कल राजधानी पहुंचेंगे। शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने विषय पर चर्चा के साथ होगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में कल दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। यात्रियों को ताजा जानकारी के लिए DMRC की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप देखने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाज शास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इन 3 विषयों की दोबारा परीक्षा प्रश्न पत्रों में कई गलतियों की शिकायतों के बाद आयोजित की गई थी। अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को, जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा आज हुई। क्रिकेट में दुबई में खेले जा रहे महिला एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 150 रन का लक्ष्य रखा है। इससे पहले बांग्लादेश की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: एक सौ 2.7 एफएम पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 11:05 हो रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल सुबह 5:50 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल सुबह 5:50 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।